एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 27 सितंबर 2026। प्रातः के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECINET प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

मानव जन्म ईश्वर का सर्वोपरि उपहार है। इससे बढ़कर कोई और संपदा ईश्वर के पास ऐसी नहीं है जो किसी प्राणी को दी जा सके। इस उपहार के बाद एक

और अनुदान ईश्वर के पास शेष रहता है, जिसे केवल वह मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार से मुख मोड़कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर चलने का संकल्प लिया है, जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलने का निश्चय किया है। इस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य और साहस के साथ स्वागत करने की क्षमता जिनमें है, ये अनुदान उन्हीं के लिए सुरक्षित है। चिंतन के बाद लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये संसार कर्मों की खेती है। हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुरूप फल हमें प्राप्त हो जाएगा। अपने जीवन को सत्कर्मों में लगाकर प्रभु के नाम का सुमिरन करने से मन शांत रहता है।

प्रभु की भक्ति में जो आनंद है, जो रस है, वो संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। मन को प्रभु की सेवा में अर्पण करने से हृदय प्रफुल्लित हो उठता है और आनंद की अनुभूति होती है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 222।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिली किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। सात बजकर 10 मिनट पर सुबह सुहानी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 7:40 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम होगा शुभ प्याग गाने सुहाने। ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा 8:30 पर। सुबह 9 सुनिएगा स्वास्थ्य समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय रहेगा गाउट यानी गठिया रोग, कारण लक्षण और उपचार। चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत रैना से विषय संबंधी प्रश्न पूछने हेतु स्टूडियोज का दूरभाष नंबर रहेगा 0182224391। गीतों का कारवां कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:00। 10:30 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम होगा पहाड़ों के सुर। 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्रोताओं से मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिली किया जाएगा। सैनिक भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए 12:00। 12:30 पर बाल सभा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिली किए जाएंगे। शाम 5:10 पर सुनिएगा फिल्मों से भजन वीकली पल्स। ये विषय रहेगा आज की युवा मंच कार्यक्रम का। आप सुन सकेंगे शाम 5:25 पर। शाम ए गजल ये कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 6:05 पर। शाम 6:30 पर होगा महिला साथियों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। खेती बाड़ी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 7:10। 8:00 सुनिएगा विविध संगीत कार्यक्रम होगा सबरस। रात 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की फिल्मों से चुनिंदा गीत। गीतों की महफिल ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:30 पर। आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:50 10:45 3:00 शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से ही हम रिले करेंगे कार्यक्रम हिम बीट्स 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली से रात 10:00 एशियाई खेल 2026 में आज के आकर्षण पर आधारित कार्यक्रम रिली किया जाएगा। कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी दिल्ली से ही हम रिले करेंगे रविवासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा सुबह 8:00 समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 1:00 शाम 5:00 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार। 1:05 शाम 5:05 7:05 और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या और रात 9:00 न्यूज़ @9।

तो ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिलीज किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में 6:55 पर आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: महासभा को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है. उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
1: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है. अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है. ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए. खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए.
2: Should be exposed and should be countered.
0: रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को भी दोहराया. निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे. BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे. ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था. भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है. श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है. वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे. एक रिपोर्ट.
3: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है. इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है. समाचार कक्ष से मैं इशिका.
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन आज केरलम जाएंगे. इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे. आज विश्व पर्यटन दिवस है. इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है. हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का अनुमान है. उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रोक दी गई है. मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी. जापान में एशियाई खेलों में स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा. एथलेटिक्स में तेजस्वी शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह चुनौती पेश करेंगे. भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 30 पदक जीते हैं. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
4: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in his monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. today. It will be the 138th episode. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. India has called upon all parties to exercise restraint, de-escalate tensions, ensure protection of civilians and uninterrupted flow of energy and commerce during the ongoing conflicts. addressing the UN General Assembly.

सुबह सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस सुविचार के साथ। आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हम खुद पर भरोसा रखेंगे तभी हम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम होंगे, और अन्य लोग भी हम पर तभी भरोसा रखेंगे जब हम आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जी दोस्तों, खोलते हैं कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा। शुरुआत करते हैं उन घटनाओं से जिनके कारण आज का ये दिन खास बन गया। 1760 की बात करते हैं, मीर कासिम आज के दिन बंगाल के नवाब बने। 1821 में आज के दिन मैक्सिको को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1825 में आज ही के दिन इंग्लैंड में स्टॉकटन डार्लिंगटन लाइन की शुरुआत के साथ विश्व का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन आरंभ हुआ। आज ही के दिन 1958 में मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहले भारतीय बने। 1998 की अगर हम बात करें तो इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना आज के दिन हुई थी। और आज ही के दिन 2003 में

ध्वनि से भी अधिक तेज गति से उड़ने वाले ब्रिटिश एयर के कॉन्कॉर्ड विमान ने न्यूयॉर्क से लंदन के लिए आखिरी उड़ान भरी। बात करते हैं वर्ष 2005 की। आज के दिन बिल गेट्स लगातार 11वें साल विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बने। किन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए आपको बता दें, 1848 में आज के दिन उड़िया भाषा और साहित्य के प्रमुख कवि राधानाथ राय का जन्म हुआ। 1871 में आज ही के दिन सरदार पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विठल भाई पटेल का जन्म हुआ। इनके विषय में कार्यक्रम में हम आगे बात करेंगे। 1932 की बात करते हैं, आज के दिन विख्यात फिल्म निर्देशक यश चोपड़ा का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1981 में भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मीपति बालाजी का जन्म हुआ। किन महान हस्तियों के निधन आज के दिन हुई ये भी आपको बता देते हैं। 1833 में आज के दिन समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का निधन हुआ। 1933 में प्रमुख बांग्ला कवियत्री, सामाजिक कार्यकर्ता और नारीवादी महिला कामिनी राय का निधन आज के दिन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 2004 में सुप्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुरटू ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। 2008 की बात करें तो हिंदी सिने जगत के जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। आइए सुनिए महेंद्र कपूर का गाया ये नायाब गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज सितंबर महीने का अंतिम रविवार है और आज के दिन मनाया जाता है विश्व मूक बधिर दिवस। कुछ स्थानों पर यह दिन 26 सितंबर को भी मनाया जाता है। वर्तमान में ये विश्व मूक बधिर सप्ताह के रूप में अधिक प्रचलित है, जिसे सितंबर माह के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। विश्व बधिर संघ ने वर्ष 1958 से विश्व बधिर दिवस की शुरुआत की। इस दिन बधिरों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के साथ साथ समाज और देश में उनकी उपयोगिता के विषय में भी बात की जाती है। विश्व भर में आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो विश्व बधिर संघ के अनुसार विश्व में ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते, उनकी आबादी 70 लाख के आसपास है, जबकि हमारे देश में 2001 के आंकड़ों के अनुसार बधिरों की संख्या लगभग 13 लाख है। भारत सरकार द्वारा बधिरों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है और उनको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बधिरों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को सहायता मुहैया कराता है। बात करते हैं आज की। प्रतिवर्ष 27 सितंबर यानी आज के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत वर्ष 1980 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई थी। विश्व पर्यटन दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में इस बात को प्रसारित करना और जागरूकता फैलाना है कि किस प्रकार पर्यटन वैश्विक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ाने और आपसी समझ बढ़ाने में सहायता कर सकता है। विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार किया गया था। आपको बता दें कि भारत विश्व के 5 शीर्ष पर्यटक स्थलों में से एक है। विश्व पर्यटन संगठन और वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रेवल काउंसिल और पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी संगठनों ने भारतीय पर्यटन को सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र के रूप में बताया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कार्यक्रम शामिल हैं।

0: Drive home your favorite Nexaka with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Nexa.
2: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे आज की, आपको हम कार्यक्रम में बता चुके हैं कि आज विठल भाई पटेल की जन्म जयंती है। विठल भाई पटेल का जन्म 1871 को गुजरात के खेड़ा जिला के करमसद गांव में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा करमसद और नडियाद में हुई थी। बाद में ये कानून की शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड चले गए। बैरिस्ट्री की परीक्षा उत्तीर्ण कर विठल भाई स्वदेश लौटे और वकालत आरंभ कर दी। अपने आकर्षक एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व और कानूनी दांव पेंचों पर अच्छी पकड़ के कारण शीघ्र ही विठल भाई अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए। 24 अगस्त 1925 को ये धारासभा के अध्यक्ष चुने गए। यहीं से इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ हुआ। इनकी निष्पक्ष निर्भीक विचारधारा ने धरातल पर इनके व्यक्तित्व की अमिट छाप अंकित की। संसदीय विधि विधानों के ये प्रकांड पंडित थे। केंद्रीय धारासभा के अध्यक्ष के रूप में विठल भाई भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात हुए। ये सत्य के पुजारी थे और अन्याय के घोर विरोधी थे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार भी इनका लोहा मानती थी। पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में जब स्वराज पार्टी ने केंद्रीय धारासभा का बहिर्गमन किया था, उस समय विठल भाई ने अपनी असाधारण शक्ति का परिचय देशवासियों को दिया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए जेल गए विठल भाई पटेल के हृदय में मातृभूमि को स्वतंत्र देखने की उत्कट अभिलाषा थी। उन्होंने देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी स्वतंत्रता प्राप्ति का अलख जगाया। वर्ष 1933 में जिनेवा में विठल भाई का देहांत हो गया। एक उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त और समाज सेवी के रूप में हम उन्हें सदा याद करते रहेंगे।

0: Drive home your favorite Nexacar with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply. Nexa.
2: सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों आपको बता दें आज विश्व नदी दिवस है। विश्व नदी दिवस एक वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष सितंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए खास है क्योंकि ये नदियों के महत्व पर जोर देता है और विश्व भर में नदी संरक्षण के लिए अधिक सार्वजनिक जागरूकता और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना कैनेडाई संरक्षणवादी मार्क एंजेलो ने की थी। उन्होंने ये प्रस्ताव वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के जीवन के लिए जल दशक की शुरुआत के उपलक्ष्य में रखा। 2005 में आयोजित पहले कार्यक्रम में विभिन्न देशों में समारोह आयोजित किए गए और अब तक लाखों लोग इसमें शामिल हो चुके हैं। अपने देश की बात करें तो हमारे देश में नदियों को बहुत ही महत्व दिया जाता है। एक माता की तरह नदियों की पूजा की जाती है।

सुबह सुहानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में बात करते हैं खबरों की, आज की खबरों के बारे में आपको अवगत कराते हैं।

वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि नशे से प्रभावित बच्चों की सुरक्षा, उपचार, परामर्श और पुनर्वास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में कबड्डी टीम्स को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। साथ ही साथ माननीय राष्ट्रपति ने एशियाई खेलों में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने और मिश्रित युगल स्क्वैश में कांस्य पदक जीतने पर टीम्स को बधाई दी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 29 सितंबर तक वर्षा का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला, कांगड़ा, सोलन, किन्नौर, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू में भारी बारिश और आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। प्रदेश के कुछ भागों में तापमान में गिरावट की आशंका भी जताई जा रही है। और दोस्तों, सुबह सुहानी कार्यक्रम में चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

0: इसी गीत के साथ आज का सुबह सुहानी कार्यक्रम संपन्न करने की अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत।
1: सुबह सुहानी।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिलीज किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें।

0: आतंकवाद पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक

0: क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से एक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उथराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की जीडीपी में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
4: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारत

दोस्तों, आज हिंदी सिने जगत की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं महेंद्र कपूर के गाए कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत।

0: महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में धूल का फूल फिल्म का गीत अभी आपने सुना, संगीत एन दत्ता का था।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
2: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: डायबिटीज यानी मधुमेह या शुगर रोग एक खतरनाक बीमारी है।
5: इसमें बार बार पेशाब आना, थकावट महसूस होना, ज्यादा भूख लगना इत्यादि इसके लक्षण हैं। इसका शुरुआत में ही पता लगाना बहुत जरूरी है।
6: प्रदेश के हर स्वास्थ्य उप केंद्रों में शुगर की मुफ्त जांच का प्रावधान है, अतः आप तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपनी शुगर की जांच करवाएं और अपनी आंखों और गुर्दे की गंभीर बीमारी होने से बचाएं।
5: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
7: Come on boys, let's go practice.
8: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
7: अरे तो बैंक को कम्प्लेन करना।
8: बैंक को लिखे एक महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
9: तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
10: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कम्प्लेंट को एक महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कम्प्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कम्प्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कम्प्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में दिल और मोहब्बत फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस फिल्म के लिए संगीत दिया था ओपी नैयर ने।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
2: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
2: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
2: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
2: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
4: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
5: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
4: जी डॉक्टर साहब,
5: सिर्फ इसे नहीं सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
6: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
2: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
2: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
2: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
3: Nexa.
0: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर की पुण्यतिथि है। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं उन्हीं के गाए कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत। लीजिए सुनिए हमराज फिल्म का ये गीत।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
0: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
4: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
3: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
5: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
6: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
1: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
0: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
8: गाने सुहाने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दोस्तों, आज महेंद्र कपूर साहब की पुण्यतिथि है। महेंद्र कपूर को विशेष रूप से देशभक्ति रचनाओं में उनकी आवाज के लिए याद किया जाता है। महेंद्र कपूर ने गुमराह, हमराज, पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, किस्मत जैसी फिल्मों के लिए यादगार गीत गाए।

इसी गीत के साथ आज का गानी सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने सुहाने। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने विख्यात पार्श्व गायक महेंद्र कपूर के गाए कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 9 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम।

0: किंतु उम्र दराज लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक रोग है जिसे आम भाषा में हम वात रोग या गठिया कहते हैं। ये रोग कितने प्रकार से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गाउट, गठिया, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। विषय संबंधी जानकारी और आपके प्रश्नों के उत्तर देने हेतु आज आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में हमने आमंत्रित किया है चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर सुजीत रैना को। डॉक्टर सुजीत रैना एक अनुभवी चिकित्सक हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर रैना, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: संजीव जी नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार।
0: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गठिया रोग है क्या और ये कितने प्रकार का होता है।
1: देखो, मोटे मोटे तौर पे अगर हम गठिया रोग के बारे में बात कर लेते हैं तो गठिया मतलब जोड़ों की दर्द होना, और कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियां हो सकती है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो जोड़ों में दर्द कर सकती है। और आम लोग, आम जनता में इसको गठिया के रूप में ही ले लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको डॉक्टरी के हिसाब से देख लेंगे, हर गठिया भिन्न प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का है। कुछ जोड़ों की दर्द होती है जो एक जोड़ में होगी, कुछ जोड़ों की दर्दें ऐसी होती है 3 से 4 जोड़ों तक हो सकती है, कुछ जोड़ों की दर्दें ऐसे आ जाती है जो 5-6 जोड़ों से ज़्यादा आ सकती है
0: जी।
1: कुछ जोड़ों की दर्दें हैं जो बड़े जोड़ों में दर्द होगी, कुछ जोड़ों की दर्दें बड़े और छोटों में होती है, कुछ जोड़ों की दर्दें ऐसे होती है एक ही तरफ की जोड़ों में होंगे, कुछ ऐसे आ जाती है जो जिनको हम सिमेट्रिकल बोलते हैं, दोनों साइड के सेम जॉइंट्स में दर्द रहेगा
0: जी।
1: कुछ जोड़ों की दर्दें जो बहुत कम टाइम के लिए रहती है, जो आमतौर पर मोटा मोटा जब हम इनको अलग अलग श्रेणियों में डालते हैं, 6 हफ्ते से कम की दर्दें मान के चलते हैं, 6 हफ्ते से ज़्यादा की दर्दों के मान के चलते हैं। कुछ जोड़ों की दर्दें ऐसे हो जाती है कि एक जोड़ में शुरू हो गई, उसमें ठीक होके दूसरे में आती है, जिसको हम माइग्रेटरी बोलते हैं। कुछ जोड़ों की दर्दें ऐसे होती जिनको एडिटिव बोलते हैं, एक जोड़ से शुरू होके फिर उसमें तो ठीक नहीं होती, दूसरे को इन्वॉल्व करती है। कुछ श्रेणी जो जोड़ों की दर्दें हैं वो स्पाइन को भी इन्वॉल्व करती, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ जोड़ों की दर्दें आ जाती है अलग अलग जोड़ों के। तो मोटे मोटे तौर पर मैं अगर कहूँ, इन सबको यूजुअली क्लब किया जाता है गठिया के तौर से आम जनता की भाषा में
0: जी।
1: लेकिन एक डॉक्टरी के हिसाब से हम देख लेंगे, कम से कम 100 रोगों से ज़्यादा रोग होंगे जिनमें जोड़ों में दर्दें आती हैं
0: जी।
1: तो एक डॉक्टर, एक क्लिनिशियन ही डिसाइड कर सकता है कि ये रोग, एक हिस्ट्री पूछ के मरीज का, जब उनसे हिस्ट्री ले लेते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं, तब पता चल सकता है कि ये वाला हम रोग जो है, ये गठिया, ये किस टाइप का है
0: जी। डॉक्टर साहब, आमतौर पर अगर देखा जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये टर्म सुनने को मिलती हैं, और इसके अलावा एक और टर्म सुनने को मिलती है जिसको हम गाउट बोलते हैं, और आज के इस कार्यक्रम में हम गाउट के विषय में बात करेंगे। गाउट, गठिया रोग, इसके लक्षण क्या रहते हैं?
1: हाँ, ये संजीव जी, आपने शुरुआत में जो चीज़ें बोली, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी गठिये के ही टाइप माने जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बोला, एक को हम लोग बोलते हैं ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, दूसरे को बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ये भी हम, चूँकि जोड़ को जब हम हिस्ट्री ले लेते हैं, जोड़ को एग्जामिन करते हैं, मरीज को पूछते हैं सोजिश के साथ, जोड़ के दर्द के साथ सोजिश है, उसमें लालगी आती है, सुबह नींद से उठ के जोड़ में अकड़न रहती है, वो अकड़न कितनी देर तक रहती है
0: जी।
1: तो ये चीज़ें भी हमें मदद करती है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाता है। सो मोटे मोटे तौर पे जब इस विषय पे हम लोग बात करते हैं या इस मरीज को हम देख लेते हैं, तो कुछ हिस्ट्री लेके, कुछ लक्षण पूछ के या कुछ एग्जामिन करके डिसाइड करते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बन जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाता है
0: जी।
1: अब रही बात गाउट की, गाउट भी एक आर्थराइटिस ही है, और इसको एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की तरफ से हम ले लेते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस का मतलब हो गया इस जोड़ में सूजन तो आ रही है, इस सूजन के साथ साथ ये जोड़ लाल भी हो जाता है, इसमें काफ़ी जोर की दर्द हो जाती है।

0: आती है, इसको छुएंगे तो वहां बहुत दर्द होती है। और इन जोड़ों में काम करने का जो एक हिलने डुलने का एक प्रोसेस होता है, वो भी लगभग बंद हो जाता है। तो इसको सबको हम आर्थराइटिस बोलते हैं मोटा मोटा। सो ये गाउट जो है, ये भी एक किस्म का आर्थराइटिस है, एक किस्म का गठिया है। लेकिन इस गाउट को लक्षण के हिसाब से हम बहुत इजीली डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे किस्म के गठियों से, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइट्स की अगर हम बात कर ले,
1: जी
0: या हम रूमेटॉइड आर्थराइट्स की बात कर लें। तो इसको कोई जब मरीज आ जाता है और एक डॉक्टर के पास या एक विशेषज्ञ के पास आ जाता है, वो थोड़े बहुत लक्षण पूछ के एग्जामिन करके डिसाइड कर लेते हैं इजिली कि ये गाउट है कि यह दूसरे किस्म का गठिया है।
1: जी डॉक्टर साहब, सवाल ये आता है कि ये रोग होता कैसे है जो गाउट है?
0: देखो, शरीर में एक मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस जो होते हैं, उनमें से एक एंड प्रोडक्ट है जिसको हम बोल देते हैं यूरिक एसिड। ये लिवर में प्रिडोमिनेंटली बनता है और एक अमाइनो एसिड्स का एक हिस्सा है जिसको हम प्यूरीन्स बोलते हैं। उसी प्यूरीन का ब्रेकडाउन है यूरिक एसिड। ये नॉर्मल प्रक्रिया है, सारे शरीर में निकलता है यूरिक एसिड।
1: जी
0: और नेचर ने क्या किया हुआ, इस यूरिक एसिड को बनने के साथ साथ इसको शरीर से निकालने का भी रास्ता रखा हुआ। आमतौर पे किडनी से निकलता है, कभी कभी इंटेस्टाइन से भी निकलता है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम शुरू होगी जब यूरिक एसिड या तो सॉरी ज्यादा बनने लगे, या यूरिक एसिड किडनी से कम निकलना शुरू हो जाए। तो ये जब तक यूरिक एसिड ज्यादा ना शरीर में बनना शुरू हो जाए, या शरीर से कम निकलना, एक किडनी से कम निकलना शुरू हो जाए, तब तक हम लोगों में गाउट तो नहीं आ सकता। सो गाउट होने के लिए यूरिक एसिड का ज्यादा होना सबसे पहला एक जरूरी चीज है।
1: जी
0: अब बात आती है क्यों यूरिक एसिड बढ़े क्यों किसी में। देखो, यूरिक एसिड बढ़ना, जो यूरिक एसिड का पूल है बॉडी में, ये दो तरीकों से आता है। एक शरीर के अंदर से ही बनना है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, मेजॉरिटी वहीं से आता है। ऑलमोस्ट 2/3 यानी कि 66% तक शरीर से ही अंदर बनता है। दूसरा है जो हम बाहर से खाना खाते हैं, वो भी कुछ चीज़ें इस तरीके से प्रोवाइड कर लेती है जो अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिक एसिड का वो वाला पूल जो शरीर में आता है, वो ज़्यादा नहीं है बाहर के खाने से, वो लगभग 1/3 ही बन जाता है। सो दोनों डिटरमिन करते हैं, दोनों बाहर से खाना और शरीर के अंदर की प्रक्रिया जो है, वो दोनों एक यूरिक एसिड का पूल जो शरीर में कितना मात्रा रहेगी, कितनी मिकदार रहेगी, वो डिसाइड कर लेती है। तो एक यूरिक एसिड बेसिकली ज़्यादा होना प्रीरिक्विजिट है, ज़रूरी है गाउट होने के लिए। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है, ज्यादा यूरिक एसिड होना खुद एक बीमारी नहीं है।
1: जी
0: वो एक इम्बैलेंस है किसी शरीर में, किसी एक कण का। बीमारी गाउट है जो कॉन्सिक्वेंस है ज्यादा यूरिक एसिड होने का।
1: जी
0: तो ये यहां पे एक थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन जरूरी है। ज्यादा यूरिक एसिड गाउट नहीं है, यूरिक एसिड ज्यादा होना जरूरी है गाउट के। कहने का मतलब यह है कि हमने जो देखा हुआ है, बहुत सारे मरीजों को यूरिक एसिड ज्यादा होता है, बट इसका मतलब यह नहीं कि सबको गाउट हो जाएगा। इसमें जस्ट कुछ ही प्रतिशत है लोग जिनको अल्टीमेटली गाउट हो जाता है।
1: जी सामान्य तौर पर देखा जाता है कि जब कोई मरीज अपना रक्त जांच कराता है तो यूरिक एसिड का कोई स्तर आता है, तो ये स्तर साधारण तौर पर कितना होना चाहिए?
0: हाँ, ये अगेन आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आजकल की डेट में क्या होने लगा हुआ है, लैब टेस्ट्स में पैकेजेस के साथ टेस्ट करने लगे हैं लोग।
1: जी
0: सो एक पैकेज है जी, आपका इतने रुपए का पैकेज है, हम ये टेस्ट उसमें कर देते हैं। तो लोग यूरिक एसिड भी उसमें कर देते हैं। अगर मैं आप मेरे से प्रश्न पूछ लोगे कि क्या यूरिक एसिड का टेस्ट हमें कभी करवाना चाहिए, यूरिक एसिड टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट कभी जरूरत है ही नहीं, अनलेस एंड अंटिल किसी को हमें लगता है कि यार इसको गाउट की प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, दूसरा सिचुएशन आ सकता है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम आ गई हुई है, उनमें यूरिक एसिड करा लें। अदरवाइज यूरिक एसिड का एक स्क्रीनिंग के लिए कि जरूरत कभी है नहीं। बट अब हम लोग देखते हैं पैकेजेस में लोगों ने किया होता है, मरीजों ने किया होता है, उसमें एक हिस्सा है यूरिक एसिड भी है। तो कभी कभी क्या होता है उनमें पैकेज में, फिर वो उसको हाईलाइट कर देते हैं, जी भैया यूरिक एसिड इतना आ गया हो, ये आपका ज़्यादा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि यूरिक एसिड ज़्यादा नुकसानदेह कब हो सकता है, उसका लेवल जो आपने मेरे को प्रश्न पूछा वो 6.8 है। अब ये 6.8 रखा क्यों है ये समझने की जरूरत है। ये 6.8 का यूरिक एसिड का लेवल सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि उस लेवल पे जो हम बॉडी में शरीर में हमारा टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे रहते हैं हम लोग जो यूजुअली 37 मान के मोटा मोटा हम चले, उसमें ये यूरिक एसिड इस लेवल पे आराम से सॉल्युबल स्टेट में रहता है। ये क्रिस्टल नहीं बनाता, कण नहीं बनाता। क्रिस्टल जैसे हम लोग चीनी है वो एक क्रिस्टल हो गया या नमक है, ये क्रिस्टल्स है। यूरिक एसिड दिक्कत तभी करता है जब ये इस क्रिस्टल फॉर्म में जाएगा। ये क्रिस्टल फॉर्म में तभी बन जाता है जब इसका लेवल 6.8 से ज्यादा होगा। सो 6.8 से नीचे यूरिक एसिड लेवल रह रहा है तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है तब तक हमें,
1: जी
0: चाहे मेल हो या फीमेल हो दोनों के लिए।
1: जी डॉक्टर साहब, मेडिकल टर्म में एक आता है कि यूरिक एसिड और एक होता है ब्लड यूरिया, क्या ये एक जैसे हैं या इनमें कुछ अलग होता है?
0: हाँ संजीव जी, ये अगेन एक अच्छा प्रश्न आपने किया हुआ। देखो दोनों बॉडी में, दोनों शरीर में एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से निकलते हैं, दोनों मेजॉरिटी लिवर में ही बनते हैं। यूरिया भी प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से ही निकल आता, बट जैसे मैंने बोला यूरिक एसिड यूजुअली प्यूरीन के, यूजुअली क्या, इट इज स्पेसिफिकली प्यूरीन के मेटाबॉलिज्म से ही निकलता है। यूरिक एसिड के एक अपने काम भी है। यूरिक एसिड अगर एक पर्टिकुलर नॉर्मल लेवल में रहता तो ये बॉडी में एक अच्छा फंक्शन भी करता। अच्छा फंक्शन क्या है, इसका एंटीऑक्सीडेंट रोल है। ये भी देखा गया हुआ कि यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज में रहना अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कुछ न्यूरोडिजेनरेटिव, दिमाग की कुछ बीमारियां जो बुढ़ापे के साथ साथ हो सकती है उनमें भी बचाव करने में हेल्प करता। सो यूरिक एसिड शरीर में होना हमारे लिए फायदेमंद है एक नॉर्मल रेंज में अगर ये रहेगा। ऑन द कंट्ररी जब मैं यूरिया देखता हूं उसका यूजुअली कोई बहुत फायदा होता नहीं है। और यूरिया शरीर में बनता है एक प्रोडक्ट, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ये भी है, और इसको भी किडनी से ही बाहर निकलना है। यूरिक एसिड को भी आमतौर पे किडनी से ही बाहर निकलना है, तो यूरिया का कोई प्रोटेक्टिव रोल नहीं है। और यूरिया एक अगेन क्रिया से बनता है, और यूजुअली यूरिया बढ़ गया तो हमें लगता है यार किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। सो ये रिफ्लेक्ट करता है किडनी का प्रॉब्लम। बट ऑन द कंट्ररी यूरिक एसिड बढ़ना हमेशा ज़रूरी नहीं है किडनी के एक प्रॉब्लम से बढ़ जाएगा। ये बढ़ जाता है किडनी की प्रॉब्लम्स में भी, बट उसके बगैर भी बहुत कारणों से ये बढ़ सकता है। सो ये दो चीज़ें अलग अलग है, यूरिया अलग है, यूरिक एसिड अलग है।
1: जी दोस्तों, आरोग्यम कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गाउट, गठिया, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर सुजीत रैना हमारे साथ हैं। यदि इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। 01892224391 है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, सुन पा रहे हैं हमें?
2: हाँ जी, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हो जाइए या उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए।
2: जी सर।
1: जी, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं?
2: मैं तो पवना देवी बोल रही ना।
1: जी पवना जी, कोई दर्दे वगैरह रहती हैं शरीर में?
2: मेरी गुड़िया को है ना, लड़की के मेरी
1: जी,
2: तो वो छोटी थी ना 7-8 साल के, तब से उसको ना कलाई के ऊपर ना सूजन और दर्द है, और अभी वो 20-21 साल के हो गई।
1: जी डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहेंगे आप?
2: मैं यही पूछना चाहती डॉक्टर साहब को कि ये क्या दिक्कत है, मैंने सारा कुछ टेस्ट करा के देख लिया, इसको सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल ही आते हैं।
0: ये चूंकि आप बोल रहे 7 साल की उम्र से शुरू हुआ है, अभी भी लग रहा है, और एक ही जोड़ में, कलाई के जोड़ में ही आप बोल रहे हो?
2: हाँ जी।
0: और किसी जोड़ में नहीं है?
2: किसी जोड़ में नहीं है, पर शरीर में इसकी जकड़न सी रहती है, शरीर इसको चलती नहीं ढंग से जैसे आम इंसान के चलते ना, वैसे नहीं चलते।
0: ये थोड़ा बहुत हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ज्यादा लग रही है मुझे। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी मतलब इस जोड़ की कोई दिक्कत स्ट्रक्चरली हो सकती है, बट जिस हिसाब से आप मुझे बोल रहे हो, मुझे तो ये गठिया किसी भी किस्म के आमतौर पर गठिया के लक्षण नहीं लगते हैं। बट इसके बावजूद भी अगर आपको इनको, क्योंकि थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन आपकी मिल रही है वो थोड़ी इनएडिक्वेट है, थोड़ी पूरी नहीं मुझे मिल रही है, तो आप किसी भी दिन आप हॉस्पिटल आके विशेषज्ञ से मिल सकते हैं इसको लेके, और तभी पूरा इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर ये लगता है हमें गठिया की तरफ की है या चूंकि जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं, ये आमतौर पे सिंगल जोड़ है और इतने सालों से चल रहा है, किसी और जोड़ में दिक्कत नहीं है ज़्यादा मुझे लग रहा है, और छोटी उम्र 7 साल की उम्र से हुआ, ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी लग रही है मुझे, तो ये दिखा के ही हम लोग इसमें आपको आगे के लिए निदान बता सकते हैं
2: तो जी। सर आप टांडा मतलब
0: हाँ जी, हाँ जी, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं, हम लोग मेडिसिन ओपीडी में होते हैं, तो आप सोमवार से शनिवार तक कभी भी आ सकते हैं
1: जी। और कुछ पूछना चाहेंगे?
2: कौन से कमरे में बैठते हैं आप?
0: ये 4 नंबर मेडिसिन ओपीडी बोलते हैं हम लोग इसको वहाँ पे।
2: अच्छा जी, जी सर, धन्यवाद, मैं लेके आऊंगी, इसकी पिछला रिपोर्ट भी ले आऊंगी।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल,
2: ठीक है, थैंक यू सर
1: जी। शुक्रिया पवना जी हमसे बात करने के लिए जी। डॉक्टर साहब, ये पवना जी थी और इन्होंने जो प्रश्न पूछा उससे भी एक प्रश्न निकलता है कि ये जो गाउट रोग है, गठिया रोग, इसमें उम्र का कोई लेना देना है? क्योंकि बहुत कम उम्र में इन्होंने बोला कि ये बच्ची को हुआ है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कम उम्र में भी ये रोग हो सकता है या उम्रदराज लोगों को ही होता है?
0: मोटे मोटे तरीके पे अगर हम इस चीज़ को बात कर लें, 2-3 चीज़ें ज़रूर हमने समझनी है गाउट को लेके। गाउट आमतौर पर छोटी उम्र में नहीं होगा
1: जी।
0: दूसरा, फीमेल्स को नेचर ने कुछ हार्मोन्स ऐसे दिए हैं, जब तक उनकी माहवारी चलती रहती है, मीनोपॉज नहीं डेवलप हुआ है, मीनोपॉज से पहले तक प्रैक्टिकली गाउट कभी होगा नहीं। और ये भी एक हमने देखा हुआ है, लोगों के मनों में बहुत भ्रांति रहती है कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, मेरे को यहाँ थोड़ी दर्द हो रही है, खासकर फीमेल्स के में, और वो अगर उनका अभी भी मीनोपॉजल नहीं हुई है, उनका मासिक माहवारी चलती रहती है
1: जी,
0: ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नेचर ने उनको कुछ ऐसे हार्मोन्स दिए हैं जिनसे यूरिक एसिड उनके यूरिन में निकलता रहता है और उनको गाउट होने की संभावना ना के बराबर रहती है। हाँ, पोस्ट मीनोपॉजल तो फिर हो सकता है। सो फीमेल, यंग फीमेल्स में प्रैक्टिकली होना ना के बराबर है। हाँ, मेल्स की अगर हम बात कर लें तो मेल्स में आमतौर पर यही है, थोड़ा एज रिलेटेड ही ज़्यादा ये दिक्कत है, उम्र के साथ साथ ही इसका होना ज़्यादा चांसेस रह लेते हैं, कम उम्र में होना कम चांसेस रहता है। कुछ चीज़ें जो रिस्क बढ़ा देती है इवन कम उम्र में भी होने के लिए, उनको लेके कुछ अगर हम बात कर लें तो जैसे मोटापा है, किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा रह लेता है, उनको डायबिटीज़ है, उनको ब्लड प्रेशर की ज़रूर ज़्यादा रहता हो, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हिस्सा अगर कभी कभी ये हो, जिसको हम बोलते हैं जैसे रात को खरांटे मार लेते हैं, दिन में सोए रहते हैं, ओबस्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एलिमेंट किसी में लोगों में रहता है
1: जी,
0: तो उनमें यूरिक एसिड की संभावना ज़्यादा रह लेती है ज़्यादा होने की, और कम उम्र में भी चांसेस रहते हैं उनके गाउट होने के
1: जी।
0: कम उम्र में एक और फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ये अनुवांशिक भी है, फैमिलीज में भी हो सकता है, एक लगभग 40-50% लोगों की फैमिली हिस्ट्री मिल जाती है कि पेरेंट्स में हो या भाई में हो या किसी और कजिन्स में हो, तो यूजुअली उनमें भी ये चीज़ें थोड़ा अर्लियर आ सकती है
1: जी।
0: तो ये मोटा अगर हम बात कर ले गाउट के लिए, बट कभी कभी रेयरली कुछ इस तरीके के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें हो सकता है कभी यंगर एज में भी हो जाए, विच आर वेरी अनकॉमन, वो बहुत ज़्यादा कॉमनली होते नहीं हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, क्या हम ये मान सकते हैं कि पुरुषों में ये रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है महिलाओं के अपेक्षा?
0: ये सही है, पुरुषों में ये रोग होने के बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली, ये एक गाउट एक ऐसी चीज़ है जिसको आमतौर पर पुरुषों की बीमारी ज़्यादातर मानते हैं महिलाओं के कंपैरिजन में
1: जी।
0: और इस बीमारी को अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, इस बीमारी को आमतौर पर बोलते भी थे राजाओं की बीमारी
1: जी जी जी,
0: है ना, डिजीज ऑफ किंग्स, और
1: यानी जिनका खान पान अच्छा है,
0: बहुत
1: और जो
0: अच्छा हो,
1: बहुत आराम पसंद,
0: हाँ, पैसे वाले हो, एफ्लुएंट हो, उनका खाना पीना इतना रिच हो इन चीज़ों में जो गाउट कर सकते हैं, खाना और पीना दोनों चीजें
1: जी, जी,
0: तो ये इसीलिए माना जाता है, ये गरीब की बीमारी नहीं मानी जाती थी
1: जी, जी। लेकिन आज तो ये
0: हाँ
1: सामान्य रूप से देखने को मिलती है।
0: कुछ चीजें वक्त के साथ बदलाव हो गया, सब चीजों में, खाने पीने में भी, थोड़ी शैली में भी, जीवन शैली में भी बदलाव आ गया, तो अभी ऑलमोस्ट हम बहुत स्पेक्ट्रम अमीर गरीब के स्पेक्ट्रम में देख लेते हैं, बट आमतौर पर जैसे आपने पूछा मर्दों की ज्यादा प्रॉब्लम है, हाँ पोस्ट मीनोपॉजल जिन फीमेल्स का महावारी रुक गया उनमें भी होने के चांसेस फिर आ जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, ये कैसे पहचान करें कि मरीज को जो लक्षण हैं वो गाउट के कारण हैं या अन्य किसी प्रकार के गठिया रोग हैं?
0: हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न आपने संजीव जी पूछ लिया। गाउट की सबसे पहली प्रेजेंटेशन जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में, चूंकि हम लोग कॉमन बात, कॉमन चीज़ों की बात करते हैं, अनकॉमन की बात नहीं करते, तो ऑलमोस्ट 70 से 90%, मतलब अगर 100 मरीज हम गाउट के देखते हैं, लगभग 10 में से 9 या 100 में से 90 मरीजों को गाउट की बीमारी शुरू होगी पाँव के अंगूठे की दर्द से
1: जी।
0: सो टिपिकल पेन का एपिसोड क्या होता है, टिपिकल स्टोरी क्या बनती है, टिपिकल हिस्ट्री क्या मिल जाती है कि रात को दर्द होगा, नींद में ज़्यादा सबसे ज़्यादा शुरू होगा, अंगूठे में दर्द होता, अंगूठा और पाँव का जोड़ जहाँ मिलता है वहाँ पर ये बहुत लाल हो जाता है, इसको छू नहीं सकते, बहुत गर्म भी हो जाता है, ऐसे लगता है काफ़ी गर्म, ऐसे लगता है जल रहा है जैसे
1: जी।
0: और आदमी रात को अगर रजाई ओढ़ रहा है, अपनी बेडशीट भी उसको भी रख नहीं पाता इस पाँव पर, इतना दर्द होता है इसमें। ये माना भी जाता है, जैसे मैंने बोला इट्स अ डिजीज़ ऑफ किंग्स, और इसको बोला जाता है इट इज़ किंग ऑफ डिजीज़ ऑल्सो। किंग ऑफ डिजीज़ का मतलब ऐसा हुआ कि एक आदमी को जब गाउट का दर्द होता है, ये शायद उसकी ज़िंदगी का सबसे तेज़ दर्द एहसास हुआ होगा
1: जी।
0: तो इतना तेज़ दर्द होता है इसमें उस टाइम रात को। तो ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो हमें पकड़ना लक्षण मिल जाता है या सिम्टम मिल जाता है इस बीमारी को पकड़ने के लिए
1: जी।
0: तो इसमें ज़्यादा डिफरेंशियल डायग्नोसिस फिर होते नहीं है, एक ही चीज़ को हमें सस्पेक्ट करना है कि कहीं वहाँ उस जोड़ में इन्फेक्शन के कारण से दर्द तो नहीं है। दो ही चीज़ें बस, सिंगल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है चूँकि एक ही जोड़ में, और पाँव के अंगूठे में दर्द होगी, यूजुअली रात को शुरू होती है, मरीज को इतना दर्द होता है कि चलना फिरना भी मुश्किल होता है, पाँव नहीं टिका पाता, जुराब नहीं पहन सकता, जूता पहनने में मुश्किल हो जाती है
1: जी।
0: और बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के लिए 5-6 दिन हफ्ता भर ये दर्द रहती है, और इवन विदाउट ट्रीटमेंट भी कभी कभी ठीक हो जाती है, बट कुछ दवाइयां हम लोग पेन के लिए दे देते हैं, ये ठीक हो जाता है
1: जी। एक फेज आप माफी चाहेंगे, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार, रेडियो सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए या दूर हट जाइए उससे।
3: सर जी, मेरे पांव के जो गुठे हैं, उंगली है ना जी,
0: जी जी बोलिए,
3: तो इसमें भारी दर्द होती है मेरे को, मैं तो बिस्तरे में रख नहीं सकता, मैं बिस्तरे से भी बाहर जलन होती भारी, उसमें बहुत दर्द होती है जी, ना पांव नीचे लगा सकते, ना जूते पहन सकता हूँ
1: जी। आपने अपना परिचय नहीं दिया, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मैं पूर्णचंद डिस्ट्रिक्ट मंडी से बोल रहा हूँ जी।
1: जी जी डॉक्टर साहब,
0: देखो आपकी जानकारी जो है, आप बोल रहे हो पाँव में जलन होती है कि अंगूठे
3: ज्यादा होती है जी, उंगली में होती है जाती है अंगूठे और उंगली में, मतलब बिस्तरे में डाल सकता हूँ, बाहर निकालता हूँ रात को।
0: नहीं, आपको उसमें सोजिश आती है कि नहीं है, जोड़ लाल हो जाता है कि नहीं, शायद दो चीजें आप कंफ्यूज कभी कभी करते हैं। हम लोग कभी कुछ एक बीमारी होती है जिसको हम जो टांग में खून का दौरा कभी कम होता है, एक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज बोलते हैं, खासकर जो स्मोकर है उनमें भी हो जाती है।
3: सर मैं पिछली बार हॉस्पिटल में दाखिल था, पांव पीछे से भी सूजिश आ गई, नीचे भी दर्द होती है, मैं चल नहीं पाता था
0: जी। तो ज्यादा चांसेस तो मुझे अभी गाउट के ही लगते हैं, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, अगर अंगूठे में दर्द पड़ती है, पांव नीचे नहीं रख सकते, वो लाल हो जाता है, जोड़ में भी दर्द, सोजिश आती है, और जैसे मैंने बोला आप इसमें बिस्तरे को बाहर, बिस्तर से बाहर निकालना पड़ता है, उसके ऊपर शीट भी नहीं डाल सकते, ज़्यादा तो चांसेस गाउट के ही लगते हैं। और आप जिस डॉक्टर साहब से मिले उनसे परामर्श कर सकते हैं, इसमें जोड़ की जो इनिशियली हम पेन के लिए कुछ दवाइयाँ देते थे, आमतौर पर जल्दी पेन में रिलीफ मिलता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ हैं, वो डिसाइड करना पड़ता है मरीज का, किडनी का टेस्ट कैसा है, मरीज़ को कभी खून की उल्टी, काले रंग की लैटरिन वगैरह तो नहीं है, ये सारा देखना पड़ता है, उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है मैं इस मरीज को क्या दवाई सेब दूं। और जब तक ये दर्द कम नहीं हो, हम तब तक आमतौर पे यूरिक एसिड का कम करने की दवाई देते नहीं थे। और एक और चीज़ है, इस टाइम अगर हम यूरिक एसिड लेवल आपका कर लेंगे दर्द के टाइम, वो ज़्यादा मतलब रखता नहीं है, क्योंकि वो आमतौर पर ही नॉर्मल आता है। सो मेरा मानना है कि आप डॉक्टर साहब से परामर्श ले लो, और ज़्यादा चांसेस तो मुझे लगते हैं गाउटी आर्थराइट्स ही है, और वो आप इसको एक एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के मान के चलना पड़ता है, क्योंकि ये एक दिन, दो दिन की, हफ्ते, 10 दिन, महीने भर की बीमारी नहीं रहती है। एक बार जिसको अंगूठे में दर्द हुआ, उसको ज़्यादा चांसेस रहते हैं बार बार होने के भी, कभी ज़रूरी नहीं है एक ही बार कभी हुआ दोबारा नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को 2 बार अंगूठे में आप दर्द हुई है ज़िंदगी में, उनको लॉन्ग टर्म मतलब ज़िंदगी भर के लिए यूरिक एसिड को ठीक करने वाली दवाइयाँ भी लेनी चाहिए।
3: अच्छा जी,
1: जी और कुछ पूछना चाहेंगे?
3: जी सर, धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध रहेगा, जब भी हमें फोन करें कृपया अपने रेडियो सेट से थोड़ा दूर हट जाएं या उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, जिससे आपकी बात हम तक ठीक से पहुंच सके और प्रतिध्वनि हमें ना सुनाई दे।
0: अच्छा, तो अभी बात हम कर रहे थे संजीव जी, एक जोड़ में दर्द होना
1: जी,
0: फिर आमतौर पे दवाइयों से ये जब ठीक हो जाता है, इसके बाद उसको हम बोलते हैं इंटरक्रिटिकल पीरियड। इंटरक्रिटिकल पीरियड का मतलब हो गया मरीज को बिल्कुल ऐसे लगता कुछ था नहीं
1: जी, जी।
0: जब तक उसको दोबारा एक और अटैक ना पड़े। अब जैसे मैंने इन श्रोता को बताया, आमतौर पे हमने देखा हुआ किसी को एक अटैक पड़ गया, उसको चांसेस बहुत कम रहते हैं दोबारा भी पड़े, बट दूसरी बार जिसको गाउट का अटैक पड़ गया, ये ऐसी पेन हुई अंगूठे वाले की
1: जी,
0: उनको यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयों पे भी ज़रूर डालना पड़ता है। और यूरिक एसिड कम करने वाली दवाई इस तरीके से लेनी है कि वो ज़िंदगी भर खानी है। आमतौर पे हमने देखा हुआ महीने भर के लिए लेंगे, 2 महीने लेते हैं, 3 महीने लेके लेते हैं, बंद कर देते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका नहीं है। किसी को यूरिक एसिड के 2 बार गाउट के अटैक पड़ गए, उसको लाइफ लॉन्ग इसकी दवाई लेनी चाहिए,
1: पड़ेगी।
0: वक्त के साथ फिर क्या क्या होता है, इस बीमारी का और एवोल्यूशन कैसे होता है, कि जैसे मैंने बोला शुरू तो एक ही जोड़ से होता है और एक जोड़ में भी ठीक होके बीच में फिर एक पीरियड निकल जाता है बिना दिक्कत रहे और दोबारा जब तक अटैक ना हो। लेकिन जब ये बीमारी नेग्लेक्ट होती है, ठीक से इसका ध्यान नहीं दिया जाता, निदान नहीं किया जाता
1: जी,
0: तो ये अल्टीमेटली मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देती है
1: जी, जी, जी।
0: ये फिर बड़े जोड़ों को भी इन्वॉल्व करती है, एंकल को, घुटने को इन्वॉल्व करती है, नी को इन्वॉल्व कर देती है, इस तरीके से मल्टीपल जोड़ों को इन्वॉल्व कर देती है। तो ये फिर एक मल्टीपल जॉइंट्स की दिक्कत बनती है। उसके बाद क्या होने लगता है, फिर हम देखते हैं, जैसे मैंने क्रिस्टल्स की ये बात कर दी, ये स्किन के नीचे आने लगते हैं
1: जी,
0: वो ऐसे लगता है उनमें से कभी कभी चौक जैसा पाउडर निकल आता है, उसको जिनको टोफाई बोलते हैं हम
1: जी, जी।
0: और बदकिस्मती से इस रोग को अगर नेग्लेक्ट किया जाए, मरीज उस स्टेज तक भी पहुंच जाते हैं, और वो आज की डेट में भी ऐसे मरीज मिल जाते हैं जिनमें शरीर के नीचे, स्किन के नीचे, चमड़ी के नीचे ये चौक जैसे पाउडर की छोटी छोटी गिल्टियां जैसी बनने लगती है और उनसे चौक जैसा पाउडर निकलता है, उसको टोफाई जिसको बोल देते हैं। फिर जॉइंट्स को भी डैमेज कर देता है, जोड़ों को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो आदमी को इसीलिए इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, टाइमली इन चीज़ों को दिखाना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए
1: जी। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
4: हेलो, नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
4: संजीव कुमार बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मकेरिया
1: जी। कहिए, क्या पूछना चाहेंगे आप डॉक्टर साहब से?
4: नमस्कार डॉक्टर साहब
0: जी। नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर साहब सात से गर्भ गया था।
1: हाँ। जी अपने रेडियो सेट का थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है।
4: ठीक है सर। मैं फिर वो अड्डी जो होती है एडी, वो थले दब गई थी
0: जी।
4: एक बार मेरा गिट्टा मुड़ गया था, मचकोड़ आ गई थी
0: जी।
4: अब वो क्या होता है कि मेरे दो उंगला पिछले साल सियाले ना बहुत दर्द हुई उंगला च, तली च
0: जी, जी।
4: तो जीरो कैस्ट मैंने टेस्ट कराया तो दवाई 3 महीने खाली ठीक हो गया, लेकिन हम उंगला सुन रही तली दे थले जिदा कुछ गिल्टी नहीं होंगी, इदा लगता उंगला दे जिसे जोड़ शुरू होंगे उंगला दा
0: जी, जी।
4: तो फिर वो जड़े मेरी पिन्नी है ना गोडे चो गोडे से नीचे घुटने से तो इडी से ऊपर
0: जी,
4: जब मैं लम्बा पहना कई बार आकड़ जाती है तो दर्द होती है वहां, फिर मैं उठकर उसको दांत को झाड़ना पड़ता है फिर ठीक होती है
0: जी, जी।
4: ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे को।
0: अच्छा, तो देखो जैसे आपने खुद ही बोला, मैंने यूरिक एसिड की दवाई थोड़े टाइम ले ली, बंद कर दी, और अगर आपको अंगूठे में दर्द पड़ी थी, उसमें सोजिश थी, उसमें अभी आपको लगता
4: है अंगूठे से दर्द नहीं हुई, सिर्फ उंगलियां तिन्ना च दर्द हुई ही, वो ठीक होगी, दर्द नहीं होती है अब
0: जी।
4: लेकिन मेरी घुटने से नीचे और एड़ी से ऊपर जो पिन्नी होती है ना
0: जी,
4: उसमें आकड़ जाती है कई बार, तो फिर बहुत पेन होती है उसमें।
0: नहीं, ये लगता लगता नहीं, अभी वाला जो दिक्कत आप मुझे बता रहे हैं ये गाउट के साथ संबंध है।
4: हाँ जी,
0: क्योंकि मैंने जैसे बोला गाउट की दिक्कत में जोड़ में दर्द के साथ सोजिश होगी, लालगी आएगी, और उसको जब मैं हाथ लगा लूंगा वो बिल्कुल गर्म मिलेगा मुझे, और उस जोड़ को मुझे हिलाने में मुश्किल हो जाती है। ये ऐसे तो जो आपकी दिक्कत लग रही है, आप बोल रहे कभी चोट चोट भी लगी थी,
4: हाँ, चोट लगी थी।
0: तो ये मुझे लगता है थोड़ा बहुत आप कभी किसी ऑर्थोपेडिशन मिल सकते हो, क्योंकि एडी में चोट लगना, फिर एडी के साथ के ऊपर जो एंकल है उसमें आपको इस टाइम दिक्कत
4: हाँ
0: लगती
4: जी, एडी
0: है
4: जो दर्द होती है
1: जी। एक बार आप हड्डियों वाले डॉक्टर से मिलें।
0: ये तो गठिया आपके... नहीं है, ये गाउट नहीं है।
4: ठीक है सर।
0: जी जी,
4: धन्यवाद
1: जी, शुक्रिया फोन करने के लिए। आरोग्यम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
5: Yes, Rs. 6.75 lakh, valid till 30th September.
6: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
7: Nexa. जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
8: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
5: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
6: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
7: Nexa.
9: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
8: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
6: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
5: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
6: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
5: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
6: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
5: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
7: Nexa.
1: आरोग्यम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं गाउट, गठिया, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। और विशेषज्ञ के तौर पर आज आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियोज में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत रैना। दोस्तों, यदि आप भी किसी प्रकार के दर्द से जूझ रहे हैं और आप पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये क्या है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 01892224391। यह है स्टूडियोज का टेलीफोन नंबर। एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो, हेलो,
10: हेलो
1: जी,
10: मैं राजेंद्र कुमार रोली से बोल रहा हूँ जी।
1: जी राजेंद्र जी, रेडियो सेट से थोड़ा दूर हट जाइए या वॉल्यूम उसका कम कर दीजिए थोड़ा।
10: अच्छा जी
1: जी, अब पूछिए क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से।
10: मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ जी, मेरी पैर की उंगलियाँ कभी कभी दो तीन, कभी अंगूठा, कभी ये पंजा ऐसे मुड़ जाता है जी, और फिर ये बहुत देर बाद सीधा होता है जी। उंगलियां दो तीन, कभी कभी एक उंगली, कभी दो, ऐसे
0: जी।
10: तो ये सर कोई ये तो नहीं है इसका कारण कोई
1: जी, ये पूछना चाहते हैं कि ये गाउट तो नहीं है कहीं?
0: जी जी, जिस जो
10: नहीं,
0: आप
10: नहीं
0: जी,
10: गाउट भी है, ये किस चीज से होता है, किस एफिशिएंसी से होता है? मेरी उम्र 83 साल की है जी।
0: जी
1: जी राजेंद्र जी, अगर आप कार्यक्रम को शुरू से सुन रहे हैं तो बहुत कुछ हम बता भी चुके हैं और आगे भी ये बताने वाले हैं कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचा जाए।
0: जी, जो जो आप मुझे लक्षण बता रहे हैं वो तो गाउट के नहीं है। आप बोल रहे मेरी उंगलियां मुड़ जाती है, अंगूठा मुड़ जाता है।
10: मुड़ जाती है, सीधी करना मुश्किल हो जाती है।
0: हाँ, ये तो गाउट के लक्षण नहीं है। तो ये कभी कभी नसों पे कुछ डेफिशिएंसीज का असर पड़ सकता है, उनके कारण से ये चीज़ हो सकती है। शरीर में कभी कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है। तो ये गाउट के लक्षण तो नहीं है, बट हाँ, ये कभी हम लोग उनका आयरन की कमी हो, कभी कैल्शियम की कमी हो, कभी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी हम लोग एक टर्म को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोलते हैं। तो इन चीज़ों को, इसको एक बार आप नज़दीक के डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, वो आपसे पूरा डिटेल में एग्जामिनेशन भी करके, कुछ टेस्ट्स एडवाइस करके, इस चीज़ में किस निष्कर्ष से हो, इस चीज़ के किस चीज़ से हो रहा, उस निष्कर्ष पे पहुंच जाए।
10: अच्छा
0: जी, बट गाउट नहीं है ये, आप जिस हिसाब से बता रहे हैं गाउट की दिक्कत नहीं है।
10: अच्छा
0: जी,
1: जी शुक्रिया उनसे बात करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, आपने कुछ टेस्ट की बात की है, तो गाउट के लिए क्या क्या टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं? क्या सिर्फ रक्त की जांच से ये पता चल जाता है, या इसके लिए एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन तक भी कराना पड़ता है?
0: नहीं संजीव जी, टेस्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, आमतौर पर क्लिनिकली जब हम लोग देख रहे हैं और इस तरीके का लक्षण मिल गया
1: जी,
0: तो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बन गया। लेकिन जैसे मैंने बोला, क्योंकि सिंगल जॉइंट की अगर इन्वॉल्वमेंट हुई है और वो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता कि कहीं इन्फेक्शन से तो नहीं हुआ, तो एक सिंपल टेस्ट होता है, इसमें एस्पिरेट करना पड़ता है जॉइंट। जॉइंट में ही एक सिंपल सी नीडल हम डाल देते हैं और वहाँ से सैंपल ड्रॉ करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता। तो माइक्रोस्कोप के नीचे ये क्रिस्टल जो है यूरिक एसिड, क्योंकि मैंने बोला ये क्रिस्टल बना देते हैं, क्रिस्टल, तो ये आप मान के चलो एक टूटा हुआ शीशा जैसा होता है, वैसे दिखने लगते हैं उसमें। सो एक स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, उस माइक्रोस्कोप के नीचे ये क्रिस्टल हमें दिख जाते हैं, तो वो कन्फर्मेटरी है कि ये गाउटी आर्थराइटिस ही है
1: जी।
0: यूरिक एसिड लेवल का जो मैंने आपको बोला, चूंकि एक एक्यूट अटैक के दौरान यूरिक एसिड लेवल नॉर्मल हो सकता है, सो इसीलिए यूरिक एसिड के बेस पे हम डिसाइड नहीं करते हैं सीरम यूरिक एसिड या ब्लड का यूरिक एसिड लेवल के बेस पे कि ये गाउट था कि नहीं था
1: जी।
0: क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद इसमें नीडल से, सिरिंज से एस्पिरेट करके और माइक्रोस्कोप के नीचे वो नीडल देख के हम लोग कन्फर्म कर देते हैं कि ये गाउटी आर्थराइटिस है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और दूसरे इन्वेस्टिगेशंस का बहुत लिमिटेड रोल है डायग्नोसिस के लिए। उनका रोल तब कभी कभी आ सकता है कि जिसको हम प्री गाउट स्टेट बोलते हैं, पहले पकड़ लूँ मैं, यार ऐसा तो नहीं होने वाला, मेरे को थोड़ा अंगूठे में थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है इस जोड़ में, अदरवाइज प्रैक्टिकली उनका रोल नहीं है डायग्नोसिस बनाने के लिए
1: जी। डॉक्टर साहब, इलाज की बात करते हैं, मेडिकल साइंस में गाउट के लिए क्या क्या इलाज संभव हैं?
0: जी, इलाज तो बहुत आसान है, इसमें दो तरीकों से इलाज करना पड़ता है। एक को हम बोलते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब हो गया जिसमें दवाइयों की नहीं है। तो उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल में सबसे पहला काम, हमने जैसे एक्यूट अटैक हुआ जिसको बहुत जोर की दर्द हो गई है, इसको दर्द से रिलीफ देना है। सो दर्द का रिलीफ देना, तो इसमें कोल्ड कंप्रेसेस बहुत हेल्प करती है, बर्फ
1: की सिकाई है,
0: हाँ, बर्फ की सिकाई करना बहुत मदद करता है, बहुत हेल्पफुल रह लेता है जो सूजा हुआ जोड़ गए उस जोड़ में दर्द है
1: जी।
0: एक तो ये तरीका हम करते हैं। दूसरा फिर खाने पीने का मैं बात में थोड़ा बात करता हूँ, अभी मैं एक्यूट अटैक के लिए बात करता हूँ। दूसरा, मेरे को दर्द के जब मरीज आएगा इसको, तो उसको दर्द कम करने की दवाइयाँ देनी पड़ती है, वो डॉक्टर डिसाइड कर लेता है, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत और चीज़ें देखनी पड़ती, कोमॉर्बिड स्टेट जिसको हम बोलते हैं, कोई दूसरी चीज़ें तो नहीं है, उसके बेस पर डिसाइड करता है किस टाइप की वो दर्द की दवाई देते हैं।
1: जी जी,
0: इस स्टेट में जब एक्यूट अटैक होगा हमको यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ नहीं देनी होती है, वो इसलिए हम लोग नहीं देते हैं क्योंकि वो इन इटसेल्फ फिर प्रेसिपिटेट करता है इसकी दर्द को। तो ये भी एक थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब तक एक्यूट अटैक सबसाइड ना हो यूरिक एसिड कम करने वाली दवाइयाँ ना डालें, और आमतौर पर इसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कब वो डालें। फिर रहता है दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इन मरीजों का खाने पीने का।
1: जी जी, डॉक्टर साहब, खान पान की हम बात करेंगे आगे, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब मेडिकल साइंस की आपने बात की है और बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं, बहुत से जो दर्द हैं, वो सिर्फ पेन किलर दे करके ही ठीक हो जाते हैं, तो इनमें हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब कोई मरीज़ किसी अन्य तरह की दवाइयाँ भी ले रहा है, और इन दवाइयों की वजह से भी क्या ये रोग हो सकता है?
0: हाँ, ये भी एक अच्छा प्रश्न आपने किया संजीव जी। कुछ दवाइयाँ हैं जो शरीर में यूरिक एसिड ज़रूर बढ़ाती है, उसमें सबसे बड़ी जो कॉमनली हम देखते हैं वो टीबी की दवाइयों के साथ देखते हैं हम लोग।
1: जी जी,
0: और टीबी में दो किस्म की दवाइयाँ, एक को पायरेजनमाइड बोलते हैं और एक कभी कभी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कि थैम्बिटॉल है, ये जो दो दवाइयाँ हैं ये यूरिक एसिड को बढ़ा लेती है, और कभी कभी हमने देखा टीबी की दवाइयाँ तो दे रहे हैं हम, साथ में उसको गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस टाइम थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है, उन चीज़ों को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है।
1: जी,
0: फिर कुछ कभी हम हार्ट की दवाइयाँ यूज़ कर लेते हैं, या ब्लड प्रेशर को लेके कुछ दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिनको हम थायराइड ड्रग्स बोलते हैं, ये डायरेटिक्स दवाइयाँ जो बीपी को कम करने में हमें मदद करती है, ये भी प्रेसिपिटेट करती है कभी कभी।
1: जी जी,
0: एस्पिरिन कम डोज में, ये भी देखा गया हुआ है, दो एस्पिरिन हम ज़्यादा हाई डोज में जब यूज़ कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है, बट कम डोज में ये कभी कभी प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो कुछ दवाइयाँ कुछ ऐसी है जो गाउट का अटैक किसी मरीज में प्रेसिपिटेट हो सकता है, ऐसा भी है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं कि जल्दी से वो चिकित्सक के पास जाते नहीं हैं जांच करवाने, और जैसे दर्द हुआ और आसपास के मेडिकल स्टोर पर जाकर के दवाई उन्होंने ले ली, दर्द दब गया, और उसके बाद यही सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है, ये कितना घातक हो सकता है?
0: हाँ, ये मैंने संजीव जी ऐसे आपको पहले ही बोला कि आपको बेहतर इस चीज़ में है कि मरीज़ को परामर्श लेना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो ये हो सकती है, अगर उसने दर्द की गोली ले ली और उसको अपना किडनी का टेस्ट का ही नहीं आइडिया, किडनी का फंक्शन का ही नहीं आइडिया, या उसको कभी काले रंग की लैटरिन हुई है, तो ये उसके लिए बहुत घातक हो सकता है कोई भी दर्द की दवाई लेनी इसको दर्द दबाने के लिए, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है, क्योंकि मैंने बोला अगर आप इसको रेगुलरली फॉलोअप पे नहीं रहे, रेगुलरली दिखाते नहीं रहे, ये अल्टीमेटली मैनिफेस्ट करता है, अब दिक्कत बढ़ जाती है और ये मल्टीपल जोड़ों को इन्वॉल्व कर देगा, और जैसे मैं उन बोला बाद में एक टोफाई भी डेवलप होते हैं, ऐसे लगता है छोटी छोटी गांठें पड़ने लगती है, तो इसीलिए इस चीज़ को बेहतर है इग्नोर ना करें, ओवर द काउंटर है, दवाई वाले से गोली ना लेके बेटर है हॉस्पिटल आके डॉक्टर साहब से ही मिले।
1: जी, एक श्रोता हमसे जुड़ना चाहते हैं। हेलो
11: संजीव जी, नमस्कार।
1: जी नमस्कार, जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए, नाम बताइए।
0: हाँ नमस्कार जी,
11: डॉक्टर मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि जो गठिया रोग है उसका जो पहचान है पैर के अंगूठे से शुरू होता है।
0: जी,
11: मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सिर्फ पैर के अंगूठे में ही उसमें कोई तकलीफ होती है, या शरीर के दूसरे जोड़ों में भी कोई उसका प्रभाव पड़ता है? कि देखिए ये यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होता है, जहाँ की थायराइड बढ़ने से, या गठिया रोग अलग से है?
0: जी, दोनों प्रश्नों का आपको मैं उत्तर इस तरीके से दे देता हूँ। देखो, मैंने बोला कॉमन थिंग्स, कॉमन चीज़ें, हम लोग मेजॉरिटी में 90% लगभग लोगों में बीमारी अंगूठे से ही शुरू होगी। हाँ, बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उसको एटिपिकल प्रेजेंटेशंस बोलते हैं। एटिपिकल का मतलब हो गया कॉमन नहीं है, ये बहुत आम तौर पे नहीं है, तो उनमें किसी जोड़ में अलग से भी हो सकता है, बट ये एक डॉक्टर ही अल्टीमेटली डिसाइड कर सकता है कि भैया ये एक पर्टिकुलर जोड़ में अगर दिक्कत होगी ये गाउट से हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और अगर आपने प्रोग्राम शुरू से सुना होगा, जो आपका दूसरा प्रश्न है उसका मैंने शुरू से ही उत्तर भी दे दिए हुए थे, उन जो दूसरा प्रश्न था आपका।
1: जी, शुक्रिया फ़ोन करने के लिए।
12: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
13: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
12: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
13: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
12: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
13: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
12: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
14: Nexa.
12: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
13: Meet the

0: Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now it's yours at an effective price of just ₹6.75 lakh.
1: Yes, ₹6.75 lakh.
2: Guide जरूरी है कि अल्कोहल और
0: डोंट मिस आउट. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
3: आरोग्यम कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. और कार्यक्रम में डॉक्टर साहब, हम आपसे डाइट के बारे में जानना चाहेंगे. खान पान कैसा रहना चाहिए कि गाउट रोग जो है उससे बचा जा सके.
4: जो दो चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली बंद करनी चाहिए, एक जिसको यूरिक एसिड ज़्यादा हो या गाउट की दिक्कत है, दैट इज़ अल्कोहल और रेड मीट और सी फूड. ये बिल्कुल बंद करने चाहिए. फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप जिनमें डला होता है. एक आजकल ट्रेंड है, जितने भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स है जो लोग हम यूज़ करते हैं, जैसे जूसेस है, कोल्ड ड्रिंक्स है वगैरह, कभी सॉस यूज़ कर लेते हैं, जैम्स यूज़ होते हैं, उनमें एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड जो फूड्स हैं उनमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत होती है. ये फ्रुक्टोज की ज़्यादा मात्रा भी गाउट को प्रेसिपिटेट कर सकता है.
3: दालों के बारे में हो सके घर का खाना खाएं और छिलके वाली दालें शायद.
4: ये भी ये थोड़ा एक गलत धारणा है, लोग छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं. इनमें प्यूरीन होते तो थोड़े बहुत ज्यादा, लेकिन अपना एक बैलेंस डाइट का एक जरूर हिस्सा है और एक लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, बंद नहीं करने की. चने की दाल है, छिलके वाली दालें हैं, कोई मना ही नहीं है एक गाउट होने वाले मरीज को या यूरिक एसिड जिनका ज्यादा हो ना लेना.
3: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे जिससे गाउट की समस्या से बचा जा सके.
4: देखो, अपनी फिजिकल एक्टिविटी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्टिव रहें, चलते फिरते रहें, फिजिकल एक्सरसाइज करते रहें, वेट का ध्यान रहे, अपना वेट लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे, अल्कोहल और रेड मीट का जो सेवन है उसको कोशिश करे अवॉइड करना.
3: जी डॉक्टर सुजीत रैना, आप कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, बहुत बहुत शुक्रिया.
4: शुक्रिया, धन्यवाद.
3: जी दोस्तों, तो ये था आज का आरोग्यम कार्यक्रम. चलते चलते आपको बता दें, कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह. आप अपने दोस्त संजीव को दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। विश्व पर्यटन दिवस आज। पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। देश व प्रदेश में आज खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मंडी जिले के जोगिंदर निवासी सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक किया हासिल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। और ऊंची चोटियों पर बारिश व बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। स्वदेश दर्शन के दूसरे चरण, प्रसाद योजना, क्रूज पर्यटन और पर्यटन कौशल विकास जैसी पहलें नए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के साथ पर्यटकों का अनुभव बेहतर कर रही हैं और रोजगार के अवसर बढ़ा रही हैं।
1: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है।
0: इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में बिरला ने कहा कि पर्यटन केवल यात्रा और दर्शनीय स्थलों को देखने से कहीं अधिक है और ये देश की विरासत, संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के बारे में जानने और उनसे जुड़ने का एक अवसर भी है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में आज पर्यटन विभाग और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि इस अवसर पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले पर्यटकों का विशेष स्वागत किया जाएगा। विनय धीमान ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से विभाग का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव के साथ कांगड़ा की पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बल देना है।
2: टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा और हमेशा की तरह इस बार भी हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से इस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। टूरिज्म डे पे जो जितने विदेशी पर्यटक इस एरिया में होते हैं, वो जितनी भी जहां भी स्टे उन्होंने किया होता है, सभी जो यूनिट्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका स्वागत जो है स्पेशली करें। और हमारा जो जैसे एयरपोर्ट पे स्वागत समारोह रहता है, उसमें जितने भी पर्यटक आते हैं, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे फॉरनर्स हैं, उनको सभी को जो है वो हम उनका स्वागत करते हैं।
0: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की कल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार इस अंतराल के बाद।
3: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
4: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
3: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
4: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
5: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्यमिता और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किन्नौर जिले के रिकांगपियो में कल जिला स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में जिले के युवाओं को उद्यमिता और स्टार्टअप से जोड़ने, स्थानीय उत्पादों को आधुनिक तकनीक से विकसित करने और उन्हें बड़े बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
6: किन्नौर के स्थानीय उत्पादों को आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से बड़े बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर दिया गया। चुल्ली का तेल, राजमा, कोदा, फाफरा और ओलगा सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को नई तकनीक से बेहतर बनाकर देश भर में बाजार उपलब्ध करवाने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। स्थानीय उत्पादों की वैज्ञानिक तरीके से पैकेजिंग और ब्रांडिंग होने से इनकी मांग बढ़ सकती है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकता है। किन्नौर के युवाओं को उद्यमिता और उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण देने तथा उन्हें स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया।

0: गया आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
1: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर के धावक सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में कल शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मैराथन में ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया है। सावन ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकालकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से प्रदेश भर में खुशी की लहर है। एशियन गेम्स में मैराथन स्पर्धा में भारत को 44 साल बाद ये पदक हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सावन बरवाल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण ने देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर के धावक सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मैराथन में ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया। 28 वर्षीय सेना के जवान ने 42.195 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में पूरी की और इसके साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। सावन का ये रजत एशियन गेम्स की मैराथन में भारत का 1982 के बाद पहला पदक है। वह एशियन गेम्स में मैराथन पदक जीतने वाले भारत के चौथे धावक भी बने। जोगिंदरनगर के सावन ने 14 वर्ष की उम्र में संयोग से दौड़ना शुरू किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। वहीं किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों क्षितुल, सांगला, भावा वैली, आसरंग व कुन्नो चारंग में हल्की बर्फबारी व निचले भागों में आज भी बारिश का क्रम अभी भी जारी है। हल्की बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा होने से राज्य के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के अनेक जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि आज सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 7 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, दिवाली से पहले डीए बल्ल के कंसा चौक से सीएम का ऐलान, इस बार अच्छा रहेगा त्यौहार। पंजाब केसरी का कहना है, कर्मचारियों को डीए की किस्त जल्द। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बेटियों की उपलब्धि से गौरवान्वित हिमाचल, बेटे ने बनाया रिकॉर्ड। मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है, किन्नौर में बर्फबारी, आज भी बारिश का अलर्ट। हिमाचल दस्तक का कहना है, मौसम ने ली करवट, ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी, जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं, किन्नौर में सीजन की पहली बर्फबारी, शिमला में बारिश से पारा 9 डिग्री तक गिरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। विश्व पर्यटन दिवस आज, पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर। देश व प्रदेश में आज खुले रहेंगे सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। मंडी जिले के जोगिंदर नगर निवासी सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक किया हासिल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई और ऊंची चोटियों पर बारिश व बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने आज राज्य के 8 जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 10:45 पर। नमस्कार।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
4: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
6: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 MHz पर। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गीतों का कारवां। आप सभी अजीज श्रोताओं को ज्योति का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी के सफर में रास्ते बदलते हैं, मुसाफिर बदलते हैं, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलती वो है संगीत से हमारा पुराना नाता। इसी नाते को और गहरा करने पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों का कारवां। कारवां को आगे बढ़ाते हैं और अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो को फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के इस गीत में। बोल अरुण भैरव के हैं, जतिन ललित का संगीत निर्देशन।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के साथ हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतों के कारवां का। समीर के बोलों को आइए सुनते हैं अब फिल्म इश्क विश्क के इस गीत में। अलका याग्निक और कुमार सानू की दिलकश आवाजें अनु मलिक की तर्ज है।

0: मिस्टर बेचारा फिल्म से ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की जादुई आवाजों में, धुन बनाई आनंद मिलिंद ने।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे हैं शहीद फिल्म से। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं, देव कोहली की शब्द रचना, संगीतकार आनंद राज आनंद।

कार्यक्रम के इसी अंतिम नगमे के साथ लेते हैं कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति। 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ।

0: इसी के साथ कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में आज बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैंने एक खबर देखी जिसमें एक लड़का अपनी 84 साल की माँ को बुरी तरह से मार रहा था। ऐसी ही एक खबर ये भी थी कि एक लड़के ने अपनी पत्नी के साथ में।
3: आकाशवाणी शिमला है, अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होगा। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को साकार देने में तकनीकी भूमिका पर जोर देती है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में बिरला ने कहा कि पर्यटन केवल यात्रा और दर्शनीय स्थलों को देखने से कहीं अधिक है और ये देश की विरासत, संस्कृति, प्रकृति और परंपराओं के बारे में जानने और उनसे जुड़ने का एक अवसर है। इस अवसर पर देश सहित प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला में आज पर्यटन विभाग और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि इस अवसर पर एयरपोर्ट पहुंचने वाले पर्यटकों का विशेष स्वागत किया जाएगा। विनय धीमान ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से विभाग का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव के साथ कांगड़ा की पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बल देना है।
4: टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाएगा और हमेशा की तरह इस बार भी हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी कोलैबोरेशन से इस डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। टूरिज्म डे पे जो जितने विदेशी पर्यटक इस एरिया में होते हैं, वो जितनी भी जहां भी स्टे उन्होंने किया होता है, सभी जो यूनिट्स हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनका स्वागत जो है स्पेशली करें। और हमारा जो जैसे एयरपोर्ट पे स्वागत समारोह रहता है, उसमें जितने भी पर्यटक आते हैं, चाहे डोमेस्टिक हैं चाहे फॉरेनर्स हैं, उनको सभी को जो है वो हम उनका स्वागत करते हैं।
3: वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की कल 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM लिंक शाखाओं और बैंकों तथा ATM के लिए नकदी हेतु करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान ATM से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। लाहौल स्पीति के रंगरी गांव के मुनस्लिंग स्कूल में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश कार्य समिति

0: के सदस्य रवि ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने चित्रकला, भाषण और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2047 के विकसित भारत की अपनी कल्पना प्रस्तुत की और स्वच्छ, शिक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत को लेकर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देश प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना रहा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर के धावक सावन बरमाल ने एशियन गेम्स में कल शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मैराथन में ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया। सावन ने 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड का समय निकालकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उनकी इस सफलता से प्रदेश भर में खुशी की लहर है। एशियन गेम्स में मैराथन स्पर्धा भारत को 44 साल बाद ये पदक हासिल हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सावन बरमाल की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कड़ी मेहनत, लगन और समर्पण ने देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के जोगिंदरनगर के धावक सावन बरमाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को मैराथन में ऐतिहासिक रजत पदक दिलाया। 28 वर्षीय सेना के जवान ने 42.195 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में पूरी की और इसके साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। सावन का ये रजत एशियन गेम्स की मैराथन में भारत का 1982 के बाद पहला पदक है। वह एशियन गेम्स में मैराथन पदक जीतने वाले भारत के चौथे धावक भी बने। जोगिंदरनगर के सावन ने 14 वर्ष की उम्र में संयोग से दौड़ना शुरू किया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ये देश गान।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:55 होने को हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोताओं से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: The best of entertainment, information, education अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
7: कोई बोले राम राम।
6: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच और यूट्यूब पर भी उपलब्ध। आराधना।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़ यार, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
7: कहाँ से पता चलेगा?
6: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
6: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
11: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
12: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था, और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार

शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की। साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे,
आज उनका कोई वजूद

भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए, जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों

0: उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया। यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहां फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था। तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहेजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है। एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग, और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने अचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही हैं। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है, कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित ना रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है, ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा यह अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए, वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहां भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहां आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात कार्यक्रमस्य सेप्टेम्बर मासे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मेलनस्य अवसरः प्राप्यते। अहं देशस्य सर्वेषां जनानां स्वागतं करोमि। मन की बात इत्यस्मिन् अहं देशवासिभ्यः सकारात्मक प्रयासाय मंचं प्रददामि। देशस्य उपलब्धीनां चर्चां करोमि। भारतस्य तादृशैव एका महत्वपूर्णा ऐतिहासिकी उपलब्धिः एकदिवसानन्तरं 10 वर्षाणि प्राप्स्यन्ति। सा उपलब्धिः अस्ति सर्जिकल स्ट्राइक इति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 16-20-शततमवर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 28-29 दिनांकयोः भारतीयसेनया पाकिस्तानदेशे स्थितेषु आतंकवादिनां आश्रयस्थलेषु सर्जिकल स्ट्राइक इति कृतमासीत्। LOC इति नियंत्रणरेखामतिक्रम्य अस्माकं वीरभटैः यथा आतंकवादस्य विरुद्धं सैन्यकार्याचरणं कृतं तद्दृष्ट्वा जगदिदं आश्चर्यचकितमासीत्। सर्जिकल स्ट्राइक इत्यनेन दृढ़तया संपूर्णस्य विश्वस्य समक्षं भारतस्य आतंकवाद विरोधिन्याः नीतेः एकं नूतनम् उदाहरण प्रस्तुतमासीत्। आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं यां पीडाम् असहत सर्जिकल स्ट्राइक इति तस्याः पीडायाः विरुद्धं भारतस्य निर्णायिका प्रतिक्रिया आसीत्। विगतैक दशके बालाकोट विमानाक्रमणात् आरभ्य ऑपरेशन सिंदूर इत्यभियान पर्यन्तं भारतेन पुनः पुनः स्पष्टः संदेशः प्रदत्तोस्ति यत् यदि आतंकवादिनः भारतं प्रति कुदृष्टिं क्षेपयिष्यन्ति तर्हि तस्य कठोरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। सखायः आतंकवादिनाम् आक्रमणैः भारतं दीर्घकालपर्यन्तं पीडितमस्ति। एकः कालः आसीत् यदा भारते क्रमिक विस्फोटानां घटना अत्यन्तं सामान्यः विषयः आसीत्। सेप्टेम्बरस्य अस्मिन्नेव मासे अर्थात् 28 वर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 13 तिथौ दिल्ली नगरे घटितेषु क्रमिक विस्फोटेषु बहवः निरपराधाः जनाः हताः आसन्। अस्य कतिपय सप्ताहानन्तरमेव मुंबई नगरे 2611 इति नाम्ना ख्यातं महद्भीषणम् आतंकवाद्याक्रमणम् अभवत्। सखायः पूर्वमपि प्रत्येकं आतंकवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानस्य विरुद्धं कार्याचरणं कर्तुं याचना क्रियते स्म, किन्तु तस्मिन् विषये न तावत् गंभीरतया ध्यानं प्रदीयते स्म। समययापनमेव प्रतीक्ष्यते स्म, किन्तु अद्यतनीयं भारतं आतंकवादस्य विरोधे शून्य सहिष्णुता नीतिम् अवलम्बते, वयं च तस्याः फलमपि पश्यामः। सखायः अस्मिन् वर्षे 9/11 इत्यातंकवाद्याक्रमणस्यापि 25 वर्षाणि जातानि। अमेरिका देशस्य वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इत्यत्र ये निरपराधाः जनाः स्वप्राणान् अत्यजन् तेषु अमेरिका देशवासिनां पश्चात् सर्वाधिकाः जनाः भारत देशीयाः आसन्। मया स्मर्यते 14/20 वर्षे प्रधानमंत्री पदाधिगमनानन्तरं यदाहम् अमेरिका देशं गतः आसम् तदा न्यूयॉर्क नगरे तेषां निरपराध नागरिकेभ्यः श्रद्धांजलिं समर्पयितुम् अगच्छम्। अद्य च पुनरेकवारं भारतस्य कोटिशः नागरिकाणां पक्षतः अहं तेषां पीडित परिवाराणां प्रति स्वसंवेदनां समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्यत्वे देशे एकं महच्चित्रं निर्मीयते। अस्मिन् चित्रे भवन्तोऽपि सन्ति, भवतां परिवाराः अपि सन्ति, भवतां प्रतिवेशि जनाः अपि सन्ति। अहं भारतस्य जनगणना विषये वदामि। देशस्य सर्वेषु राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च अस्याः प्रथमं चरणं प्रायः सम्पन्नम् अभवत्। 32 कोटिभ्यः अधिकानां परिवाराणां सूचनाः अभिलेखिताः सन्ति। अद्यत्वे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखण्डानां च दुर्गमेषु हिमाच्छादितेषु प्रदेशेष्वपि कार्यमिदं प्रचलति। तत्रत्येभ्यः बहवः प्रेरणादायकाः अनुभवाः अस्माकं पुरतः आगताः सन्ति। उत्तराखण्डे जनगणनायाः प्रारम्भः चमोली मण्डलस्य माणाग्रामात् अभवत्। माणाग्रामः देशस्य प्रथमग्रामः इति कथ्यते। तत्र जनगणना कार्यस्य सर्वप्रथमः आरम्भः 83 वर्षीयायाः पूर्णिमा रावत महोदयायाः अभवत्। उत्तर काशी मण्डलस्य बगोरी ग्रामे गृहवास व्यवस्थां संचालयतः हरदेव सिंह राणा महोदयेन आंकिकीय माध्यमेन स्वस्य विवरणं स्वयमेव पंजीकृतम्। सखायः, जनगणना अस्माकं सर्वेषां राष्ट्रियं दायित्वमस्ति। ऑगस्ट मासस्य 15 तिथौ अपि अहं देशवासिभ्यः आग्रहं कृतवान् आसम् यत् अस्य कार्यस्य कृते स्वसमयम् अवश्यं विनियोजयन्तु। जनगणनायै स्वस्य विवरणं स्वयमेव पञ्जीकरणस्य इयं सुविधा अत्यन्तं सरला अस्ति। भवन्तः स्वस्य चल दूरभाषमाध्यमेनैव स्वस्य तथा स्वपरिवारस्य विवरणं पञ्जीकर्तुं शक्नुवन्ति। एषा सुविधा हिन्दीभाषया सह 16 भाषासु उपलब्धा अस्ति। सखायः, अस्य कृते भवद्भिः जनगणनायाः अन्तर्जालपटले प्रवेष्टव्यं भवति। जालपटलमिदमस्ति se.census.gov.in इति। अस्मिन् जालपटले प्रविश्य स्वस्य चलदूरभाषाङ्केन प्रवेशं कुरुत। स्वस्थानस्य विवरणं दत्त स्वपरिवार सम्बद्धां सूचनां पूरयत, ततश्च तां प्रेषयत। एषा सम्पूर्णा प्रक्रिया प्रायः 15-20 मिनट पर्यन्तं समयं गृह्णाति। अस्य कृते भवद्भिः न किमपि प्रपत्रस्यापि उपारूपणम् आवश्यकम्। विवरण प्रेषणानन्तरं भवद्भ्यः एका विशिष्टा परिचय संख्या प्राप्स्यते। यदा गणनाकर्मी भवतां गृहमागच्छेत् तदा भवन्तः तस्मै तां परिचय संख्यां दर्शयितुं शक्नुवन्ति। भवद्भिः प्रदत्तस्य विवरणस्य सत्यापनानन्तरं सा जनगणनायाः भागः भविष्यति। सखायः, अद्यावधि चलदूरभाषस्य माध्यमेन 60,00,000+ जनाः जनगणना जालपटले आत्मनः विवरणं पूरितवन्तः सन्ति, स्वगणनां कृतवन्तः सन्ति। भवद्भिरपि अस्मिन् कश्चित् समयः दातव्यो भविष्यति, किन्तु राष्ट्रस्य कृते तदत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। यतः भवतां सम्यक् विवरणं, भवतां परिवारस्य च सम्यक् विवरणं देशस्य भविष्यस्य यथार्थं चित्रं निर्मातुं साहाय्यं भविष्यति। मम प्रियाः देशवासिनः, अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 दिनाङ्कः विशेष कारणेन अधिकतरं विशिष्टः अभवत्। अद्य तस्य महापुरुषस्य 100 जन्म जयन्ती अस्ति, यः संस्कृतेः, समाजस्य, राष्ट्रस्य च कृते आत्मनः सम्पूर्णं जीवनमर्पितवान् आसीत्। अहमत्र विश्व हिन्दू परिषदः अन्तर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्षचरस्य श्रद्धेयस्य स्वर्गीयस्य अशोक सिंघल महोदयस्य विषये वदामि। 26th वर्षस्य सेप्टेम्बर् मासस्य 27 तिथौ अद्यतन दिने एव आगरा नगरे तस्य जन्म अभवत्। सः समाजे निवसन्नपि तपस्विनमिव जीवनमजीवत्। राम जन्मभूमि आन्दोलनाय तेन या दिशा प्रदत्ता, या च ऊर्जा प्रदत्ता, तस्यैव परिणाम रूपेण वयमद्य अयोध्यायां भव्य मन्दिरं साक्षात् पश्यामः। मम तु अतीव महत् सौभाग्यमासीत्। मया न केवलं तस्य जीवनं समीपतः दृष्टं, अपि तु तेन सह अस्मिन् कार्ये संलग्नत्वेन भवितुमपि मया अवसरः प्राप्तः। यदा अहं राममन्दिरे प्राणप्रतिष्ठानुष्ठाने समुपस्थितो भवम्, तदापि पुनः पुनः अशोकमहोदयस्य स्मरणं मत्कृते सर्वथा स्वाभाविकमासीत्। सखायः, अशोकमहोदयस्य विषये एतादृशीनि बहूनि तथ्यानि सन्ति येषां विषये तावती चर्चा न भवति। राममन्दिर आन्दोलनेन सहैव सह सामाजिकभेदभावस्य विषमतायाश्च विरुद्धमपि महान्तं संघर्षं साक्षात् कृतवान् आसीत्। तस्य जन्म अतीव समृद्धे परिवारे अभवत्। तस्य पिता नागरिकसेवायाम् अधिकारी आसीत्। तस्य भ्रातरः भगिन्यश्च अपि अधिकांश सदस्याः उच्चेषु पदेषु कार्यं कृतवन्तः। सः स्वयमपि IIT BHU इत्यस्य स्नातकः आसीत्। किन्तु एतत् सर्वं सन्तमपि तेन समाजस्य, संस्कृतेश्च कृते स्वजीवनं समर्पितम्। एष एव महापुरुषाणां परिचयः भवति। अद्य तस्य जन्मशताब्द्याः अवसरे तस्य कोटिशः प्रशंसकानां पक्षतः अहं तस्य नमनं करोमि। मम पक्षतः तस्मै भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समर्पयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, वयमस्य वर्षस्य आरम्भं स्वाभिमानस्य एकेन महापर्वणा कृतवन्तः। एतत् पर्व आसीत् सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इति। अद्यारभ्य 1000 पूर्वं 26th वर्षे मोहम्मद गजनी इत्यनेन प्रथमवारं सोमनाथ मन्दिरं विध्वंसितमासीत्। परं ये जनाः सोमनाथं भित्वा भारतस्य परिचयं विलोपयितुमागताः आसन्, अद्य तेषां किमपि अस्तित्वमपि नास्ति। तथा च सोमनाथ मन्दिरं पूर्णभव्यतया सह विशाल समुद्रस्य तटे भारताय अमरतायाः आशीर्वादं यच्छति। अत एव अस्माभिः पूर्णगर्वेण अस्मिन् वर्षे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व आचरितम्। सखायः, एतां चर्चाम् अहमद्य मन् की बात् इत्यस्मिन् पुनः किमर्थं करोमि? अस्यापि एकं विशिष्टं कारणमस्ति। 26th ख्रीष्टाब्दे यदा गजनी द्वारा सोमनाथस्य विध्वंसः कृत आसीत्, तस्मिन्नेव वर्षे गुजरातस्यैव मोढेरा ग्रामे प्रसिद्धे सूर्यमन्दिरेऽपि आक्रमणम् अभवत्। तत् खण्डितं कृतमासीत्। अर्थात् मोढेरा मन्दिर विध्वंसस्यापि अस्मिन् वर्षे 1000 सञ्जातानि, यद्यपि तस्मिन् काले एतस्य मन्दिरस्य निर्माणस्य केवलमेकमेव वर्षमभवत्। 25th वर्षे अस्य मन्दिरस्य निर्माणं राज्ञा भीमदेवेन कारितमासीत्। सखायः, भवन्तः तस्य कालखण्डस्य विषये चिन्तयन्तु। यदा एतावत् महत् आक्रमणम् अभवत्, सोमनाथ मन्दिरमिव आस्थायाः एतावत् महत् केन्द्रं खण्डितं कृतं स्यात्। अनेकेषु च स्थानेष्वपि आक्रमणानि जातानि स्युः। तदा कस्यचिदपि समाजस्य, शासनस्य वा मनोबलं भङ्क्तुं शक्यते स्म। परन्तु राजा भीमदेव प्रथमः न केवलं गजनीत्यातङ्किणं सम्मुखीकृतवान्, अपि तु कस्मिंश्चिदेव काले मोढेरा सूर्यमन्दिरस्य पुनर्निर्माणमपि कारितवान्। अस्याह एव प्राण शक्तेह कारणात् सोमनाथ मंदिरस्यापि वारं वारं विध्वंसे सत्यपि पुनर्निर्माणं भवति स्म। सखायः

0: ये आ
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

गदर एक प्रेम कथा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था उदित नारायण ने। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में लीजिए सुनिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों फिल्म का ये गीत। समीर के बोल हैं, संगीत तनु मलिक का है।

अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। इस गीत को गाया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए एसपी बालसुब्रमण्यम की आवाज में साजन फिल्म का ये गीत।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाजों में प्यासा सावन फिल्म का ये गीत। इस फिल्म के लिए संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। अब हमारे नन्हे श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम बाल सभा।

0: नमस्कार बाल श्रोताओं, कार्यक्रम बाल सभा में आप सभी नन्हे मुन्हे प्यारे प्यारे नटखट से हमारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दीदी ज्योति। और दोस्तों, हर हफ्ते की तरह आज भी हमारी बाल सभा सज चुकी है, लेकिन आज की सभा बहुत खास है। क्यों खास है? जी हाँ, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम है फोन इन विशेष, जिसमें हम अपने नन्हे श्रोताओं की बातें, कविताएं, कहानी, किस्से या मज़ेदार चुटकुले सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमें कुछ सुनाना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो उठाइए फ़ोन, मिलाइए हमारे स्टूडियो का नंबर जो है 01892224391। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 01892224391। अरे वाह, नंबर बताते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी है। चलिए लेते हैं आज के हमारे पहले बाल श्रोता को फ़ोन लाइन पर।
1: हेलो।
0: हेलो, नमस्कार।
1: राधे राधे।
0: राधे राधे जी, नाम बताइए।
1: वंश।
0: वंश, वंश कैसे हो?
1: ठीक हूँ।
0: ठीक है, पहचान ली अपनी दीदी को आज आपने?
1: हाँ जी।
0: अच्छा ठीक है, वंश कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ज्वाली।
0: ज्वाली से, ठीक है। वंश कौन सी कक्षा में पढ़ाई करते हैं?
1: थर्ड।
0: थर्ड कक्षा में, तीसरी कक्षा में आप पढ़ते हैं। और वंश को क्या क्या अच्छा लगता है? घूमना अच्छा लगता है, चलिए बताइए पहले तो।
1: खेलना और पढ़ना।
0: खेलना और पढ़ना, दीदी तो पूछ रही है घूमना।
1: जी।
0: घूमना नहीं अच्छा लगता?
1: लगता है।
0: लगता है, पता है दीदी ने आज घूमने की बात क्यों छेड़ी है?
1: क्यों?
0: क्योंकि आज है विश्व पर्यटन दिवस, पता था आपको?
1: नहीं।
0: नहीं पता था ना, पर अब दीदी ने बता दिया है तो अब आप इस बारे में जान गए हैं, है ना?
1: हाँ जी।
0: तो बताइए कहाँ कहाँ घूमे हैं वंश?
1: रहन।
0: जी
1: रहन।
0: हम समझ ही नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हिमाचल में घूमे हैं या बाहर भी कहीं गए हैं कभी घूमने?
1: नहीं,
0: हिमाचल में घूमे हैं ना।
1: बगलामुखी।
0: जी जी, बगलामुखी मंदिर आप गए हैं, ठीक है। तो वंश कैसा लगता है घूमकर?
1: अच्छा।
0: बहुत अच्छा लगता है ना।

0: तो आज वंश हमें क्या सुनाएंगे, जल्दी से बताइए।
1: कविता।
0: कविता सुनाओगे? चलो ठीक है, हम सुनेंगे।
1: हर पल चलती जाती जीती, सम का राग सुनाती जीती, करी धूप हो या वर्षा, दाना चुगकर लाती जीती, सचमुच कैसी कलाकार है चींटी, घर को खूब सजाती चींटी, छोटे तन पर बड़े इरादे नहीं घबराती चींटी। थैंक यू।
0: थैंक यू जी, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। और चींटी सचमुच बहुत परिश्रम करती है ना, बहुत मेहनती होती है चींटी, मानते हैं इस बात को?
1: जी
0: ठीक है वंश, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण
1: प्रवीण दीदी का है।
0: दीदी तो आज घूमने चले गए। हाँ
1: आप
0: जी,
1: नहीं है।
0: मैं नहीं गई ना, क्योंकि मुझे लगा कि आपसे फिर बात कौन करेगा। जब आप कॉल्स करेंगे तो आपसे बात करने के लिए भी तो दीदी चाहिए ना यहाँ, तो हम यहाँ आ गए। ठीक है वंश, बाय बाय।
1: बाय।
0: और भी हमारे प्यारे श्रोता यदि हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 01-892-224-391। और जैसे ही नंबर हम बता रहे हैं, एक और कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हेलो जी,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: माय नेम इज नव्या पठानिया।
0: नव्या जी,
1: जी,
0: नव्या कहाँ से बात कर रहे हो
1: हिमाचल में कांगड़ा से,
0: जी? और कांगड़ा में कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रात।
0: रात से? ठीक
1: जी
0: है। और नव्या पढ़ाई करती है
1: जी फिफ्थ
0: कौन सी कक्षा में?
1: क्लास।
0: फिफ्थ क्लास में?
1: जी
0: अच्छा, हमें तो लगा अभी नव्या छोटी है।
1: नहीं, मैं एक फिफ्थ क्लास में हूँ।
0: तो अभी छोटे ही हो, है ना, हमारी सोच से थोड़े से बड़े, फिफ्थ में। ठीक है, और कौन सा विषय आपको बहुत पसंद है नव्या?
1: इंग्लिश।
0: इंग्लिश? अच्छा, इंग्लिश में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको?
1: मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है।
0: अच्छा, मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या पढ़ना अच्छा लगता है? पोयम? हाँ जी,
1: इंग्लिश
0: इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, और आज हमें क्या सुनाएंगे आप?
1: एक कविता हिंदी में आती है।
0: जी बिल्कुल, हिंदी में भी आनी चाहिए कविता, बिल्कुल सुनाइए।
1: मेरे को एक पेड़ वाली पे आती है कहानी,
0: अच्छा,
1: कविता।
0: तो आप मुझे बताइए कि कविता सुनाएंगे या कहानी?
1: कविता।
0: ठीक है, शुरू हो जाइए।
1: पेड़ और पौधे मित्र हमारे सदा करते हैं उपकार, ये ना हो तो धरती का पल भर में होगा संहार। पेड़ प्रदूषण से हैं बचाते, पेड़ ही दवाइयाँ देते हैं, वर्षा को आकर्षित करते पानी ये बरसाते हैं। धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत, आप हमारे साथ जुड़े नव्या जी। थैंक
1: थैंक यू।
0: यू जी, वेलकम जी। कार्यक्रम बाल सभा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, और नन्हे श्रोता बिल्कुल लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
1: हेलो,
0: हेलो जी, कार्यक्रम बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत आपका। अच्छा जी, नाम बता दीजिए।
1: यशिका।
0: हाँ जी,
1: यशिका
0: यशिका। ठीक है, यशिका कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मंडी
0: ज्वाली से?
1: के
0: एक बार फिर से बताइए जी। आपने अपना रेडियो सेट्स ऑन रखा है ना, उससे थोड़ा सा दूर आ जाइए या उसकी
1: ठीक
0: आवाज़ कम कर दीजिए।
1: है, ठीक
0: ठीक है,
1: है।
0: यशिका जी ना?
1: हाँ जी,
0: ठीक है यशिका, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? जी
1: भजन
0: भजन तो आपका हम सुनेंगे, पर आपने अपने रेडियो सेट्स की आवाज कम नहीं की है। जी नहीं तो आपकी आवाज हमें अच्छे से नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, अब आप हमें सुनाइए।
1: ठीक है, राम आएंगे तो हम आंगन सजाएंगे, दीपों से दिवाली

0: यू।
1: वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाया
0: हेलो,
1: आपने। हेलो
0: राधे राधे।
1: राधे राधे जी, नाम बता दीजिए। यशिका के
0: चाहत,
1: साथ कौन है?
0: चाहत।
1: चाहत। चाहत,
0: जी
1: आप सिस्टर्स हैं?
0: हाँ जी,
1: ठीक है, तो चाहत कौन सी कक्षा में पढ़ाई करती हैं?
0: चौथी।
1: ठीक है, और यशिका से तो हम पूछना भूल गए, यशिका कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं?
0: एलकेजी।
1: LKG में। ठीक है, चलिए अब चाहत से पूछ लेते हैं। चाहत, क्या सुनाएंगे आप आज हमें?
0: कविता।
1: कविता सुनाएंगे? ठीक है, अच्छे से सुनाना।
0: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था अका, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है सदा। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है सदा। फिर मेरा घर मना सूखे तिनको से त्या, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है सदा। आखिर जब मैं उड़ी दूर तक पंख फैलास, तब मुझे समझ आ गया कि बहुत बड़ा है यह संसार।
1: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आप थके तो नहीं?
0: हाँ जी,
1: चाहत थकी तो नहीं?
0: नहीं
1: आप इतना तेज तेज बोल रहे थे ना, तो मुझे लगा कहीं थक तो नहीं गए आप। चाहत, बहुत अच्छी कविता आपने भी सुनाई, यशिका ने भी सुनाई, आप दोनों ने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक
0: यू।
1: यू जी। जी, कार्यक्रम बाल सभा में नन्हे श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब नन्हे श्रोता हमसे बात करते हैं, अपनी बातें, अपनी कहानियाँ, कविताएं हमें सुनाते हैं। चलिए एक और श्रोता से जुड़ते हैं। हेलो
0: हेलो, नमस्ते
1: जी।
0: दीदी जी,
1: नमस्ते जी।
0: कैसे हो? ठीक हो?
1: हाँ जी, बिल्कुल ठीक हैं।
0: हाँ जी, पर हम नहीं है ठीक।
1: ऐसा क्यों है भाई? आपको तो ठीक होना चाहिए, आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हैं।
0: हम गुस्सा है आपसे, पता
1: अरे दीदी को डर लग रहा है।
0: क्यों? प्रवीण दीदी आज भी नहीं आए मेरे से, बड़े दिल करना था उनसे बात करने का, मैंने सोचा आज भी वो ही आएंगे। हाँ
1: अच्छा जी, तो साक्षी बात कर रही हैं नूरपुर से, है ना?
0: जी, आप
1: जी बिल्कुल।
0: कैसे मेरे को पहचान गए कि साक्षी कर रही हूँ बात मैं नूरपुर से? हाँ
1: देखा, गुस्सा आपका ठंडा हुआ ना अब,
0: जी, ठंडा तो हो गया पर।
1: क्योंकि ज्योति दीदी को पता है कि साक्षी हमारी नियमित श्रोता हैं।
0: हाँ जी,
1: और साक्षी, बताइए आज ना आप हमें क्या सुनाएंगे?
0: आज आपको मैं भजन सुनाती हूँ।
1: ठीक है, बिल्कुल जोश के साथ सुनाइएगा। हाँ

0: वाह साक्षी जी, बहुत मज़ा आया हमें आपका ये भजन सुनकर, और बहुत सुंदर सुंदर भजन आप हमें सुनाती हैं। यूं ही जुड़े रहें आकाशवाणी धर्मशाला के साथ।
1: परवीन दीदी को बोलना अगली बार आप भी आना, मेरा बड़ा मन कर रहा है उनसे बात करने का।
0: जी ठीक है, आपका ये संदेश हम भी पहुंचा देंगे और वह भी आपको सुन रही होंगी, और आप नाराज़ हैं ना, तो चलिए एक मीठा सा गीत अब कार्यक्रम में हम शामिल कर लेते हैं, ठीक है?
1: हाँ जी कोई बात नहीं, नाराज की इतनी देर नहीं रहनी चाहिए। आप भी दीदी हो पर मेरा दिल उनसे बात करने का कर रहा, पर क्या करें आज भी नहीं वो आए हैं।
0: ठीक है साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।

0: कार्यक्रम बाल सभा में बहुत बहुत स्वागत। हेलो हेलो जी,
1: नमस्ते
0: जी, नाम बता दीजिए जी।
1: अपूर्वा।
0: अपूर्वा कहाँ से बात कर रही हैं अपूर्वा?
1: चंदू बड़गड़ा
0: जी,
1: चंदू बड़गड़ा।
0: ठीक है, और पढ़ाई करती हैं
1: जी?
0: कौन सी कक्षा में?
1: फर्स्ट।
0: फर्स्ट में, ठीक है। तो क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
1: इंग्लिश।
0: इंग्लिश, अच्छा जी। तो इंग्लिश में अब तक क्या क्या पढ़ाई की है?
1: संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी।
0: अच्छा जी, ठीक है। तो कौन सा डे आपको अच्छा लगता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कौन सा?
1: संडे।
0: संडे। संडे ही क्यों? संडे आपको क्यों अच्छा लगता है अपूर्वा जी, बताइए। अच्छा जी, वाह, मजा आ गया आपका ये जवाब सुनकर। देखिए कितनी बड़ी हंसी हमारे चेहरे पर आई है। और अपूर्वा, आज आप हमें क्या सुनाएंगी?
1: पोएम।
0: पोएम सुनाएंगे, ठीक है, सुनाइए।
1: चुंचू करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई, चिड़िया दाल पकाएगी, बैठ मजे से खाएगी।
0: वाह बहुत बढ़िया, और कुछ सुनाएंगी?
1: मेरी बिल्ली काली थी, जल में भीगी हो गई थी, गीली होकर लगी छींकने, जोर जोर से लगी छींकने, मैंने बोला कुछ तो सीख, मुंह पर हाथ रख कर छींक।
0: गुड, बहुत अच्छे अपूर्वा ने बहुत अच्छी पोएम्स हमें सुनाई हैं। अपूर्वा अपने लिए जी,
1: मैं रोज रेडियो सुनती हूँ।
0: रोज रेडियो सुनते हैं आप? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो स्कूल जब जाते हैं तब?
1: स्कूल से आके 3 बजे।
0: अच्छा, स्कूल से आकर आप रेडियो सुनते हैं। इतना प्यार हमारे इस नन्हे श्रोता का हमारे साथ है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं अपूर्वा जी। ठीक है, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जी, ऐसे ही और भी नन्हे श्रोता हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर मिलाकर 01892224391। और जब तक आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम ये विज्ञापन आप तक पहुंचाते हैं।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: Come on boys, let's go practice.
5: अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया।
4: ये तो बैंक को कंप्लेन करना।
5: बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं।
6: तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो।
7: रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम बाल सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्ते कौन बात कर रहे हैं?
8: मेरा नाम प्रणव है।
0: प्रणव, प्रणव कहाँ से बात कर रहे हैं?
8: मैं योल से बात कर रहा हूँ।
0: योल से, ठीक है। प्रणव पढ़ाई करते हैं?
8: जी, कौन सी पढ़ाई करता हूँ।
0: जी, कौन सी कक्षा में?
8: मैं छठी कक्षा में हूँ।
0: जी,
8: मैं क्लास सिक्स में पढ़ता हूँ।
0: अच्छा जी, आप सिक्स्थ क्लास छठी कक्षा में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज प्रणव हमें क्या सुनाने वाले हैं?
8: मैं आज आपको एक कविता सुनाने वाला हूँ।
0: ठीक है प्रणव, जल्दी से सुनाइए।
8: उस कविता का नाम वीर बालक है।
0: जी, बहुत बढ़िया, सुनाइए।
8: हम प्रभात की नई किरण है, हम दिन के आलोक नवल, हम नवीन भारत के सैनिक, धीर वीर गंभीर अचल, हम प्रहरी ऊंचे हिमाद्री के, सुर भी स्वर्ग की लेते हैं, हम शांति दूत धरनी के छाप सभी को देते हैं, वीर पशु माँ के आंखों के हम नवीन उजियाले हैं, गंगा यमुना हिंद महासागर के हम रखवाले हैं, हम हैं शिवा प्रताप के वंशज, रोटियां भले घास की खाएं, मगर किसी जुल्मी के आगे मस्तक नहीं झुकाए। धन्यवाद।
0: बहुत ही बढ़िया आपने ये कविता सुनाई है। और प्रणव, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें कॉल किया।
8: अच्छा, मेरी बहन भी बात करना चाहती थी।
0: अच्छा जी, बिल्कुल, करवाइए बात उनसे जल्दी।
9: हेलो।
0: हेलो जी,
9: क्या कर रहे
0: हो? आपसे बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही हैं? नाम बता दीजिए।
9: रिया
0: जी, भूल गए। हेलो।
9: हेलो,
0: नाम बता दीजिए।
9: दिया।
0: लगता है ये बहुत ही नन्हे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, ठीक है, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद।
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: हेलो, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
10: हेलो
0: जी, नमस्कार।
10: नमस्कार,
0: कौन बात कर रहे हैं?
10: शिवन्या।
0: शिवन्या जी, कहाँ से?
10: समलौटी से।
0: अच्छा जी, पढ़ाई करती हैं?
10: जी।
0: कौन सी कक्षा में?
10: तीसरी कक्षा में।
0: अच्छा जी, तो कौन सा विषय आपको बहुत पसंद है?
10: हिंदी।
0: हिंदी, ठीक है। और घूमने जाती हैं कहीं?
10: जी।
0: पता है ना, आज हम विश्व पर्यटन दिवस मना रहे हैं।
10: जी।
0: ठीक है, तो कहाँ कहाँ घूमे हैं आज तक?
10: आज तक धर्मशाला, सौरभ वन विहार और टेंपल्स।
0: टेंपल्स, अच्छा जी। तो सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी? बेस्ट ट्रिप कौन सा था?
10: बार मेमोरियल।
0: अच्छा जी, अच्छा लगा वहाँ आकर?
10: जी।
0: ठीक है, हमें भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी से बताइए, क्या सुनाएंगी आज आप हमें?
10: कविता।
0: जी, जल्दी से सुनाइए।
10: भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुद्र, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे पवित्र है जग सारा, अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझमें रतन जवाहर न्यारे, राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी, हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधि तेरा सुयश बढ़ाएं। थैंक यू
0: जी, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। इतने खूबसूरत रंग भरे हैं आज की बाल सभा में आप सभी नन्हे श्रोताओं ने हमें कॉल करकर, बहुत ही मज़ा आया आप सब बच्चों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और जिन बच्चों का फ़ोन आज नहीं लग पाया है या जिनसे हम आज बात नहीं कर पाए हैं, वे बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी स्टेशन पर नई बातों के साथ महीने के अंतिम रविवार को। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अनुमति, बाय बाय। चलते चलते आपको बता दें कि कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया सुरेंद्र कपूर ने। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दीदी ज्योति को कार्यक्रम बाल सभा को यहीं पर संपन्न करने की। प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।
11: चल मेरे घोड़े।

0: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। दोपहर के 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और उसका नतीजा सामने है।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकाले। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
2: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश के लाखों युवाओं ने हाल ही में नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इसकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं।
2: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत भविष्य में युद्ध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता विकसित कर रहा है ताकि आत्मनिर्भर और भविष्योन्मुखी रक्षा प्रणाली का निर्माण किया जा सके। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का प्रयास भी कर रहा है। जापान एशियाई खेलों में आज अंकुश ने मुक्केबाजी के 80 किलो वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष रिकर्व टीम और महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। वहीं पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल

0: 4 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सन, हमने बता दिया है आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफ़र की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफ़र का साथी हमारे मनोभावों को समझता है, तब जगह चाहे कोई भी हो सफ़र सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नज़ारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत कुदरत के नज़ारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नज़ारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारें नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूँ मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने। और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियाँ, ये फिजाएँ बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरे गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें। बोरीवली, मुंबई, सागर किनारे, दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं। विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली, मुंबई, समंदर किनारे, सुरीला सफ़र में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही, तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी, घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब ज़रा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा, उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यहीं लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई, आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले, तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं, और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

0: ये फिजाए दुला रही है तुम्हें।
1: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफ़र, और आज सुरीला सफ़र में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नज़ारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्ज़रलैंड में की, जिसके बाद वहाँ भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफ़ी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर? ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहाँ जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहाँ पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था, चलो सजना जहाँ तक घटा चले। तो कहाँ तक घटा है और कहाँ तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहाँ तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहनें यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूँ। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटी को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमीन आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं लेकिन

दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज़्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ, जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहाँ पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह, और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे ज़बरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहाँ यश चोपड़ा की फिल्मों की है, लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप ज़रा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुँचाते जा रहे हैं। अब हमें ज़रा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज़ किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज़्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियाँ लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतज़ार करते हुए जंगल का नज़ारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएँ मिट जाती हैं और वहाँ पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूँगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊँ। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सब परिवार हमने, शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आँखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया, हमारी आँखों के सामने वो देवदार और चिनार के कतार नज़र आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज़?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा ज़रा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत ज़िला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे ज़िले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियाँ, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफ़र हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहाँ सफ़र केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियाँ, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफ़र हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज़, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाज़ों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य हैं, यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे, भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सकें या आपसे और कोई सवाल पूछ सकें, तो बस आज का सफ़र बस इतना ही। कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं। पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खान पान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है। और इसीलिए पर्यटन यानी घूमना फिरना हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम जिस खूबसूरत दुनिया को देखने निकलते हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

घूमना फिरना जितना आनंद देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी हमसे मांगता है। विश्व में जिस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं वहाँ कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है।

विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में

0: देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभिष सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को

0: समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथोन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
2: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता 2 गुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
3: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इनएक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
5: इनएक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो पीएचसीज हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, एआई के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, आईसीयू में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए, इनएक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
4: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमो

0: डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार के।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था OP नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक
2: अरे ओरे है।
1: संगीत के साधक
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3 बजे हैं, ये समय है आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचारों का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंक रोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों के कारण देश लंबे समय से दर्द झेल रहा था और सर्जिकल स्ट्राइक इसका निर्णायक जवाब था।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: देश में चल रही जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने जनगणना को सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से देश में चल रहे नशा मुक्त युवा अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच व ध्यान शिविर जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शिमला में फागली वार्ड के रामनगर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के सामान्य नागरिकों की असाधारण उपलब्धियों, नवाचारों, प्रयासों और प्रेरक कार्यों को मंच मिलता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे अनगिनत लोगों को पहचान और सम्मान दिया है जिनकी कहानियां समाज के लिए प्रेरणा बन रही हैं। बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कल 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। ऐसे में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार आज बैंक खुले हैं और इनमें सामान्य कामकाज चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों व एटीएम में नकदी के लिए करेंसी चेस्टों को पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। हड़ताल के दौरान कई बैंकों ने एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिन लोगों को जोड़ने, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास में पर्यटन के महत्व को रेखांकित करता है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर प्रदेश में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की थीम पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। कृषि व किसान कल्याण विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर चर्चा के लिए ये सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस दौरान राज्यों के कृषि मंत्रियों को अपनी प्राथमिकताओं और रबी मौसम की तैयारियों के लिए सुझाव देने का अवसर मिलेगा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। लाहौल स्पीति के रंगरिंग गांव के मुनस्लिंग स्कूल में सेवा संकल्प अभियान के तहत मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य रवि ठाकुर ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने चित्रकला, भाषण और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2047 के विकसित भारत की अपनी कल्पना प्रस्तुत की और स्वच्छ, शिक्षित, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत को लेकर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सामयिक चर्चा। विषय है विश्व पर्यटन दिवस 2026, भारत में पर्यटन का विकास और डिजिटल बदलाव। वाचक स्वर है राकेश शर्मा।
1: पर्यटन के लिए अवसर पैदा करता है, आजीविका में मदद करता है और आर्थिक विकास में अहम योगदान देता है। दुनिया भर में जैसे जैसे ये क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों के यात्रा करने और जगहों को अनुभव करने का तरीका बदल रहा है। इस

0: को प्रदर्शित करते हुए राष्ट्रव्यापी आयोजन करेगा। इन पहलों का उद्देश्य भारत के पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना तथा सतत और समावेशी पर्यटन विकास के अवसरों को बढ़ाना है। इनमें नेशनल डिजिटल टूरिज्म स्टैक एक खुली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पहल है और पर्यटन सेवाओं और पेशकशों को अधिक खोज योग्य, सुलभ और विश्वसनीय बनाने पर केंद्रित है। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा से कहीं ज्यादा है। ये लोगों को भारत की विविध संस्कृतियों, विरासत और समुदाय से जोड़ता है और साथ ही कारोबार और आजीविका के अवसर भी पैदा करता है। ये आर्थिक गतिविधियों, रोजगार और विदेशी मुद्रा की कमाई में भी योगदान देता है, जिससे भारत की विकास यात्रा में पर्यटन की भूमिका और मजबूत होती है। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र ने काफी तेजी पकड़ी है। भारत की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट के जरिए मापा जाता है। भारत में पर्यटकों की आवाजाही में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। इस क्षेत्र का विदेशी मुद्रा में योगदान भी बढ़ा है। हमारे यात्रा करने का तरीका बदल रहा है। कभी यात्रा के लिए सिर्फ एक मैप और गाइडबुक ही काफी होती थी। आज स्मार्टफोन हमें किसी जगह को खोजने, उसकी योजना बनाने और उसका अनुभव करने में मदद करता है। भविष्य में हो सकता है कि यात्री बस अपनी मनचाही यात्रा के बारे में बताए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाकी चीजों की योजना बनाने में मदद करें। जैसे जैसे यात्रियों की उम्मीदें बदल रही हैं, पर्यटन को भी बदलना होगा। सुविधा, पर्सनलाइजेशन और आसान डिजिटल अनुभव यात्रा का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारत यात्रा को आसान बनाकर, डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म को मजबूत करके और तकनीक व AI का इस्तेमाल करके इस बदलाव को अपना रहा है, ताकि यात्री देश को नए तरीके से खोज सकें और इसका अनुभव कर सकें। ये भारत की संस्कृति, विरासत, एडवेंचर, खान पान, स्वास्थ्य, कला और शिल्प और ग्रामीण आकर्षणों को वर्चुअल अनुभव देता है। इसका AI संचालित टूल रियल टाइम मौसम की जानकारी, शहर घूमने और जरूरी यात्रा सेवाओं जैसी सुविधाओं के जरिए यात्रियों के अनुभव को पर्सनलाइज करता है। ये प्लेटफॉर्म यात्रियों को फ्लाइट, होटल, कैब और बस बुक करने के साथ साथ ASI स्मारकों के टिकट के लिए ऑनलाइन ट्रेवल एजेंट और पर्यटन से जुड़े दूसरे लोगों से भी जोड़ता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात को भी बदल रहे हैं कि पर्यटन सेवाओं का इस्तेमाल और प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। साझेदारी के जरिए भारत का डिजिटल पर्यटन का सफर भी आगे बढ़ रहा है। जून 2026 में पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के साथ एक MOU किया। इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा आधारित जानकारी और क्षमता निर्माण के जरिए भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार को मजबूत करना है। ये सहयोग यात्राओं के वैश्विक रुझान, यात्रियों के व्यवहार और डिजिटल जुड़ाव के पैटर्न से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके प्रमाण आधारित पर्यटन को प्रोत्साहन देने में मदद करेगा। तकनीक पर्यटन से जुड़े उद्यमों के लिए भी नए मौके बना रही है। भारत के पर्यटन की ताकत इसकी विविधता में है। तीर्थयात्रा और विरासत से लेकर वेलनेस, वन्यजीव, ग्रामीण अनुभव और बिजनेस इवेंट्स तक हर क्षेत्र यात्रा करने का एक अलग कारण देता है। ये विविधता देश भर में पर्यटन स्थलों, स्थानीय समुदायों और पर्यटन व्यवसायों के लिए भी अवसर पैदा करती है। इसके साथ ही ये सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामूहिक चर्चा अभी आप सुन रहे थे। विषय था विश्व पर्यटन दिवस 2026, भारत में पर्यटन का विकास और डिजिटल बदलाव। वाचक स्वर थे राकेश शर्मा के।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 MHz पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चले आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा, भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन। भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती, देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचे तुम, सोनू और मोनू। दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाज़ों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम, पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबिदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा ज़िला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
2: अब क्या है?
4: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुते हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो आपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकारन सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
2: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे आपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
2: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होते बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ा रही है।
2: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो

0: बकबक ना कर, मुझे इतना टेम कहां जो गप्पे मारूं, चलती हूं, राम राम।
1: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी हूं मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
2: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
1: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
2: इसमें तुम्हारा क्या कसूर, भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
1: उसी के चक्कर में नीमा बेबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
2: नीमा बेबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
1: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
2: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
1: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
2: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
1: बैठिए कमला बहन, चाय बना कर लाती हूँ।
2: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
3: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
2: नमस्ते।
3: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
2: ये बिहारी बाबू का घर है।
3: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
2: आपको किसकी शादी करनी है?
3: अपनी?
2: हा?
3: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
2: ठीक है ठीक है।
3: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
2: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख, जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
3: शगुन नहीं, बांकेलाल, बांकेलाल। मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
2: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं, तब तो बात बन गई।
3: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
2: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
3: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
2: क्या आपकी माँ बीमार है?
3: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है। हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
1: हाँ सो तो है, बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
3: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
2: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
3: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला।

0: पर माँ कहती है शादी कर ले।
1: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
0: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैला दूंगा। हाँ, बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
1: अरे, अरे उसकी चिंता ना करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
0: अरे कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
1: ललिता एक फोटो तो दे दो।
0: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
1: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
2: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
3: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
2: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
3: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
4: प्यारी चाय दे जा।
3: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
3: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
5: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
2: प्यारी तू चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं, जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं।
3: अच्छा लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
2: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनीमिक हूँ।
3: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनीमिक नहीं है। इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
2: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको। इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
3: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
2: शायद अब वो समय नहीं है।
3: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
2: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
3: इतने रुपए थे, भाई अभी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था।
2: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
3: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
2: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
3: देखिए अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
2: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
5: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
3: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
2: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं। सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
3: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौत के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौत के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौत के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
2: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूँ फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
3: बहुत बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
2: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
3: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
5: बीवी जी, हाँ, इसी बात पर ले आऊं गर्मा गर्म चाय।
3: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्पी पुष्पी कर रहे हैं।
1: हाँ, इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ? सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार? घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बंध चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों? क्यों नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ, हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई?
2: कौन जा गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमयी। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: तुम सही होगी तो मैं ही आ जाता
0: हूँ। ना ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
2: सीमा। अच्छा, अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
2: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब क्या कर रही हो?
0: अब वेणी में फूल गूंथ रही हूँ।
2: फूल? ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
2: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह!
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण क्षण मेरी
1: मैं रति हो गई हूँ।
2: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर मैं तो बह रहा हूँ।
1: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
2: अरे सीमा की कोई बात नहीं रहा, मैं हरगिज रुक नहीं सकता।
1: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
2: तुम क्या बोलने लगे हैं? देखो अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
1: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं।
2: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तब तो तुम बहुत ही सुंदर होगे। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहां क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट पसंद आया, और ये साड़ी। अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूँ, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूँ? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
3: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं।
2: बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
2: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
0: मैं चलूँ तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है, फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो। क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा? उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा? वो सामने लेटर बॉक्स में डाल दो। फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
2: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
3: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। यह हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
5: एक विलक्षण गायक।
6: अरे ओरे हे।
5: संगीत के साधक।
6: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
5: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
6: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
5: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
7: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
5: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
8: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजने को हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
4: ये है विविध भारती।
9: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है, दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर, दास्तान बेमिसाल संगीत की,
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी, बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
4: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
4: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूँ कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
4: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे हैं। गाना कौन सा था?
4: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे
0: जी, जी।
4: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे, गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून वून आया हुआ उनको, उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
0: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
4: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
0: जी।
4: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा
0: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
4: सारी उन्होंने वहां निकाली।
0: गजब की बात है ये तो।
4: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया। नाउ ही इनटू म्यूजिक।
0: गजब की बात है ये।
4: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
0: हाँ,
4: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
0: हाँ,
4: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद 1-1.5 घंटा गा रहे थे वो।
0: बाप रे,
4: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की।
0: वाह,
4: कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
0: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना यहाँ सुन लेते
4: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
0: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के साथ।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भादों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन जी का चलते, वहाँ चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा, पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग दी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे होते, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, ही वाज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: इन तमाम चीजों
1: क्या
0: का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना, दिल ढूंढता है फिर फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है। अब ये सैड है,

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में।
1: जी, एक ही गाने
0: हमको
1: के।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है,
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है।
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे, और
1: बिल्कुल।
0: हमने साथ में बहुत काम किया उनके साथ।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और इनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी।
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल,
0: उनसे शुरू हुई, उन पे खत्म हो गई,
1: क्या
0: ऐसा
1: बात है
0: हुआ।
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते।
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था यश। तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहाँ, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग
1: खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा। तो मदन साहब यहाँ लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब।
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब किसको दूंगा।
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद है।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज सोनिक
1: जी,
0: जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियाँ, बोले गालियाँ इतनी गालियाँ दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड ही इज अब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो? जैसे
1: क्या दौर था, क्या लोग थे।
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजरू साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी जी
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने बुला लिया उनको और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे।
0: ये उनके अरेंजर थे,
1: अच्छा,
0: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव। भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया, 10:15 बजे
1: जी।
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: वो छोटे कद के थे।
0: पहली दफा देखा उनको
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी हैं ऐसे अंदर चले गए।
1: जी।
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हैं हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए हैं, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, कैसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप।
1: अरे
0: अब ये मैं हम सोच रही है नए बच्चे हैं कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ और हम सब चुप बैठे हो, म्यूजिक रेडी है? कैसे बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे।
1: आई?
0: हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहे शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं कहा यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली, म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के अब सब थालिया में अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: ये
0: हुआ।
1: प्यार था, ये
0: म्यूजिक शुरू हुआ, आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है,
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब बजाएंगे,
0: तब हम बजाएंगे,
1: गजब गजब।
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी। उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए।
1: अच्छा,
0: याद नहीं।
1: SD बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें माटी है।
0: बर्मन साहब का तो बजा ही रहे थे क्योंकि सेम ग्रुप था
1: जी जी
0: पंचम जी का। इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी,
1: हाँ
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके।
0: तो हम लोग बजा रहे थे

0: रेसल होगी रेसल होगी, तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया, बीच में खड़े होके, मैं वो स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मलोरी को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मलोरी को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए
1: अरे बाप रे
0: जैसा उत्तम बजा रहा है ऐसा।
1: गजब।
0: यूनुस जी मैं बैठा था सेकंड या थर्ड रो में, सेकंड डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी। दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया,
1: वाह
0: मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और
0: महान
1: अपनी धुन के
0: संगीतकार,
1: पक्के।
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती
0: और
1: है?
0: एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था,
1: जी
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा
0: हाँ क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट
1: जी
0: मेरे से ये चीज़ होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती
1: जी
0: चली गई।
1: जी
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए,
1: अच्छा
0: हाँ कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला वो तो वहाँ बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमिडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा मैं नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा,
1: हाँ
0: दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा,
1: जी
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें,
1: जी जी
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब बालो।
0: खूब भालो। मैं चला गया,
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी
0: मेरे को सबका ऑफर आया,
1: जी
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लेनी का ऑफर आया, अन्नू मेलक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर डी बर्मन का, बाद में जब बासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा, मदन जी का ऑफर आया मुझे,
1: जी जी
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी
0: मैं
1: दूसरे म्यूजिशियन का।
0: उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ उनके,
1: जी
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊँगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया, मैंने आज तक किसी की जगह नहीं ली,
1: क्या बात है।
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे
0: ऐसे
1: बाजरे में,
0: म्यूजिशियन बजाता
1: दादा
0: रहा,
1: के लिए भी बजाते
0: हाँ
1: रहे।
0: हाँ दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था, फिर
1: जी
0: वो अनिल अरुण आ गए थे, तो
1: हाँ।
0: फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सका, उनके
1: जी
0: एंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका उनके साथ।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है?
1: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
0: जी,
1: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
0: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
1: बहुत।
0: और अन्ना क्या अभी बजाया?
1: अन्ना क्या बजाया? अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
0: बताइए।
1: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेड हो गए।
0: अच्छा।
1: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उसके मुलाजिम हैं, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन हैं, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त हैं।
0: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
1: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है, आप कोई सोच भी नहीं सकते
0: जी।
1: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
0: जी,
1: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफ़ी साहब आए, रफ़ी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज़ आई, अन्ना की आवाज़ आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
0: जी,
1: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
0: अरे अरे
1: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
0: क्रॉस भी
1: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अच्छा, उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे।
0: जी,
1: क्योंकि सिस्टम ऐसा था, अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है, अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है,
0: गजब,
1: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको श्री रामचंद्र की जगह गाना है। रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
0: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरू हुआ, टेक खत्म हो गया।
0: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया, एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जयकिशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
0: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू, तीसरा इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
0: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
0: जी,
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयकिशन का बजा रहे हैं, तो ये हालत
0: लगातार भागदौड़ होती थी,
1: लगातार भाग।
0: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी, ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
0: जी।
1: तो केरसी जी, बूपी जी, मरोरी जी, और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता,
1: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
0: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
0: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे।
0: हाँ,
1: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
0: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केरसी जी
0: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
0: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
0: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
0: तो पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
0: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सारे थे, सारे बदमाश थे
0: जी जी।
1: म्यूजिशियन जो है ना
0: जी
1: एक्चुअली बदमाश होता है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि
0: आप आपकी भी थी बदमाशियां?
1: हाँ नहीं नहीं हमारी बात हमारी बदमाशी भी क्या म्यूजिक में निकलती थी।
0: अच्छा
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
0: जी,
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलैयाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
0: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं बनाए नहीं जा सकते। इलैयाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
1: जी मैंने, राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
0: जी,
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
0: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे। ऐसा मुझे एक्टर पैदा नहीं होगा।
0: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया?
1: मेरा एक पांव मद्रास में एक पांव बॉम्बे में।
0: तो वहां आप बतौर अरेंजर होते थे?
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
0: आई,
1: और कभी कभी उनकी बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
0: वाह,
1: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
0: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
0: क्या बात है, इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
1: बहुत।
0: तो कुछ यादें बताइए।
1: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
0: क्या बात है,
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
0: जी,
1: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम ए टू जेड।
0: वाह,
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोज।
0: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे, बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आर डी बर्मन, सी रामचंदर, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला। एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
0: जी,
1: वहाँ पे अरेंजर की जगह है
0: जी।
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहाँ पे।
0: बिल्कुल,
1: बट इलैयाराजा के वो किसी की जगह नहीं है।
0: इलैयाराजा का खुद करेंगे,
1: सारा काम खुद करते, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा म्यूजिक्टर है।
0: क्या बात है,
1: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूँ, जब मैं अपना काम करता हूँ मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूँ, जब सोलो पीस होते हैं बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा साहब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
0: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
1: हाँ, सुरेश वाड़कर
0: जी, आपने बजाया?
1: मैंने बजाया।
0: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी भी यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था, तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी, मैं नहीं,
0: आपने मना कर दिया।
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भाई ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते हैं, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मनोरी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किया है।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही बस मैंने दो या तीन गाने किए, उसके ज्यादा नहीं कर पाया क्योंकि मेरा टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर साहब को ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी जी,
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब,
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
1: टेलीफिल्म है।
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली,
0: मदन जी के बड़े
1: लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी है।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है।
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी,
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्ट के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट,
0: दो से ज्यादा नहीं,
1: दो से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 एक-एक बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी इतना सारा म्यूजिक होता था?
1: म्यूजिक जिंगल में ज़्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए, लेकिन एज ए रेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए?
1: हाँ, मतलब समझिए एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना, वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्म के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गज़ल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गज़ल में से एक गजल सुनी जाए फिर?
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
1: क्या होता है, यस,
0: है ना?
1: यस।
0: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए, यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कव्वाल से?
1: जो कव्वाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी।
0: जी जी,
1: हाँ 60s, 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिशियन थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, बी एन बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिशियन थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में दो गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: दो गानों का अरेंजमेंट करना, तो दो गाने सुबह दो गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए दो गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे ही मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए दो गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपया ले जाता है, कोई 70 रुपये ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट।
0: अब
1: बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल हैं।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
0: जी।
1: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता था, तो आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूँगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना, वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई,
1: और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको त्याल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना। आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछती थी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है, इसको या क्या जो भी करना है। तो मेरा वन मैन शो रहा है टिल हम आपके हैं कौन।
0: क्या बात है,
1: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
0: ये भी बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
1: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहाँ हिलता नहीं था
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने ऐसे अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये ऐसे अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है
0: जी जी
1: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे।
0: फर्स्ट म्यूजिक, सेकंड
1: म्यूजिक, मदन साहब म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे
0: जी।
1: नौशाद साहब हो गए, शंकर जयकिशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे तो अरेंजर खाली लिखता था।
0: अच्छा अच्छा
1: अरेंजर
0: अच्छा
1: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डालना, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
0: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे,
1: हाँ,
0: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
1: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
0: जी,
1: तो
0: और वो
1: अभी,
0: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका
1: हाँ,
0: चलन क्या होगा, वो
1: जैसे
0: सब
1: अभी
0: आप तय
1: मदन साहब
0: करते थे
1: क्या रा रा री री तिरी री, वो बजा दिया
0: जी।
1: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया गलती
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं, कंपोज पीसेस हैं, मैंने प्यार का उठा लीजिए आप, हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
0: जी
1: जब
0: जी
1: उत्तम जगदीश थे,
0: जी जी
1: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
0: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
1: जी
0: जिस तरह से चलती है,
1: जी
0: और वो तो वो सारा आपका तैयार किया
1: सारा मेरा बनाया हुआ है।
0: जी।
1: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा तत्ता तारा तत्ता ता, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इस टाइम।
0: हाँ वही बात है,
1: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
0: क्या बात है,
1: और बहुत लोगों ने यूज किया वो
0: वो
1: इस
0: एक
1: टाइम।
0: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है
1: बिल्कुल।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: उजाले उनकी यादों के।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को हैं। अब पहले हिंदी में समाचार व शाम 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं धर्मेंद्र मणि राजेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी। उन्होंने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है।
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया जो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के तहत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। इस अवसर पर एक जनसभा में गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
4: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 2 रजत और 1 कांस्य समेत 3 पदक जीत लिए हैं। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक जीते। महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। फ्री स्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में ताजिकिस्तान के नेक्रूज सलीमोव को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 4 में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में चीन 113 स्वर्ण समेत 190 पदक जीतकर पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज ने बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 39 ओवर में 5 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हम आपको बता दें कि इस मैच में रोहित शर्मा भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी 200वीं पारी खेलेंगे। विराट कोहली 59 रन बनाते ही सबसे तेज 15,000 एकदिवसीय रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi today stated that the surgical strike by the Indian Army on the terrorist hideouts in Pakistan demonstrated a new example of India's counter-terrorism policy to the world. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said that over the past decade, from the Balakot airstrike to Operation Sindoor, India has repeatedly sent the message that terrorist strikes will be met with a befitting response.
3: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
5: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase of this exercise is nearly complete across all states and union territories. Data of over 32 crore families has already been recorded. Prime Minister Modi noted that millions of young people across the country have recently taken a significant resolve against substance abuse and drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan.
3: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
5: On sports, the Prime Minister said he had announced a talent hunt campaign for sports from the Red Fort this time. He said it is essential to reach out to villages and towns to discover sporting talent to ensure India continues to perform well. Raksha Mantri Rajnath Singh has said

भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नवदुर्गा फिल्म से ये भक्ति रचना

0: अभी आपने सुना चित्रगुप्त व साथियों की आवाज़ों में गाया नवदुर्गा फिल्म का ये देवी भजन। भजन फिल्मों से इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति मन्ना डे की आवाज़ में लावारिस फिल्म से।
1: जिसका कोई नहीं

0: अभी आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में गाया लावारिस फिल्म का ये भक्ति रचना।
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ।
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
3: अरे मुन्ना, जरा एक ग्लास पानी देना, और हाँ, पानी को उबाल कर ही देना।
4: दादू, पानी तो साफ लग रहा है, फिर उबालना क्यों?
3: बेटा, दिखने में साफ पानी भी पीलिया, डायरिया और दस्त जैसे रोग फैला सकते हैं।
5: ध्यान दे, सुरक्षित पेयजल के लिए पानी को तेज उबाल आने के बाद 3 मिनट तक खौलाना जरूरी है।
6: उबला पानी पिए, स्वस्थ हिमाचल बनाए।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अभी आप सुन रहे थे भजन फिल्मों से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं के लिए कार्यक्रम युवा मंच। इसमें आज के दिन यानी रविवार के दिन रहता है वीकली पल्स, जिसमें हम आपको देते हैं नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल अपडेट्स।

सभी श्रोताओं को, हमारे युवा साथियों को, आपकी दोस्त वर्षा टोच का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ युवा साथियों, हम हाजिर हो गए हैं ठीक उसी समय पर लेकर आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवा मंच। और आज के दिन तो आप जानते ही हैं कि कुछ अपडेट्स लेकर हम आपके लिए आते हैं और आपको अवगत करवाते हैं नेशनल, इंटरनेशनल और लोकल जो हमारे अपडेट्स होती हैं उनसे। तो चलिए इन जानकारियों की शुरुआत तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपका मनोरंजन करवाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। चलिए एंजॉय करते हैं।

0: युवा साथियों, अभी सुना आपने ये मधुर सा गीत, और आपका फिर से हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवा मंच में। और आज हम वीकली पल्स पर तो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे विश्व पर्यटन दिवस पर। जी हाँ युवा साथियों, आज हम मना रहे हैं विश्व पर्यटन दिवस, जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस विशेष दिवस की कुछ जुड़ी मुख्य बातों पर हम आपको अवगत करवाते हैं। युवा साथियों, इस वर्ष की थीम है, यानी वर्ष 2026 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की आधिकारिक थीम डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पर्यटन को नया रूप देना रखी गई है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र के भविष्य को संवारने में आधुनिक तकनीक यानी AI और डिजिटल बदलावों की भूमिकाओं को रेखांकित करना है। और अगर इसकी शुरुआत की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UN टूरिज्म द्वारा आधिकारिक तौर पर इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी। और आपको हम ये भी बता दें कि 27 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। इसी दिन यानी 27 सितंबर 1970 को इस संगठन यानी UNWTO के विशेष कानूनों और नियमों को अपनाया गया था, जिसे वैश्विक पर्यटन के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जाता है। और इसके अगर उद्देश्यों की बात हम करें तो सबसे पहले होता है कि जागरूकता को बढ़ाना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने में पर्यटन की भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक करना होता है। और साथ ही साथ इसके रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी जोड़ा जाता है। युवा साथियों, पर्यटन अब सिर्फ घूमने फिरने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। भारत में इसके लिए विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। आज के दिन भारत के विभिन्न राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कि इनक्रेडिबल इंडिया के अनुसार तेलंगाना में इसके लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और वर्कशॉप रखी गई हैं। वहीं राजस्थान में आज के दिन पर्यटकों के लिए आमेर महल और जंतर मंतर जैसे प्रमुख संरक्षित स्मारकों व संग्रहालयों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की गई है। तो ये तो था विश्व पर्यटन दिवस के बारे में थोड़ा सा आपके साथ जानकारी साझा करना। जानकारियां हम कार्यक्रम में आगे भी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर फौरन हाजिर होते हैं आपकी सेवा में। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ 103.4 MHz पर।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना।

0: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी
2: कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा साथियों, आज बात हो रही है वीकली पल्स पर, और सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर की। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनजीए में भारत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब, यानी कि भारत का राइट ऑफ रिप्लाई की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 21वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने और आतंकवाद पर झूठे दावे करने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पाकिस्तान को कठपुतली शासन करार दिया। भारत ने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि सीमा पार से जारी आतंकवाद के गंभीर परिणाम होंगे। अमरीका चीन में 8 सूत्रीय सहमति की अगर हम बात करें तो अमरीकी दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी प्रशासन के बीच 30 विलियन के पारस्परिक टैरिफ कम करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर संवाद शुरू करने समेत 8 सूत्रीय सहमति बनी है। युवा साथियों, जानकारियां आगे भी हम साझा करेंगे, लेकिन आपका मूड फ्रेश करने के लिए लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। तुम,

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. कार्यक्रम युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। युवा मंच में आज बात होती है वीकली पल्स पर, और अब हम बात करेंगे नेशनल अपडेट्स की। तो मन की बात में पीएम मोदी ने क्या कहा उसकी बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ और आतंकवाद पर कड़ा संदेश, आज 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 138वें एपिसोड को संबोधित करने के दौरान दिया। सर्जिकल स्ट्राइक को किया उन्होंने याद। पीएम मोदी ने 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ देश की नई नीति का उदाहरण दिया है और संदेश दिया है कि हर आतंकी हरकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और अन्य प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने युवाओं से देश को नशा मुक्त बनाने का आग्रह किया, क्योंकि आज का युवा कल का देश का कर्णधार है। और देशवासियों से आगामी जनगणना प्रक्रिया के पहले चरण में सेल्फ इन्यूमरेशन, स्वयं गणना सुविधा का उपयोग करने की अपील की है।

0: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
1: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
0: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
1: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम में युवा मंच में फिर से आप सभी युवा साथियों का, हमारे श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। और आज के दिन बात होती है वीकली पल्स की। जी हाँ युवा साथियों, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो चलिए बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 की और भारत के शानदार प्रदर्शन और पदकों की। जी हाँ युवा साथियों, जापान के आइची नागोया में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 8वें और 9वें दिन भारतीय एथलीटों ने अपना जलवा बिखेरा। स्क्वैश में 2 रजत पदक, पुरुष और महिला सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह और अनाहत सिंह को मलेशियाई खिलाड़ियों से हार का सामना करना पड़ा और दोनों ने रजत पदक हासिल किए। कबड्डी में डबल गोल्ड की अगर हम बात करें तो भारत की पुरुष और महिला दोनों कबड्डी टीमों ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाजी में पदक पक्के करने की अगर हम बात करें तो राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन मुक्केबाज अंकुश पांघल 80 किलोग्राम और परवीन 65 किलोग्राम ने अपने क्वार्टर फाइनल मैच जीतकर भारत के लिए पदक पक्के कर लिए हैं।

युवा साथियों, पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में। अगर हम हिमाचल की बात करें तो एशियाई खेलों में हिमाचल की बेटियों का दबदबा जो है वो बना हुआ है। एशियन गेम्स की महिला कबड्डी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने ईरान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस भारतीय टीम की कप्तानी हिमाचल की बेटी पुष्पा ने की और इस टीम में प्रदेश की कुल 4 बेटियां शामिल थी, जिसमें सोलन की ज्योति ठाकुर भी शामिल हैं। इसके अलावा सेना के एथलीट सावन ने मैराथन में पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। और अब युवा साथियों, घड़ी की सुइयां ज़्यादा ना बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं, तो चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे कि मौसम में भारी बदलाव हो रहा है, ऐसे में आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं अगले कार्यक्रम में, फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे धर्मशाला के इंद्र से शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित वरीले होने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल।

शाम 6:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए विशेष सचिव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। बातचीत का विषय रहेगा हमारी संस्कृति में श्राद्ध का महत्व। बातचीत करने के लिए आपको डायल करना होगा हमारा दूरभाष नंबर 01892224391। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। इसमें जानकारियों के साथ साथ लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे। रात्रि 8:00 अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम देशगान रात्रि 8:30 पर सुनवाया जाएगा। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर। प्रादेशिक समाचार और रात्रि 8:15 पर हिमबीट्स कार्यक्रम भी आकाशवाणी शिमला से ही रिले किया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी दिल्ली से शाम के प्रसारण में रिले होने वाले कार्यक्रमों पर। शाम 7:00 हिंदी में समाचार, शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार, संध्या 9:00 न्यूज़ एट 9, रात्रि 10:00 एशियाई खेल व तुरंत बाद अखिल भारतीय रविवार सीरिय संगीत सभा, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार व 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार भी आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। श्रोताओं, ये थी विस्तृत रूपरेखा हमारे धर्मशाला के केंद्र से आज शाम के प्रसारण में शेष प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से बोल रहे हैं। शाम के 5:58 हुए हैं। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के इंद्रों से रिले किए जाएंगे।

0: टीकू जी 100 ग्राम पेड़े देना।
1: 250 ग्राम से नीचे नहीं मिलेगा।
0: अरे क्यों?
1: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
0: अरे भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगते।
2: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
0: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, इसमें नो मिनिमम बैलेंस, मगर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक, चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज के।
1: दे रे भाई।
3: RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं, मैक्सिमम फायदे सही।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकवादी का एक नया उदाहरण पेश किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी हमलों के कारण देश लंबे समय से दर्द झेल रहा था और सर्जिकल स्ट्राइक इसका निर्णायक जवाब था।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी।
0: देश में चल रही जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से अधिक परिवारों का डेटा दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने जनगणना को सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से देश में चल रहे नशा मुक्त युवा अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य जांच व ध्यान शिविर जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना के जवान राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा व अखंडता सुनिश्चित करने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने और भर्ती प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने का कार्य भी निरंतर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सशस्त्र सेना में योगदान देने की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है और राज्य के युवा साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। घुमारवीं क्षेत्र की पंचायत में आज द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल संस्थान खोलना ही नहीं बल्कि और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना भी है। धर्माणी ने कहा कि सरकार वर्ष 2032 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रसिद्ध पहलवान दलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दलीप सिंह राणा को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मंच तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा की सराहना की। उन्होंने युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रदेश भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। एक बयान में पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों के रुख के बाद आयोग के खिलाफ लगाए गए कांग्रेस के आरोपों की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि अपनी हार पर सही अर्थों में मंथन न करके संवैधानिक संस्थाओं पर इसका ठीकरा फोड़ना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। बिंदल ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव परिणाम अपने पक्ष में न आने पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाने की बजाय जनता के बीच जाकर अपनी राजनीतिक कमियों पर विचार करने की जरूरत है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में मनाली में एक्सपो देवलोक का आज समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए प्रयास जारी रखने पर बल दिया गया। दूसरी ओर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में पर्यटन सप्ताह आज संपन्न हो गया। इस पर्यटन सप्ताह के दौरान पर्यटन विकास पर आधारित 25 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गईं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने आज समीरपुर स्थित अपने निवास स्थान पर रक्षा मंत्रालय से रुद्र एज प्रोजेक्ट के लिए 3.5 करोड़ रुपए की ग्रांट पाने वाले छात्रों सर्वेश शर्मा और पीयूष शर्मा को सम्मानित किया। दोनों छात्रों की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए धूमल ने कहा कि देश की सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में इन युवाओं का ये प्रयास सराहनीय है। सर्वेश शर्मा और पीयूष शर्मा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में कंप्यूटर साइंस विषय के छात्र हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: क्या बात है, बड़े दिनों बाद।
3: हाँ यार। अच्छा सुन, दाढ़ी बनवाने का कितना होगा?
2: अरे वही अपना 60 रुपया।
3: अरे यार अभी सिर्फ मेरे पास 30 रुपए कैश है।
2: तो देख, दो तरीके हैं। पहला, आधी दाढ़ी करा ले।
3: और दूसरा?
2: अरे डिजिटल पेमेंट कर UPI से।
3: ये लो यार, UPI ने तो बचा लिया।
2: एक काम कर, फेशियल भी करा ले, डिजिटल पेमेंट कर देना।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
6: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूँ।

0: अभी आपने सुनी जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई ये गज़ल। गज़लों पर आधारित कार्यक्रम शामी गज़ल। इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति तलत अज़ीज़ की आवाज़ में।
1: जिंदा किया है हमने मसीहा के नाम को, मुद्दत से नाम सुनते थे मोमिन का बारे, आज देखा भी हमने उस शोरा के इमाम को।

0: गजलें इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति से पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
0: गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामे गजल में फिर से आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली की आवाज़ में गाई ये गज़ल।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई। नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: अभी आप सुन रहे थे गजलों पर आधारित कार्यक्रम शामी गजल, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं महिलाओं के लिए विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम मिंजरा। इसमें आज जानकारी का विषय है हमारी संस्कृति में श्राद्ध पक्ष का महत्व, और इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आप डायल कर सकते हैं 01892-224-391। ये है हमारे स्टूडियोज का दूरभाष नंबर, और इस नंबर पर डायल करके आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं।

कार्यक्रम मिंजरा सुनने वाली सारिया साड़ियाँ जड़िया बोबो भैन हैं जवानदड़े भाऊ भैन हैं न्याणे स्याणे हैं ते ना सारे तुहाड़ी बड़की बोबो यानी वर्षक टोच की तरफ से प्यार भरी नमस्ते। तो भैनों क्या हाल चाल हैं तुहाड़े? उम्मीद करनी कि तुहां सारियां अपने अपने घर च खुश होनिया ने कने खूब आसा खेला दियां होनिया ने अपने परिवार सौगी, है ना जी। तो मैं एक बारी फिरी ते तुहाड़ा पसंदीदा कार्यक्रम मिंजरां लेके हाजिर हुई हो कने अज इस चाहां जिहड़ी गलबात आपू पिछे साझा करनी है सह है कि अहां जियां कि तुहां सारियां साड़ियां बोबो भैणां न्याणे स्याणे जवानदड़े भाऊ भैणां सब जाणदे कि श्राद्ध जेड़े हैं से शुरू हो चुके हैं कने अज अहां इहदे बारे च गलबात करनी है। कने भैनों गल इं है भई जिहड़ियां चीज़ां सांझो नहीं पता सह तुहां सांझो दसणियां कने जिहड़ियां थोड़ियां बहुत सांझो पता हैं सह अहां तुहाड़े कने गल्लां बातां च जिहड़ियां हैं सह गल्लां श्राद्धां दियां करनियां कने श्राद्धां च अहां क्या क्या करदे कियां मनांदे। क्योंकि भैनों तुहां दिखिया होना कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़े च क्या पूरे हिमाचल की अगर अहां गल करिए हर दसा कदमों बाद जिहड़ी है साड़ी बोली जिहड़ी है सै बदलोई जांदी, है ना। कने रीति रिवाज भी थोड़े थोड़े जिहड़े हैं सै बदलोई जांदे। कांगड़े की अगर अहां सब तो पहले गल करन तां इत्थों ते गां तुहां पालमपुरे तक जा तां रीति रिवाजां च काफ़ी जिहड़ा है सै अंतर है ना। तो अज अहां यही तुहाड़े ते पुछना है कि तुहां कियां श्राद्ध पक्ष जिहड़ा है सै कियां कियां ते दियां तैयारियां करदे कने कियां कियां तुहां तिसियो मनांदे कने कजो मनांदे कने इसका क्या महत्व है साड़ी जिंदगी च, मतलब कयो हाँ इस त्योहारां जो मतलब ये 16 दिन एक किस्म दा जिहड़े साड़ा पितृ पक्ष हुंदा तिन्हां दे त्योहार ही है एक किस्म दा, है ना। कने बड़ा शुद्धिकरण जिहड़ा है सै इहदे च सांझो रखना भी पौंदा। तो साढ़े स्टूडियो का नंबर है 01892224391, इस पर तुहां गलबात करने तैयार इस नंबर जो तुहां डायल करना है। पर मैं चाहती कि गलबात शुरू करने ते पहले हाँ एक छोटी दे भेंट सुन लेंदे माता दी, है ना, फिर यहाँ तुहाड़े ने गलबात जिहड़ी है सै साझा करनी।

0: Built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. कार्यक्रम मिंजरां च फिरी ते सारियां साड़ियां जिहड़ियां बोबो भैणां हैं न्याणे स्याणे हैं कने बाकी भी जिहड़े श्रोता इस वेला साढ़े कन्ने जुड़े हन तिन्हां सारियां दा अहां स्वागत करदे कने अज अहां गल्लबात करा दे हन श्राद्धां पर। हैलो हैलो जी बोबो भैणो, गल इ है भी फोन तो मते आवा दे पर कोशिश करा कि तुहां थोड़े देर सिग्नल च रही के गल करा ताकि टाइम बड़ा घट हुंदा ना इस वेला कने ढंगे ने गल हुई है ना। तो अज अहां गलबात करा दे इस कार्यक्रम च श्राद्धां दे। तो हिंदू धर्म च अगर अहां श्राद्धां दी गल करिए तो जिहड़े साढ़े स्याणे चली ही होंदे यानी कि जिहड़े पितर बने ही होंदे है ना तिन्हां दे प्रति ये जिहड़े 16 दिन होंदे ना तिन्हां दे प्रति अहां आदर प्रेम कने कृतज्ञता प्रकट करदे इस इन्हां 16 दिनां च। एक होर बोबो भैन जुड़ी है पर हैलो
3: हैलो
2: हाँ जी स्वागत है तुहाडा इस कार्यक्रम च।
4: नमस्ते मैम जी।
2: नमस्ते जी, अपना भी नाम दसा कने अपने ग्राएं दा नाम दसा।
4: मैं मीनाक्षी बोला दी।
2: मीनाक्षी जी
4: हाँ
2: जी
4: छतड़िया ते बोला दी।
2: छतड़िया ते बड़ा बड़ा स्वागत तुहाडा साडे इस कार्यक्रम मिंजरां च। ता क्या बोलना चाहंगे श्राद्धा दे बारे च? तो हां
4: श्राद्धा दे बारे च एही थी जो जड़े पितर हुंदे
2: हां जी
4: ते 16 दिन जड़े आ थी घरां च हुंदे।
2: बिल्कुल हाँ जी हाँ जी
4: 16 दिन घर चंद मतलब जिस दा श्राद्ध आया है
2: हाँ जी
4: उस दिन पूजा पाजा वगैरह करवांदे घर।
2: बिल्कुल कने सब ते बड़ी गल है। अच्छा मैनू एक गल दसा तू पत्री भी टाल दे।
4: हाँ जी हाँ जी
2: कह दिया पत्तियां दे
4: पत्री पानी फिर बाहर ते जाना पांदे।
2: हाँ जी ता गोए दा लिखणू भी पांदे?
4: नहीं लिखणू नहीं लिखणू नहीं पांदे मतलब गोए दा है मंदलू वगैरह पाई के
2: सही मंदलू मंदलू ही बोलदे हां पाड़ी च है ना कने। अच्छा थाली च जालू जे हां स पत्री अंडांदे ता कह दियां पत्तियां दी अंडांदे
4: बिल दे पत्र पाणे
2: या अच्छा जी
4: फूल दे भी पाए सकदे।
2: अच्छा जी और क्या क्या रखदे थाली च? क्योंकि श्राद्धां दी जेड़ी थाली बनदी ना कने शुभ दे कम्मां दी जेड़ी थाली हुंदी इस च थोड़ा फर्क हुंदा। तां मैं चाहदी कि अगर तुहां मनांदे हन तां बाकी जेड़े इस वेला साडे कन्ने श्रोता जुड़े हन संझा दी वेला तिन्हें भी पता लग गया क्योंकि अलग अलग जगह ते फोन आउंदे ना जी तां अलग अलग अपने अपने हिसाबे नाल मनांदे। तां इस कार्यक्रम च इस टॉपिक जो लैने दा मतलब ए ही है कि अहां इक दूए कन्ने अपनी गल सांझा करिए कने जेड़ा होर ने पता नहीं होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तां कियां होर क्या क्या रखदे तुहां? गोपी भी रखदे?
4: हाँ जी
2: गोपी भी रखदे श्रद्धा ते टिक्का जालू लगांदे तिदी वास्ते।
4: हाँ जी टिक्का रखना फिर ओ रखना चावल तिल।
2: हाँ जी तिल काले रखदे कि चिट्टे?
4: चिट्टे।
2: अच्छा जी कन्ने कच्चा दूध भी रखदे?
4: साडे स्याणे जेडे चिट्टे रखदे ताहा भी चिट्टे रखदे
2: ना। अच्छा जी फिर ओ भी रखदे कच्चा दूध भी रखदे?
4: कच्चा दूध नहीं मैं दिखया इयां वैसे
2: केई मार देना जी कच्चा दूध भी थोड़ा देर पांदे कने पहले ऐसे मंदलू पर छिट्टा मारना कच्चे दूध
4: जिस दिन श्राद्ध होंदा उस दिन तो होंदा ये सारा समान कच्चा दूध दही वगैरह।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी कने जेड़ा बजुर्गां दा अपने घरे च श्राद्ध होंदा तिस तईयां सांझो पहले तिथ भी पुछना पौंदी पंडते ते है ना जी।
4: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
2: ता दिखा कितनी बढ़िया गल है कि अहां अपने जेड़े रीति रिवाज हैं जेड़े हाड़े संस्कार हैं जेड़ी साड़ी संस्कृति कन्ने जुड़ियां गल्लां तिन्हां अहां अज भी जेड़ा ऐसा इन्हां इयां करी के जिंदा रखा दे। पर अहां एक गल होर बोलना चाहनी कि अपने कन्ने कन्ने ना गां जेड़े साड़े बच्चे हैं ना तिन्हें भी इन्हां चीज़ां दे बारे च जेड़ा ऐसा दसना ताकि साड़ियां ये जेड़ियां चीज़ां ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलन है ना।
4: हाँ जी पीढ़ी दर पीढ़ी चलन कन्ना उन्हें भी अगे पता होना चाहिए फिर यहाँ क्या कर देना।
2: बिल्कुल बिल्कुल
4: मनांदे ना असा।
2: बिल्कुल श्राद्ध कने ये तो बड़ा भरी पवित्र 16 दिन होंगे कि इस तो बड़ा भरी है ना शुद्धि शुद्धता जेड़ी ऐसे रखना पौंदी 16 दिन है ना लसन प्याज नहीं खाना।
4: हाँ जी हाँ जी नहीं मनांदे
2: बिल्कुल बिल्कुल। ता ए है जी दिखा ना कुछ नहीं ले आना, क्या कर दे हाँ, एक पूजा ही तो करनी होंगी है ना, कने बिल्कुल तिश्ची साढ़े पितर जेडे अन से खुश हो जाते है ना। तो चलिए एक बारी फिर अपना नाम दसी दिया।
4: मेरा नाम मीनाक्षी है।
2: मीनाक्षी जी तुहां बड़ी अच्छी जानकारी दित्ती, कने बाकी भी जेड़ियां श्रोता सखियां न्याणे स्याणे जवानदड़े बुजुर्ग जितने भी इस बेला इस कार्यक्रम जो सुना दे तिना भी तुहाड़ी जानकारी ते पक्का कुछ ना कुछ सिखिया ही होना है ना जी। जुड़ने वास्ते मता मता धन्यवाद। कने ये दसा भी होर भी कार्यक्रम सुन दे तुहां आकाशवाणी धर्मशाला दे।
4: हाँ जी हाँ जी, सुबह जड़े सवेरे दे जड़े हुंदे हां ते बड़े
2: चलो बड़ी अच्छी गल है। ऐसा नहीं है कि खरा खरा ही गलाना है, तुहां जेड़े नहीं भी तुहानू लगदा कि यहां कुसी कार्यक्रम च अगर सुधार करने दी जरूरत है तो तुहां सुझाव भी दे सकदे, क्योंकि दिखा ना कोई दसा ता ही पता लगना, नहीं है तो हाँ जो लगना कि यहाँ खरा खरा ही करा दे है ना।
4: हाँ ये वैसे जिहड़े सुबह दे जिहड़े ओ हुंदे भजन लगदे ने थोड़े
2: हाँ जी मीनाक्षी जी तुहां इस कार्यक्रम मिंजरां च जुड़े तिस ते तुहाड़ा मता मता धन्यवाद। सुनदे रहे आकाशवाणी धर्मशाला। तां दिखा बोबो भैणो भी ये जिहड़ी भैण साड़ी मीनाक्षी जुड़ी तां इन्हां कितनी अच्छी जानकारी जिहड़ी है साड़े कन्नै साझा कीती, कन्नै बाकी भैणां जिहड़ियां इस वेलै जुड़ियां तिन्हां भी जरूर इसदा फायदा जिहड़ा असें उठाया होना है, क्योंकि जिहड़ा तुहाड़े उत्थों रिवाज नहीं है तां तां ते तां तुहां सिखणा, कन्नै तां ते तां तुहां सिखणा, यह इस कार्यक्रम दा जिहड़ा है असली महत्व है। ठीक है जी, तां हुण इक होर बोबो भैण जुड़ी है। हैलो
3: हेलो।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
3: नमस्ते जी, मैं आज फिर फोन मलाई सा तो अंजो था।
2: बड़ी अच्छी गल है, तो साड़ा प्रोग्राम कामयाब ही ता होना जे मेरियां बोबो भैणा जुड़ गईं है ना। मिजना कार्यक्रम में तो अंजो ता बड़ी पहले कर देना चाहिए हा फोन, ना दसा कने अपने ग्राएं दा नाम भी दसा।
3: मैं मधु बोल रही पठियारे ते।
2: मधु पठियारे ते, तुहां ता साड़े नियमित श्रोता हैं, तो अज तुहां क्योंकि तुहां इस पासे वाले हैं तो दसा वे श्राद्ध कियां मनांदे तुहां। अच्छा जी, तो किया किया बनाया रोटियां, क्या क्या बनाया।
3: मैं बनाए भटूरो
2: जी, हाँ जी
3: चने
2: जी। अच्छा अली तो हाँ ये रिवाज रखिया कि जियां अड़ोसियां पड़ोसियां भी खुआंदे, पंडतें तो खुआंदे खुआंदे, पर जियां पहले हुंदा है ना कि सारे सादा पांदे हे श्राद्धे वाले दिन।
3: हाँ जी हाँ जी हाँ जी,
2: सारे
3: पंडतें खुआनी ते ना नेड़ पड़ोसी वाले देनी
2: आ बंडदे कि घरें बैठी के खुआंदे। चलिए ये तो दिखा बड़ी सोहनी गल। अच्छा मिंजो ये दसा भी पतरी भी अंडांदे। अच्छा क्या क्या रखदे थाली च तुहां।
3: आहा रखने से गोपी रखी हुंदे टिक्का लगाने वास्ते।
2: हां जी
3: केले रखे हुंदे।
2: हां जी
3: चौल रखे हुंदे।
2: हां जी
3: फुल रखे हुंदे।
2: हां जी
3: पतरी जेड़ी है से चिट्टे फुल ने कर देना।
2: दिखा कितनी छैल गल दसी तुहां। पहली पत्री जेड़ी हुंदी वे जियां अंदरे ओ करनी, कने फिर जेड़ा लास्ट श्राद्ध हुंदा तिस च पत्री है ओ तुहां भी कढ़दे बाहरे ओ।
3: हां जी बाहरे कढ़दे फिर अंदरे ते यहां बाहरे लेंदे
2: है ना। कितने पत्ते रखदे तुहां, पांच की कितने।
3: तीन तीन।
2: अच्छा तीन रखदे, पांच तो नवरात्रियां च रखदे द्रुबा दे डालू है ना।
3: हां जी हां जी ए यहां तीन रखदे।
2: तीन रखने ता गुलाबे दे सॉरी इदे गट्टे दे जेड़ा सा हुंदा ना गट गटाकड़ियां जेड़े हुंदे तिदे
3: गेंदे दे जेड़े पत्ते हुंदे
2: ना। हां जी
3: देने कने फूल जेड़े से चिट्टे रखोंदे।
2: चिट्टे रखोंदे है ना। कने चलो बड़ी अच्छी गल है कि तुहां इतनी अच्छी जानकारी जेड़ी है, कने दिखाई भी कितनी अच्छी गल दसी तुहां भी श्राद्धां दी जेड़ी पूजा है से चिट्टे फुल्ले ने हुंदी है ना। तो तुहां कोशिश ये भी करनी कि घरे च जेड़े बाकी बच्चे हैं ना तिन्हें भी इन्हां चीज़ां दे बारे च थोड़ा थोड़ा दसदे रहना है ना, क्योंकि बूंद बूंद कन्नै घड़ा भरोंदा है ना। तो अजे तो तुहां छोटियां बच्चे लग गए दसना, चलो ज़्यादा नहीं सुन गए थोड़ा ही दिख गए, पर अगर जियां माऊ बाबा काम करते दिखते बच्चे तो सिखते जरूर हैं है ना। हाँ जी
3: मेरी दो मुनियां से ब्याह थी।
2: अच्छा जी
3: मुन्नू कने

0: ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਫੇਦ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਉਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਫੇਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ
1: ਅੱਛਾ ਜੀ
0: ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਗੋਪੀਏ ਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹਨ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਬੋ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਬੋਬੋ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਪਹਿਲਕਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੁੜੀ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਭੈਣ ਬੋਬੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁੜਾ ਦੀ ਸੈ ਅਲੱਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਵਾ ਦਾ ਜੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਆ ਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਾ ਮਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸਖੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੜਕੀ ਬੋਬੋ ਵਰਸ਼ਕ ਟੋਲ ਜੋ ਆਗਿਆ ਦਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਮਸਤੇ अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं शाम के 7 बजने को हैं और पहले हिंदी में समाचार व शाम 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे
2: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा श्री मोदी ने कहा कि अब तक भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है
3: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है
2: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दे रहा है प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रम्मी कल्चर ऐप और अन्य गेमिंग ऐप से जुड़े मामलों में लगभग 442 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया है ये कार्रवाई

0: धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। निदेशालय ने कहा कि जब्त की गई संपत्तियों में सावधि जमा, व्यावसायिक दुकानें, एक विला और कई आवासीय संपत्तियां शामिल हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आईची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 4 रजत समेत कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विनी शंकर ने डेकाथॉनल में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल करके कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य समेत 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said that the surgical strike carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today, Mr. Modi said the world was astonished to see the bravery of Indian soldiers who crossed the line of control to take action against terrorism.
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Touching upon the topic of the ongoing census, Mr. Modi said the first phase is nearing completion across all states and union territories. The Prime Minister stressed that the census is a national responsibility and said the facility for self-enumeration makes the process easier. Prime Minister Modi said the month of September is dedicated to the fight against malnutrition. He said several commendable initiatives have been launched this year to combat malnutrition. The Prime Minister said millions of young people have recently taken the pledge to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He urged people to support those trying to overcome addiction and work towards a drug-free youth. Defence Minister Rajnath Singh said India does not seek to occupy the territory of any country but will take all necessary measures to protect its security and strategic autonomy when threatened. Mr. Singh was addressing a defence conclave in New Delhi today. He said India seeks global stability but not at the cost of its strategic autonomy. The minister said as long as neighbouring countries continues to support terrorism, India is entitled to take all necessary measures against it. The Enforcement Directorate, ED, has provisionally attached movable and immovable properties worth around 442 crore rupees in connection with the case related to Rummy Culture app and others. The ED informed that the action was taken under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act. Union Home Minister Amit Shah today said that former Vishw Hindu Parishad President Ashok Singhal devoted his entire life to Hindutva, the nation and social service. Speaking at the inaugural ceremony of the birth centenary celebrations of late Ashok Singhal, Mr. Shah said that Ashok Singhal's life reflected qualities of sacrifice, patriotism, religious devotion, discipline and commitment. Vice President C.P. Radhakrishnan has said technology cannot replace the human touch of a medical doctor. He emphasized the importance of compassion among doctors in an era of rapid progress in AI and digital health. Mr. Radhakrishnan was addressing the graduation ceremony of SUT Academy of Medical Sciences in Thiruvananthapuram today. He urged young doctors to be clear and precise in their communication. India has sent a

खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुना करदे सारे किसान बागवान भाई भैणा जो लंबरदार दी तरफ ते राम राम। किसान साथियों अज टियाले पर जड़ा है सै मैं किला ही तुहाड़ा साथ दिया करदा है, क्योंकि साढ़े किसान साथी जड़े ने सै अपने अपने कम्मां च जड़े ने सै हौली हौली व्यस्त होआ करदे हन। ता अज असां टियाले पर खूब रौनक कन्नै गलबात भी सांझा करनी, कन्नै जड़े खेतीबाड़ी दे साढ़े काम कार चले होए ने तिहदे बारे च भी गलबात जड़ी सै करनी है। तो सब तो पहले किसान साथियों अज जड़ा साढ़ा विषय है सै तिद्दी गल करिए, विषय च अज डेयरी कार्य कन्नै मिश्रित खेती पर हाँ तुहाड़े कन्नै गल करनी है। तो खास करके मैं अपने युवा साथियों ने गल करना चाहूँगा कि बई जियां तुहां दिखा करदे अजकल जिस हिसाबे कन्नै जनसंख्या विस्फोट होआ करदा युवा साथियों, तिस कन्नै नौकरियां दी समस्या भी जिहड़ी सै दिन प्रतिदिन बधा करती है। साड़ी सरकारां जिहड़ियां हन चाहे सै साढ़े मुख्यमंत्री होन सै भी अपनी तरफ ते कोशिश करा करदे, साढ़े प्रधानमंत्री होन सै भी अपनी तरफ ते पूरी कोशिश करा करदे कि साढ़े युवा साथी जिहड़े सै कुछ ना कुछ तरीके कन्नै कम्में मतलब तिन्हां कम्म जिहड़ा सै तिन्हां दे हत्थों मिलना चाहीदा। लेकिन युवा साथियों तुहानू पता है कि बई साड़ी जड़ी जनसंख्या है अज असा पूरे विश्व च नंबर एक जड़े से जनसंख्या चाही गई हुन, तो तिसा जनसंख्या यो सही तरीके कन्नै अग्गे बधाना, तिसा जनसंख्या सारी काम देना जड़ा सा एक बड़ा हाँ बोलिए नामुमकिन दिया काम जड़ा सा नज़र आवा करदा है। तो खास करके हाड़े जड़े खेतीबाड़ी या किसानों के बच्चे हैं तिन्हां ने हाँ यही आग्रह करगे कि जलों तक तुहानू नौकरी नहीं मिलती है, वैसे तो कोशिश हर टैसट तुहां दिया हर प्रतियोगिता तुहां भाग लिया ताकि जड़ा तुहां चाहते हैं सह तुहां करी सकन, लेकिन जलों तक तुसां कुसी भी क्षेत्र च अगर तुहाड़ा सफलता नहीं मिला करदी है तालू तक तुसां अपने माता पिता कन्नै जरूर अपना हाथ बटा। कन्नै असां तां किसानां दे बच्चे हन सांझो तां मिट्टी नै हत्थ लगाने ते कोई दिक्कत ही नहीं है, तां अपने माँ बाप ने तुहां दिखा भी कियां खेतीबाड़ी हो करदी कियां से अपना जीवन यापन करा करदे, तिन्हां ने अगर कंधे ना कंधा मिलाई के अहां काम करगे तां कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस पर हाँ जिस चाह सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कन्नै अज साड़ा युवा साथी जड़े हैं सब पढ़े लिखे हैं, पुराने टाइम में तो आदमी पढ़िया जरूर घट हुंदा था लेकिन कढ़िया ज़्यादा हुंदा था, तो सै अपने कढ़ेपणे ने इतनी खेतीबाड़ी उन्नत तरीके ने करता है कि अज वैज्ञानिक भी कई तिना ते जड़े हाँ बोलिए ना भाई छोटी छोटी सलाह सूत्र जड़े सै तिना ते लैंदे हन कने तिना दे समझी के अग्गे जड़े सै बधदे हन। लेकिन ये जरूर है कि साड़ी जड़ी पढ़ाई लिखाई है सहां जो और अग्गें उन्नत बनांदी है, तो असां अज अपने किसान साथियों ने यही गल जड़ी है सांझा करनी है कि साढ़े युवा साथी जड़े हैं जियां साड़ा विषय अज भी डेयरी कने मिश्रित खेती पर, तो डेयरी च किसान साथी एक

ऐसा व्यवसाय है जो खेतीबाड़ी ने जुड़िया है। अज अगर अस खेतीबाड़ी करा करते तो खेतीबाड़ी वो मैल चाहिदा, कने मैल तो जिस तरीके कने बीमारियां कने बधा करी तो साढ़े पशुधन का मैल जड़ा है, जियां हम बोलते पे जैविक खाद जड़ी है तिस ते अमृत कोई खाद जड़ी है साड़ी है ऐसा मिट्टी नहीं हो सकती। तो अगर ये साढ़े जड़े खेतीबाड़ी के जुड़े धंधे हैं, चाहे तो हाँ मुर्गी पालन समझी लिया, कुक्कड़ पालन, भेड़ पालन या डेयरी पालन च कोई भैंस आ सकती है या गायें आ सकती हैं, तो इन सारियां दा कन्नै कन्नै अज जड़े तुहां इस नौ जमाने च तुहां दिखदे पे मोबाइल च भी तुहां केई दिखदे होणे सफल डेयरी फार्म जड़े अंश अपनी अपनी वीडियो पा करदे साढ़े टियाले दे माध्यम ते भी तुहां जो अहां सफल जड़े डेयरी पालक हैं तिन्हां कन्नै गलबात सुणांदे रहिंदे। तां खास करके अहां युवा साथियों ने आग्रह करना चाहांगे कि अगर तुहां पढ़े लिखे हैं तो अपनी पढ़ाई दा अगर बैठी के तुहां तिसा पढ़ाई है जो मतलब समय व्यर्थ गवा करदे तो इहदा कोई मतलब नहीं है। तुसां अपनी पढ़ाइया दा जड़ा तत् है तिसी खेतीबाड़ी च लगा, अपने माता पिता कन्नै साथ दिया ताकि सभी अपनी खेतीबाड़ी जो और उन्नत करके तिस च फायदा जड़ा सा ले सकन। तो गल अस करा करते थे कि डेयरी कने मिश्रित खेती च पहली तो हाँ डेयरी की गल करिए अहां अगर खेतीबाड़ी करा करते तो डेयरी जड़ा ऐसा एक कने कने चलने वाला एक व्यवसाय है तिस च ताई तो जो अलग कोई काम नहीं करना पौंदा लेकिन तिसी कम्मे कने जुड़िया यह धंधा है। कने एक पासे अहां जियां अजकल दी गल करिए तुसां तां अगर अहां पटिए च जा करदे अपने धाना दिखना तां तिस कने साड़ियां किसान भैणां साढ़े किसान भाई कन्नै इक संझा दे बेल्लै इक रेटा भी लेवा करदे घाए दा, कन्नै दिखा तुहां पे भो साड़ेल हुंदा है, जैलू बरखा पेईआं तां असां भोए दा इस्तेमाल कर लैंदे, कन्नै इन्हां दिनां च जैलू मौका लग्गे तां सहारा घा भी समय समय पर कटदे रहिंदे। तां बोलने दा मतलब यह है कि अगर अहां बेल्ले बैठी के किसान साथी हो अगर अपने सूट बूटे सुधारा करदे आ युवा साथियां नाल अहें गलाना चाहांगे, खास करके अजकल जिहड़े युवा साथी हन सै मिट्टी दे हत्थ घट गवाना चाहुंदे कन्नै मतलब सुक्के पैसियां पासे ज़्यादा पी होन, लेकिन अगर असा इस कम्मे च युवा साथियों अगर अपने आप जो बोलते ना भाई खूह च कुछ पाँदा रहेंगा तो खूह भी भरोई रहा, लेकिन जड़ा खूह च चार पैसे जोड़े साढ़िया बजुर्गों तिन्हें जो खाते रहेंगे तो सा खूह भी खाली हो जाते। तो इस कम्मे च अह अगर पढ़ाई लिखाई अपनी करी बैठे हो कने कने तुह कई बच्चे जड़े इनसे अलग अलग तरीकों कन्नै कोई जिमां च जा करते कोई सेहता बनाने ताईं तुह अगर अपनी खेतीबाड़ी च करते हैं कने पशुधन का भी काम करते हैं तो तुसां जो तां तुह जाने की कोई जरूरत नहीं है, सही तुसां अपना शरीर जड़ा सा बनाई के रखी सकते हैं, घर है खाण पीण का खुला इंतजाम हो गया, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती। कने अज तुहां जो पता भी जड़ा तुह बाहरे ते चीज़ लैंदे हन इस च क्या क्या कुछ नहीं हुआ करता, क्या मिलावटां नहीं हुआ करदियां, क्या चीज़ लिया करदे कने क्या चीज़ सै हुआ करदी है, तो हर चीज़ अहां दिखा करदे, लेकिन कमाने पासे जड़ा सै थोड़ी किसान तो कम करा करता, लेकिन जड़े एक अह बोलिए ना कि कम नहीं करने वाले तो सै जड़े इनसे गलत तरीकों कन्नै भी सो खाद्य पदार्थ कुछ हाड़े तक पहुँचा करते हैं। तो हाँ जो तिन्हें अगर बचना है बीमारियों से अगर बचना है तो अपने घर में ये सारिया चीज़ा तो तैयार करी सकते, कने किसानों के घर हर चीज़ा की उपलब्धता होंगी, कोई दिक्कत वाली गल नहीं होंगी, तो अस जी इस अच्छे तो अच्छा उत्पादन करके कने वधिया तो वधिया चीज़ जी हाँ खाई सकते हैं। तो किसान साथियों गलबात साड़ी गांह भी जारी रहेंगी इस विषय पर, लेकिन उससे पहले हाँ अपने किसान साथियों संझा का बेला है कने एक प्यारा जिहा लोक गीत की तरफ लेके चलना कने सुनाना, क्योंकि साड़िया किसान भैणा दिखा काला महीना बताई के जड़ियाँ सा अपने अपने घर आई ही हैं, तो यह भी नौवें घर है जोड़ा सा नवा माणू जल आता तो कई खुशियां जड़िया तो इस घर छानी हैं, लेकिन अहाँ फिर तो एक छोटी देर पुरानी याद क्योंकि इस पुराने अपने माऊ बब्बे छड़ी के आई होंगे ने कियाँ क्या दर्द हों ये बारे अहाँ अज एक प्यारा दिया लोक गीत थोड़े तक पहुँचा करते हैं। आशा है तो जो ये प्यारा दिया लोक गीत पसंद होगा तो वह किसान साथी सुनते प्यारा दिया लोक गीत।

किसान साथियों, संजय दी साहब बेल च प्यारा दिया जोड़ा लोक गीत था तुम जो पसंद आया होना, कने खास करके साड़ियाँ किसान भैन जड़िया नौवें घर गई तिन्हें भी ये पसंद आया होना। इस लोक गीत के बाद जड़ा असं गल करा करते थे किसान साथियों की भई डेयरी कने मिश्रित खेती, अज असा मिश्रित खेती का यही ध्येय है। कहने साढ़े पुराने बजुर्ग जानते थे कि जियां असा पिछली बारी जिन्हें पट्टियों असा मतलब हर बारी पट्टियां बदली के तुसा बाह कने अलग अलग फसल बाह, कई बारी तुसा दिखते होने कि पिछली बारी जड़ा था सै इतनी बरसात हुई कि साढ़े किसान भाइयों के घर बड़ी घट मक्की की फसल जी या कुकड़ी फसल जी सै बड़ी घट हुई, कने काफ़ी नुकसान जरा हम बोलिए पिछली बरसात च होया था। इस बारी जरा सह परमपिता परमात्मा ने बरसात जड़ी सह सुखे ने जड़ी सह कट्टी है साढ़े किसान साथियों सारे ही, कने फसलों का भी हम बोल गए भी लगभग अच्छी फसल जड़ी है सह इस बारी सारी जगह जड़ी सह अच्छी हुई है। बरसात इस बारी काफ़ी अहाँ बोलिए भी ढंगे की बरसात जिसे बोलते सह हुई है, कने जियां साड़ी धाना की फसल है किसान साथियों तो सह भी लगभग इस वेल तैयार है, कने साढ़े किसान साथियों जड़े सह सराधा लगने से पहले पहले त्रप जड़े सह सारे ले लियो थे, कने हूँ आने वाले टाइम में लगभग कई लगी भी पियो हैं कने कुछ लगने वाले हैं, क्योंकि त्रप असा ले लिया है तो हूँ कोई रुकावट कोई रही नहीं है तो शुरू हो जाना जल्दी कम। तो गल करा करते थे भी जड़ी मिश्रित खेती है इस असा किसान साथियों अलग अलग तरह दी फसलां बाहिए तो साड़ी मिट्टी भी जड़ी है सै मतलब इस मिश्रित फसलों जड़ा सा अच्छा उत्पादन जड़ा सा दे सकती है। कई बार क्या होंदा हाँ एक ही फसल जड़ी सै एक ही पट्टी च बांधते रहते इस कन्ने जड़ा सै जड़ी फसल जो तत्व चाहिए होंगे सै तिहा पट्टिया के खत्म हो जाते कने साड़ी फसल जड़ी सै घटती चली जाती, तो सू चाहिए कि एक तो पट्टिया भी बदली बदली के असा उत्पादन करिए कने फसलों से भी अलग अलग तरह दसल बाहिए। असा इस बारी जियाँ अं गल करिए भी धान बाहो है आने वाले टाइम में असा अलसी भी बाहनी है सरों अलग अलग तरह दसल बाहनी ने या बरसीम बाहनी है या मक्खन घा बाहना है, तो थोड़ा इन्हें भी अहम जो बदलाव जरा सा करना चाहिए जिहा पट्टिए अहम पिछली बारी अलसी बाहिए थी तिसा पट्टिया बदली दिया ताकि जड़ी गुणवत्ता होरना पट्टिया चाहिए सै गुणवत्ता तिसी तिहा पट्टिए मिली है नौइया पट्टिए मतलब, तो यदिया जड़िया छोटी छोटी गल्ला इन्हें सू जरूर याद रखना चाहिए कने अपने करी करी के ज़्यादा तजर्बा जरा सा सू आता है। तो यह गल आई कने हूँ जड़ा मौसम जड़ा खुली पिया है हूँ लगभग सैरा के बाद जड़ा सा मौसम साफ लगी पिया होना, अज कने कल फिरी बारिश जड़ी सा दसा करते हैं लेकिन फिरी भी जड़े निम्बले दिन जड़े न सा हंगलाइए तो चली पियो तो लंबरदारें भी जड़ा सा तैयारी अपनी पूरी रखी हुई है, लेकिन भी दिखा जियां ही मौसम मौका दिता तो तियाँ असा जड़े मौसमी सब्जियां आए न सह तो अगेती पछेती जड़ी सब्जियां बांधे सह तो किसान साढ़े जड़े न सह बाही चुके हैं, लेकिन हाँ जो जड़ा सा मौका जी जी मिलता है तीं तीं असं बांधते हैं क्योंकि कई साढ़े किसान भाई उन्नत तरीके की खेतीबाड़ी करते हैं चाहे सह पोलियोस की तो मनी के चला तो सह तिश्चता काफ़ी साढ़े किसान जड़े सह फसलां कढ़ी के बाजारे विच भी बेचा करते हैं। तो खास करके अज युवा साथियों अह गल करा करते हैं तो युवा साथियों भी मैं तो यह बोलना चाहगा भी घीआ भिंडी करेला कद्दू कने इन्हें ना सुनते अद्धी भुख जी सै चली जा करती, तो हूँ जरा सर नौ दिन खुली के आए हैं तो नौइया सब्जियां बोलने मतलब यह है कि भी लगातार अह इन चीज़ा खा करते थे तो सू जड़ियाँ सै थोड़िया खाने चुन थोड़ा दिक्कत लगी पी हो, लेकिन महीने बाद तुसा दिखे तो यही सब्जियां जड़ियाँ सै दुगने रेटे पर मिलनी है तो हाँ जो फ्री स्वाद जड़ा सा आना शुरू हो जाना है, लेकिन अजकल की गल करिए ना किसान साथियों तो लंबरदार है जड़ा सा बी बू अपने तैयार करी दिए शलगम मूली चुकंदर गोभी अलग अलग किस्म की तुम्हें पता ही है पालक सरों मेथी कने प्याजा की उरी भी देती है मटर बीन ये सारिया चीज़ा अगर आने वाले टाइम में तुम नौ ही चीज़ मतलब अपने मुँह में स्वाद भी बदलना चाहते हैं तो यह वाली चीज़ा जड़िया क्या नज़ारे हूँ छलियाँ ही रोटियां तैयार लगभग साढ़े किसान साथियों जड़ियाँ स मतलब आटा उट्टा जड़ा तैयारी करा करते हैं, तो खाने का खाने का मज़ा ता ही है जलू अपने पट्टिया का साग भुजू हो फिर दिखा तो नज़ारा, तो यह वाली चीज़ा जड़ियाँ असा सारे जड़े से अपने अपनी खेतीबाड़ी जड़ी सै जरूर हरी भरी करनी कने अगर जैविक तरीके कने इन खेतीबाड़ियाँ करगे तो दिखा तो हाँ भाई कई बीमारियां जड़ियाँ साढ़े शरीर से जड़ियाँ सै दूर हो सकती अगर इन चीज़ा अह पर काम करगे तो। इस कन्नै जड़ा हाँ बोलिए भी
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹੀ ਕੇ ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਨ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਬੋਲੀਏ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰੀ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਦਿਆ ਲੋਕ ਗੀਤ।

किसान साथी संझा दी बेला च लंबरदारे कन्नै तुसां एह प्यारे दा लोक गीत सुनिया। कन्नै जियां कि काली घगरी लियाने दी फरमाइश होआ करदी है तो साड़ियां किसान भैणां अपने सहुरिआं दे घरै पुज गईआं ने काले महीने बताई के कन्नै हुण तां कई तरह दीआं मंगां जिहड़ियां असां बोलीए वी होणियां ने। तां साड़ियां नौहियां नकोर साड़ियां किसान भैणां जिहड़ियां ब्याह करके नौहें घरें च पुजीआं ने। किसान साथीओ मेरी तरफा तो भी दो हथ जोड़ी के प्रार्थना रहेंगी कि भई नौवां आदमी जलू नौ घर च जांदा है तो तिसते कुछ छोटिया मोटिया गलतियां भी होंदिया ने तो तिन्हां यों प्यारे कन्नै अपने परिवार च वैसे तो साढ़े किसान साथियों घर तो हर चीज़ जिहड़ी है मिली जुली के काम हुंदा है। तो हाँ चाहेंगे कि भई हसी खुशी कन्नै जिहड़ा नौवां परौणा साढ़े घर आया है तिसी ओह अपने बिच जिहड़ा ऐसा मतलब मेल जोल तिसदा बढ़ाने ताईं सानू सारे मिली जुली के कोशिश जिहड़ी सा करना चाहीदी। हो सकता कुछ गलतियां हंज च भी होन कुछ तिना च भी होन लेकिन तिनायो नज़रअंदाज करके हाँ ये भूल गए या तिनायो प्यारे ने समझाई करके तिना दा मान सम्मान जड़ा सा अपने घर विच असां जो करना चाहिए। तो ये जिहड़ी मांग जी अहां गल करा करदे थे भाई काली घगरी ले आए तो हाँ आशा करते भाई इहदियां मांगा भी साढ़े नौईयां किसान भैणां दीआं अपने सहुरिआं दे घर पूरियां हो गईआं कन्नै होर भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की सा जिहड़े घर जिहड़े ने नौए परौणे दे हत्थे ने गां बध गए। इस कन्नै कन्नै ही हुण अहां गल करनी भी मौसम जिहड़ा ऐसा एक दो दिनां ते बदला करदा है तो अज जे अगर तापमान की गल करिए अपने अखे बखे दे शहरां दी तो कांगड़ा का जिहड़ा न्यूनतम तापमान रहा 3 डिग्री सैलसीयस कन्नै अधिकतम तापमान 25 डिग्री सैलसीयस, चंबा का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सैलसीयस कन्नै अधिकतम तापमान जिहड़ा सा 20 डिग्री सैलसीयस रहा, ऊना का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री कन्नै अधिकतम तापमान जिहड़ा सा 28 डिग्री रहा, कन्नै मंडी का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री कन्नै अधिकतम तापमान 21 डिग्री सैलसीयस रहा। कन्नै आने वाले अज भी हाँ गलाइए भी साढ़े टियाले पर तो खूब बरखा हुई है हूँ कन्नै होरना इलाकों से भी होने की संभावना है कन्नै कल भी जड़ा सा बारिश होने की संभावना है तो साढ़े किसान साथी इसा दा हिसाब किताब लगाई के जड़ा सा अपना अगला कामकार जड़ा सा जारी रखन। कन्नै बढ़ाई जड़ी है सा तो मैं बोलता भी एक दो दिन दिखी के जड़ा सा उसके बाद ही करन तो बड़ा वधिया रहेगा। कन्नै एक होर गल

इस टियाले दे माध्यम ते अहां करना चाहांगे कि जालू असां गाणी गांदे या अहां मशीनी तौर पर अपने धान जिहड़े कुटांदे हन तां तिस विच किसान साथियों कई तरह का खरपतवार या तो हाँ बोला भी घा कूड़ा जिसी अहां कुआण भी बोलते तो सह भी निकलता है। तो कई बार अहां क्या करते भी खुआड़े च अहां तिसी अग लगा दें या तिसी कट्ठा करके मतलब सारा जड़ा कूड़ा कुआड़ निकलता तिसी अग लगा दें। लेकिन हूँ तो अहां इस प्रकृति की दिखा तो हाँ भी बरसात निकली तो कई तरह के फलदार पौधे भी असा लगाए हैं कने इस प्रकृति की सेवा की है। लेकिन जड़े कूड़ा कुआड़ है अगर इसी अहां अग लगा इस कने भी साड़ा बड़ा प्रदूषण जो फैलता है। कहीं कई बार तुह देखे होना भी हाड़ी राजधानी दिल्ली की प्रदूषण दल्ला कई बार तुह सुनिय होनी तो साड़ा हिमाचल अहां एक स्वर्गे रहा करते हैं। लेकिन स्वर्गे रहने का मतलब सजो तिसदा मतलब काम भी तिसके प्रति जरा करना चाहिए तो अपनी प्रकृति को साफ सुथरा रखने ताई इस स्वर्ग रूपी धरती हो इस देवत्या धरती हो साफ सुथरा रखने ताई सजो सारे प्रयास जरा करना चाहिए। कहने साढ़े प्रधानमंत्री ने भी कई तरीकों कने इस प्रकृति को सहेजने के नारे अहां बोलीए या काम कार जड़े से साढ़े ताई दित्ते हैं चाहे से एक पेड़ माँ के नाम होए स्वच्छता अभियान होए कई तरह के काम जड़े से दित्ते हैं तो अगर सांझो अधिकार दित्ते हैं तो साढ़े कुछ फर्ज भी हैं चाहे सह घरे च होन चाहे सह बहर होन चाहे सह इस देशे दे प्रति होन तो सह सारे सांझो मतलब निभाने हैं। तो आशा करनी है भी साढ़े इस वारी असा जड़ा भी कूड़ा कुआड़ जड़ा साढ़ी खेतीबाड़ी निकलता तुसी वो जलाना नहीं है कने तिसदा अहां जैविक खाद च बदलने का बड़ा अच्छा साढ़े किसानां दा तरीका है। तुसी माली च दबी दिया आपू ही सह जैविक खाद जी सह बनी जाती है कैंचुए साढ़े लगभग सारे किसानां लाई हैं लेकिन कुछ किसान नहीं हैं तो सह एक ही दुए ते भी ले सकते हैं। कने इस तरीके कने अहां अपनी इस जैविक धारा इस प्रकृति को बचाई सकते हैं कने इस प्रकृति को सहेजी के रखी सकते हैं कने ये देवतियां ही धरती जड़ी सह इं स्वर्ग बनी रहे तिस ताई अहां अपना सहयोग जड़ा सह करी सकते हैं। इस कने कने अहां एक होर संदेश अपने किसान साथियों देना चाहेंगे भी जियां ही मौसम ठीक हुंदा है तो तुसां पशुओं ताई हरा चारा जियां बरसीम है मक्खण घा है जौ ही है या जौ हैं इन सारे की बिजाई जल्दी तो जल्दी करा ताकि अहां दुधारू पशुओं से अच्छे तो अच्छा उत्पादन जड़ा सह ले सकी। हुण चलने तो पहले एक होर प्यारा दिया लोक गीत अहां तुहाड़े तक पहुँचा करते हैं कने साढ़े इसी तो संबंधित है पशुओं से तो आवा तुहां जो भी लेके चल दे कि भाई किया पशुधन अजकल हाड़ियाँ धारा च चुगा करता है तो तुहां जो भी सुना दे प्यारा दिया लोक गीत।

किसान साथियों संजय दिया बेला है प्यारा दिया लोग गीतों जो पसंद आया होना। खेतीबाड़ी कार्यक्रम च अज सो तकनीकी सहयोग दिता सुनील शर्मा ने, कने इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं जितेंद्र पाल सिंह। इसी कन्ने ट्याले दे लंबरदार जो कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दिया। अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:42 हो चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का पेश किया नया उदाहरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना। विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने बार बार ये संदेश दिया है कि आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: जनगणना अभियान को सभी की राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान में 32 करोड़ से अधिक परिवारों का डेटा दर्ज कर लिया गया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान में युवाओं की भागीदारी पर भी प्रसन्नता जताई।
2: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माई भारत पर
1: एक जिला एक उत्पाद की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुहिम से किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
2: हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गाँव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है।
1: प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से उत्साहवर्धक कहानियां साझा करते रहने का आह्वान किया और कहा कि ये जानकारियां अन्य लोगों को भी प्रेरणा देती हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना के जवान राष्ट्र और राज्य की सुरक्षा व अखंडता सुनिश्चित करने में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सशस्त्र सेना में भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने और भर्ती प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने का कार्य भी निरंतर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सशस्त्र सेना में योगदान देने की एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है और राज्य के युवा साहस, अनुशासन और समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार प्राकृतिक कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। सोलन की नौणी मझगांव पंचायत में किसान मेले के कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। धनीराम शांडिल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित करने के लिए किसानों, बागवानों और पशुपालकों को विकसित करना आवश्यक है। प्रसिद्ध पहलवान दिलीप सिंह राणा उर्फ ग्रेट खली ने आज लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने दिलीप सिंह राणा को सम्मानित करते हुए हिमाचल प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के मंच तक उनकी उल्लेखनीय यात्रा की सराहना की। राज्यपाल ने युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस ब्रेक के बाद।
3: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
4: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
5: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
4: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
5: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बाकी के समाचार। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि कांग्रेस अपनी हताशा में इस तरह के प्रदर्शन कर रही है।
6: सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं तहस नहस करने का एक मकसद के साथ काम करने का तरीका चल रहा है, जिसको देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए कि जिस चुनाव आयोग के माध्यम से देश के अंदर चुनाव संपन्न हुए, ये बात अलग है कि वो चुनाव हार गए और आज से नहीं कई वर्षों से चुनाव हार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में तो जहां चुनाव जीते हैं उसी चुनाव आयोग ने चुनाव करवाए थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर सारे मिल करके वहां चुनाव आयोग के बोर्ड के ऊपर कालिक पोत रहे, चुनाव आयोग का पुतला जला रहे। एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति संवैधानिक संस्थाओं का पुतला जला रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और हो नहीं सकता है।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों के रुख के बाद आयोग के खिलाफ लगाए गए कांग्रेस के आरोपों की पोल खुल चुकी है। उन्होंने कहा कि अपनी हार पर सही अर्थों में मंथन ना करके संवैधानिक संस्थाओं पर इसका ठीकरा फोड़ना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। उधर धर्मशाला में एक कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि तथ्यों के बिना संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता देश को भ्रमित करने और अपनी हार को निराधार आरोपों के पीछे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के विस्तार पर विशेष बल दे रही है। घुमारवीं क्षेत्र की लद्दा पंचायत में आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल संस्थान खोलना ही नहीं, बल्कि उनमें पर्याप्त स्टाफ, आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाना भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के 25 वर्ष पूरा कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता व सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कार्य कर रही है। इस उद्देश्य से शुरू हुआ सरकार का स्टार्टअप आंदोलन रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमें भविष्य के लिए तैयार होने और नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है।
7: अब हमें भविष्य के लिए तैयार होना होगा, हमें नए आइडियाज पर काम करने की जरूरत है। आज कई ऐसे डोमेन्स उभर रहे हैं जो कल देश में इकोनॉमिक सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में अहम रोल निभाएंगे। AI का उदाहरण हमारे सामने है। जो राष्ट्र AI रिवॉल्यूशन में जितना आगे होगा उसके पास उतना ही एडवांटेज होगा। भारत के लिए ये काम हमारे स्टार्टअप्स को करना है।
0: आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। चंबा में एक कार्यक्रम में उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि जिला में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण पर्यटन को आजीविका से जोड़ना महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में मनाली में एक्सपो देवलोक का आज समापन हुआ। इस दौरान प्रदेश में पर्यटन को नई दिशा देने के लिए प्रयास जारी रखने पर बल दिया गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में भी पर्यटन सप्ताह आज संपन्न हो गया। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर वर्षा जबकि चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। मौसम के इस मिजाज से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात से इन क्षेत्रों में ठंड का दौर बढ़ गया है। हमारी संवाददाता के अनुसार किन्नौर जिला के छितकुल में करीब 3 इंच बर्फबारी दर्ज की गई है। जिला में इन दिनों सेब सीजन चरम पर है और ऐसे में अचानक बदले मौसम ने किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। सिरमौर जिला में भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य के विभिन्न जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का पेश किया नया उदाहरण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार पूर्व सैनिकों और रक्षा कर्मियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। भाजपा ने देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी पर कांग्रेस नेताओं की आलोचना। विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश में हुए कई कार्यक्रम और राज्य की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात व अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
8: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
9: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
8: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
9: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
8: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
10: मीडिया वेब और एफएम पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब पेश है देश गान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, हम आकाशवाणी के
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस। सबरस कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद हुसैन अहमद हुसैन के युगल स्वरों में गाई ये गजल।

अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस से समय आप श्रोता सुन रहे हैं। आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर अब हम आपको सुनवा रहे हैं रंजीत बाबा की आवाज़ में गाया ये पंजाबी गीत।

सपना अवस्थी व साथियों की आवाज़ों में गाए इसी गीत के साथ हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे अनेक रंगों से सुसज्जित कार्यक्रम सबरस FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब हिमवीर्स कार्यक्रम आकाशवाणी के शिमला के

नमस्कार श्रोताओं, आपका पसंदीदा कार्यक्रम हिमबीट्स लेकर हाजिर हूँ मैं उपमा ठाकुर। साथियों, हिमबीट्स में आज हम बात करेंगे स्वस्थ देखभाल की। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है और शरीर को सेहतमंद रखने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी होता है। बात अगर मशरूम की जाए तो मशरूम अपने स्वादिष्ट स्वाद और पौष्टिक गुणों के लिए लोकप्रिय है। हिमाचल के कई हिस्सों में पाई जाने वाली कृषि जलवायु परिस्थितियां मशरूम की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रदेश में मुख्य रूप से दो प्रकार के मशरूम, सफेद बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम उगाए जाते हैं। राज्य में मशरूम की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत मशरूम विकास परियोजना चंबाघाट सोलन और भारत डच मशरूम विकास परियोजना पालमपुर जिला कांगड़ा में संचालित की जा रही हैं। साथियों, आज जानकारी की बात हिमबीट्स के साथ में हम आपको जानकारी देंगे आर्थिक समृद्धि के द्वार खोलती शिटाके मशरूम के बारे में। शिटाके मशरूम एक औषधीय मशरूम है और बेहतर स्वाद और स्वास्थ्य लाभों के लिए उच्च मूल्य पर इसकी बिक्री होती है। ये मशरूम पोषण से भरपूर है। इसमें फाइबर, B2, B5, B6, कॉपर और मैग्नीज और आयरन की उच्च मात्रा होती है। इसके अतिरिक्त इसमें अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। इसमें लेटिनन नामक बायोएक्टिव यौगिक पाया जाता है, जिसे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा करने में सहायक माना जाता है। ये तत्व विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई के खिलाफ काम करता है। बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करने के लिए इस मशरूम का सेवन किया जा सकता है। इस मशरूम के एंटीफंगल गुणों के कारण इसे फंगल से संबंधित बीमारियों के उपचार में भी उपयोग में लाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के तथ्य पर अगर बात की जाए तो शिटाके मशरूम की खेती पर्यावरण के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिमाचल में भी किसानों को शिटाके मशरूम की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस दिशा में किसानों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। साथियों, हिमबीट्स में अब हम बात करेंगे प्रदेश सरकार के सुशासन के अभिनव प्रयासों की। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल में हर परिवार को सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और आगे बढ़ने के अवसर दिए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। हर किसान और बागवान के लिए स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। राज्य के इन प्रयासों से हिमाचल खुशहाल, आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य बनने की ओर अग्रसर है। राज्य में कल्याणकारी नीतियों के क्रियान्वयन को गति प्रदान कर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घर द्वार के निकट सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने समय समय पर कई कारगर कदम उठाए हैं। शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ साथ सरकारी सेवाओं को सरल, सहज और सुगम बनाया जा रहा है, ताकि लोगों को अपने काम करवाने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई राजस्व लोक अदालतों और विशेष राजस्व लोक अदालतों की अभिनव पहल कारगर साबित हो रही है। इन लोक अदालतों के आयोजन से प्रदेश भर में 5,44,000 से अधिक इंतकाल के मामलों, 47,333 तकसीम के मामलों तथा 63,000 से अधिक निशानदेही के मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा सुनिश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में 26,288 दुरुस्ती कार्य भी किए गए हैं। लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए अक्टूबर 2023 से हर महीने के अंतिम दो दिनों में तहसील और उप तहसील मुख्यालयों पर राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। जनवरी 2026 में तकसीम और राजस्व दस्तावेजों के सुधार से संबंधित मामलों के समाधान के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को 3 दिनों तक विशेष राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही है। इन लोक अदालतों के आयोजन से लोग उत्साहित हैं, क्योंकि ये पहल लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र समाधान के लिए एक प्रभावी मंच साबित हो रही है। राज्य सरकार की इस पहल से राजस्व मामलों की लंबित संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। ये पहल विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काफी लाभदायक साबित हो रही है। लोगों की ओर से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया ये प्रदर्शित कर रही है कि इस नागरिक केंद्रित पहल पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। ये लोक अदालतें राजस्व संबंधी दस्तावेजों के सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनके माध्यम से आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं तथा भूमि से संबंधित विवादों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। इस पहल से प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिल रही है
और प्रदेश के लोगों के लिए प्रशासनिक कार्य अधिक सुगम हो रहे हैं। साथियों, यहाँ हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

ये प्रदेश के बागवानी क्षेत्र की। बागवानी प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। बागवानों की आय में वृद्धि और बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने कई निर्णायक कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों परिवार जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र में उत्पादन से लेकर विपणन तक पूरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर बल दे रही है। बागवानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलवाने की दिशा में हिमाचल की भूमिका उल्लेखनीय है। पारंपरिक खरीद व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए HPMC ने मंडी मध्यस्थता योजना 2026 के दौरान सेब खरीद की प्रक्रिया को एंड टू एंड डिजिटल प्रणाली से जोड़ा है। इस व्यवस्था में बागवानों को ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर खरीद से संबंधित विवरण दर्ज करने तक की प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य केवल कागजी प्रक्रिया को कम करना नहीं बल्कि खरीद से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, निगरानी को बेहतर बनाना तथा प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और परिचालन दक्षता को सुनिश्चित करना है। साथियों, इस वर्ष अभी तक HPMC ने मंडी मध्यस्थता योजना 2026 के अंतर्गत बागवानों से लगभग 4188 मीट्रिक टन सेब खरीदा है। HPMC द्वारा केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीद की जा रही है। हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खरीद प्रक्रिया को तकनीक से जोड़ने के परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड प्रबंधन और संस्थागत खरीद व्यवस्था को और सुव्यवस्थित किया जा रहा है। बागवानों को विपणन के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। HPMC की गतिविधियां अब पारंपरिक खरीद से आगे बढ़कर प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन, बागवानी इनपुट और मूल्य संवर्धित उत्पादों तक विस्तृत हो रही है। इन गतिविधियों के माध्यम से उपज के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ किसानों को बाजार से जोड़ने और बागवानी उत्पादों का आर्थिक मूल्य बढ़ाने की संभावनाएं विकसित हो रही है। साथियों, सेब कारोबार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता लाने की दिशा में यूनिवर्सल कार्टन प्रणाली की शुरुआत की गई है, जिससे बागवानों की आय बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है। इसके तहत सेब की पैकिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप 20 किलोग्राम के यूनिवर्सल कार्टन में की जाती है, जिसमें विभिन्न ग्रेड के लिए आवश्यक मापदंड तय किए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य पैकिंग में होने वाली विसंगतियों को कम करना, लेन देन में पारदर्शिता बढ़ाना और बागवानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है। श्रोताओं, बागवानी के क्षेत्र में HPMC की बढ़ती भूमिका का आकलन बेहतर वित्तीय प्रदर्शन से किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025-26 में निगम ने 214 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दर्ज किया और करीब 12 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। HPMC की मंडी मध्यस्थता योजना 2026 से संबंधित कारोबार लगभग 158 करोड़ रुपए रहा। राज्य सरकार द्वारा तकनीक, संस्थागत समर्थन, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और मूल्य संवर्धन पर बल दिया जा रहा है। डिजिटल खरीद से लेकर प्रसंस्करण और भंडारण के लिए उठाए गए नवीन कदमों से स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यम के नए रास्ते खुल रहे हैं। साथियों, यहां हम रुकेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए।

साथियों, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य के विविध संभावनाओं का लाभ उठाकर आज हिमाचल समग्र विकास के पथ पर अग्रसर है। साथियों, हिमबीट्स के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में साझा करेंगे आपके साथ नई जानकारी। तब तक दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिमबीट्स, जो कि आकाशवाणी के शिमला के केंद्र से रिले किया गया FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:38 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

विशाल ददलानी शंकर महादेवन व साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये देशभक्ति गीत। देशभक्ति गीत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

रूप कुमार राठौड़ व साथियों को अभी आपने सुना इस देशभक्ति गीत में। ये रही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब पहले समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली के इंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
2: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
2: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
2: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुट रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं। इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहाँ के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
3: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
5: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
5: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
6: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. Yeah, machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor. Who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
7: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
8: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
7: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
9: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
7: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुक खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
10: एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में NC सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैंपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ

0: ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says surgical strikes, Balakot airstrike and Operation Sindoor are bold examples of India's zero tolerance policy towards terrorism. In Mann Ki Baat program, Prime Minister highlights progress of Census 2027, saying data of over 32 crore families recorded so far. Also calls for greater public participation in cleanliness drives ahead of Mahatma Gandhi's birth anniversary. Defence Minister Rajnath Singh asserts India seeks global stability without compromising strategic autonomy. Union Minister Amit Shah flags off country's first LNG-powered train from Sabarmati in Gujarat, marking railway shift towards cleaner energy. At Asian Games, India clinched silver medals in women's long jump, men's high jump and both squash singles, bags bronze in decathlon, women's steeplechase and 200 meter events, and India retained Nona Gaprina Dashavili trophy at Chess Olympiad in Uzbekistan, wins silver in open section and bronze in the women's event. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said 2016 surgical strikes, 2019 Balakot airstrike and Operation Sindoor in 2025 are bold examples of India's zero-tolerance policy towards terrorism. The Prime Minister was addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani today. He said the surgical strikes carried out by the Indian Army on terrorist hideouts in Pakistan in 2016 demonstrated to the world a new approach to India's counter-terrorism policy. Mr. Modi said India will mark the 10th anniversary of the cross-border surgical strike tomorrow.
2: 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
1: Speaking about Census 2027, Mr. Modi said the first phase of the ongoing exercise is nearing completion across all states and union territories. He said data from more than 32 crore families has already been recorded so far. He urged people to participate in the drive and use self-enumeration facility.
2: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: Mr. Modi also called for greater public participation in cleanliness drives ahead of the birth anniversary of Father of the Nation Mahatma Gandhi on the 2nd of October. He cited examples of cleanliness initiatives from across the country.
2: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
1: Prime Minister Modi said millions of young people have pledged to stay away from drugs under the Nasha Mukt Yuva Abhiyan. He called for collective efforts to build a drug-free youth while announcing health checkups and meditation camps as part of 100-week campaign. Speaking about One District, One Product initiative, Prime Minister Modi said it is creating new opportunities for amla growers and entrepreneurs at Pratapgarh in Uttar Pradesh, with around 100 processing units now operational and women's self-help groups playing an important role. He said the

FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत। आज आप सुनेंगे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर सन 1932 को ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक नगर लाहौर में हुआ था। उनका पूरा नाम यश राज था, जिसमें से उन्होंने यश अपना लिया और राज को राज ही रहने दिया। यश राज ने मुंबई आकर एक सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया। ये काम उन्होंने आईएस जौहर के साथ बतौर उनके सहायक बनकर किया था। बाद में उनके बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने, जो मुंबई में पहले से ही स्थापित हो चुके थे, उन्हें 1959 में अवैध संबंधों के भावों को जागृत करने वाले नाटक पर आधारित फिल्म धूल का फूल के निर्देशन के साथ स्वतंत्र रूप से फिल्मी करियर की शुरुआत करने में सहायता की।

0: यश चोपड़ा का फिल्मी करियर 5 दशकों से भी अधिक का रहा है, जिसमें उन्होंने 50 से अधिक फिल्में बॉलीवुड को दी। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसे फिल्म निर्माता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कुल मिलाकर 11 बार में से 4 बार सर्वश्रेष्ठ निदेशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया और 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: मुझे लूट लो मेरे नजदीक आके, मुझे लूट लो।

बतौर निर्माता अगर उनकी फिल्मों की बात करें जो कि प्रमुख रहीं, 2007 में लागा चुनरी में दाग, 2000 में मोहब्बतें, 1982 में सवाल, और बतौर निदेशक की अगर हम बात करें प्रमुख फिल्मों की तो वीर सारा, दिल तो पागल है, डर, परंपरा, लम्हे, चांदनी, विजय, सिलसिला, दीवार, जोशीला, वक्त, धर्मपुत्र, धूल का फूल,

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा द्वारा निर्मित निर्देशित फिल्मों से कुछ चुनिंदा फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्रों से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, और अब समय है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल का। सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम हाजिर हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल लेकर, और आज के इस संगीतमय सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा टोच। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति आपके लिए लेकर आए हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दिल तुझको दिया से।

अभी आपने सुना दिल तुझको दिया फिल्म का यह गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने, गीतकार संगीतकार राजेश रोशन। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और आज का ये सफर आप तय कर रहे हैं वर्षा टोच के साथ। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में दो दिलों की दास्तान फिल्म से।

अभी आपने सुना दो दिलों की दास्तान फिल्म से। यह गीत आवाज़ें थी लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की। इसके गीतकार थे अनजान। गीतों की महफिल कार्यक्रम में समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अब हम आपको सुनवा रहे हैं जाने तमन्ना फिल्म का ये गीत।

उदित नारायण रंजना जोगलेकर को अभी आपने सुना फिल्म जाने तमन्ना में मदन पाल की लिखी शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था आदेश श्रीवास्तव ने। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल इस समय आप श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से, और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ वर्षा कटोच। ये रही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म चर्च से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आनंद बख्शी के मिले जुले स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों की महफिल FM बैंड 103.4 MHz पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला के इंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। अब पहले एशियाई खेल 2026 विवाद में अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।

0: 26 आईजी नगोया।
1: जापान में चल रहे 20वें एशियन गेम्स में हर रोज भारतीय एथलीट जिद, जुनून, जतन और जुझारूपन की ऐसी कहानी रच रहे हैं जिसकी हर तस्वीर, हर मोड़, हर किरदार अपना सा लगता है। तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है तो जीत सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं लगती, पूरा भारत जश्न मनाता है। उनकी जतोजहद सिर्फ मैदान पर नहीं दिखती, उसकी तपिश हम सब तक पहुँचती है और जब मंजिल बस एक कदम दूर रह जाती है तो उसकी चूक की कसक हम सबको महसूस होती है। रविवार को भी ये सभी रंग, सभी जज्बात देखने को मिले। बॉक्सिंग रिंग में और हॉकी के मैदान पर जहां भारत का विजय रथ जारी रहा, तो वहीं एथलेटिक्स में भी अलग अलग इवेंट्स में हमारे एथलीट्स ने पदक जीते। स्क्वाश में कहानी टू नियर येट टू फार की रही, तो वॉलीबॉल और आर्चरी से दिल खुश करने वाले समाचार मिले। कुल भारत के लिए आज 7 पदक आए हैं और सबका विश्लेषण लेकर आकाशवाणी की टीम हाजिर है। मैं हूं दर्पणती क्या, आइए जानते हैं 27 सितंबर को भारतीय खिलाड़ियों ने क्या क्या गुल खिलाए। शुरुआत करते हैं एथलेटिक्स से, जहां आज भारत ने 5 पदक जीते। नागोया का मिजुहू पार्क एथलेटिक स्टेडियम आज भी बरसात के कारण तरबतर रहा, सतह गीली थी और इस वजह से खिलाड़ियों को संयम, संतुलन और तकनीकी दक्षता का परिचय देना था। हेडलाइन एक्ट रही एनसी सोजन, जिन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप में भारत को रजत पदक दिलाया। एनसी की पहली जंप 6.49 मीटर की रही, जिसके बाद वो गोल्ड मेडल पोजिशन में लगा तार बनी रही। अपने 5वें अटेम्प्ट में उन्होंने 6.53 मीटर की दूरी तय कर उम्मीदें और पुख्ता कर ली, लेकिन अपने आखिरी अटेम्प्ट में चीन की यिंगयिंग हुआंग ने 6.56 मीटर की कूद लगा उन्हें पीछे छोड़ा और एनसी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इसी प्रतियोगिता में भारत की शैली सिंह भी हिस्सा ले रही थी, जिनका बेस्ट अटेम्प्ट 6.42 मीटर का रहा और इसके चलते वो 4थे स्थान पर रही। दूसरा पदक आया पुरुषों की ऊंची यानी हाई जंप से, जहां भारत के सर्वेश कुशारे ने 2.25 मीटर की कूद लगाकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। फिर पुरुषों की डेकेथलॉन में तेजस्विन शंकर ने 1974 के बाद इंडिया को पहला पदक दिलाया एशियन गेम्स में। कल का दिन खत्म होने पर तेजस्विन नंबर 1 थे, लेकिन आज सरक कर तीसरे पायदान पर आ गए और अंततः ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने गले में पहना। स्टैमिना और स्फूर्ति का परिचय पारुल चौधरी ने भी दिया। 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में तीसरा पायदान प्राप्त कर पारुल ने दिलाया कांस्य पदक। लेकिन शायद एक सरप्राइज पैकेज बनकर उभरी भारत की हरिता भद्रा, जो महिलाओं के 200 मीटर में कांस्य पदक ले आई। 23.20 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी कर हरिता ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी दौड़ में उन्नति बोलेंड भी शिरकत कर रही थी और उन्हें 6ठा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अलावा एथलेटिक्स में कई और एथलीट्स ने अपने आप को पदक की दौड़ में बनाए रखा हुआ है। 400 मीटर बाधा दौड़ में पुरुषों में एस सरन फाइनल में पहुंच गए हैं, तो वहीं महिलाओं में विद्या रामराज भी फाइनल में शिरकत करते हुए नजर आएंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्री शंकर और डेविड पट्टूराज भी फाइनल का रास्ता तय कर चुके हैं। पुरुषों की 800 मीटर की दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्णा कुमार भी फाइनल में खेलते हुए नजर आएंगे। महिलाओं की 4x100 मीटर रिले में तमन्ना, स्नेहा, सुदेशना और अभिन्या की चौकड़ी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपना सीजन बेस्ट दिया और फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल किया। तो वहीं पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में अनिमेश खजूर 5वें स्थान पर रहे और पदक से चूक गए। इस दौड़ में गीली सतह होने के बावजूद थाईलैंड के पुरीपोल बुनसोन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया और केवल 19.88 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी की। वो बने स्वर्ण पदक विजेता। 3 पदक बॉक्सिंग रिंग में भी आज सुनिश्चित हुए और बताते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
2: एशियन गेम 2026 में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए शानदार खबर है। भारतीय मुक्केबाजों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 और पदक पक्के कर लिए हैं। अंकुश पंघाल, परवीन और नरेंद्र ने अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के अंकुश पंघाल ने ताजिकिस्तान के नेक्रुस सलीमोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। अंकुश ने पूरे मुकाबले में प्रभावी प्रदर्शन करते हुए निर्णायकों को प्रभावित करते हुए स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अंकुश ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में प्रवीण ने शानदार जीत हासिल की। उन्होंने उज्बेकिस्तान की नवखोर खादिमो को 5-0 से मात दी। प्रवीण ने मुकाबले के 3 राउंड में अपना दबदबा बनाए रखा। जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और भारत के लिए एक और पदक पक्का कर लिया। पुरुषों के 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में नरेंद्र ने थाईलैंड के अथापोंग सेकतेप के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने मुकाबला RSC यानी रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के जरिए अपने नाम किया। इस जीत के साथ नरेंद्र भी सेमीफाइनल में पहुंच गए और भारत का 3रा पदक भी सुनिश्चित कर लिया। हालांकि पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के सचिन सिवाच को निराशा हाथ लगी। सचिन को जापान के शुनसुके किटामोतो ने 5-0 से हराया। इसके साथ ही सचिन का एशियन गेम्स अभियान क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाया। इस तरह बॉक्सिंग में आज भारत ने 3 और पदक पक्के किए, अंकुश, प्रवीण, नरेंद्र। अब सेमीफाइनल में पदक का रंग बदलने के इरादे

0: वापसी की, लेकिन निर्णायक गेम में चेन यू फेई ने बढ़त कायम रखते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। महिला एकल के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में 19 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने अपने एशियाई खेल पदार्पण पर जापान की तीन वर्ग विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को कड़ी चुनौती दी। उन्नति ने दूसरा गेम अपने नाम किया, लेकिन निर्णायक गेम में उन्हें 16-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। महिला डबल्स में टीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी मलेशिया की पोली टैन और थीना मुरलीधरन से 18-21, 9-21 से हार गई। वहीं मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रस्टो को चीन की फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग ने कड़े मुकाबले में 14-21, 21-18, 18-21 से हराया। इस तरह एशियाई खेलों में बैडमिंटन में भारत की चुनौती एक कांस्य पदक जो पुरुष टीम वर्ग में मिला था इसके साथ समाप्त हो गयी।
1: फिर चलते हैं वॉलीबॉल की ओर, जहां पर भारतीय टीम ने पुरजोर आगाज किया है। बताते हैं आलोक,
2: भारतीय टीम जो आखिरी बार 1986 के सियोल एशियाई खेलों में पोडियम पर रही थी, ने पूल सी में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। कप्तान जोरम चार्ल्स के नेतृत्व में भारतीय टीम ने शुरुआती मैच में 58वीं रैंक वाली वियतनाम टीम को 3-0 से हराया। हालांकि पहला सेट बेहद करीबी रहा, लेकिन भारतीय टीम ने पहले सेट को 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भारतीय टीम 25-21 से जीत करके मुकाबले में भारतीय टीम 2-0 से आगे होगी, और तीसरे सेट में भारतीय टीम 25-20 से जीत करके इस मुकाबले को 3-0 से अपने नाम किया। सर्बियाई कोच ड्रैगन महलोविक के मार्गदर्शन में खेल रही भारतीय टीम का अगला मुकाबला कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार हांगकांग से होगा।
1: वॉलीबॉल जैसा ही एक रोमांचक खेल है सेपेक टेक्रो, वहाँ भारतीय टीम का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: India have had a difficult day in Group B. India began their women's doubles campaign against South Korea but went down 0-2. India were back on court later in the day for their second Group B encounter, this time against the Philippines. And the Philippines came away with another straight games victory. So India have now suffered two defeats in two Group B matches, losing both encounters 0-2. It has certainly been a challenging start for the Indian pair in the women's doubles. India will now look to their remaining group commitments as they aim to keep their campaign alive and finish strongly.
1: इसके बाद चलते हैं भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग की ओर।
0: एशियाई खेलों में महिला वेट लिफ्टिंग के 69 किलोग्राम भार वर्ग में भारत की हरजिंदर कौर 9वें स्थान पर रही। हरजिंदर ने कुल 204 किलोग्राम वजन उठाया। स्नैच में उन्होंने 94 किलोग्राम का सफल प्रयास किया। इसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 110 किलोग्राम का वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह हरजिंदर का कुल स्कोर 204 किलोग्राम रहा। उन्होंने प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर रहते हुए अपना अभियान समाप्त किया। इस स्पर्धा में उत्तर कोरिया की सोंग गुक होंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 273 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। चीनी ताइपे की चेन वेन हुई ने कुल 232 किलोग्राम के साथ रजत, जबकि बहरीन की इंग्रिड गुएसो ने 229 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
1: फाइट स्पोर्ट कुराश में भारतीय खिलाड़ियों का आज प्रदर्शन कैसा रहा आइए जानते हैं।
3: इन द मेंस प्लस 90 किलोग्राम कैटेगरी यश कुमार चौहान लॉस्ट हिज राउंड ऑफ 16 बाउट 0-10-2 तजाकिस्तान्स मिरमामादोव, व्हाइल विशाल डिड मेक इट थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स इन द सेम कैटेगरी बट हिज कैंपेन एंडेड देयर आफ्टर अ 0-5 लॉस टू थाईलैंड्स येओन। इन द वुमेन्स 57 किलोग्राम कैटेगरी संगीता वाज बीटन 0-10 बाय द फिलीपींस क्वेलिनो इन द राउंड ऑफ 32। Bharti also went out in the round of 16, losing 0-3 to Iran's Tahereh. So, four Indian Kurash athletes in action today and all four have now been eliminated.
1: Moving on to fencing.
3: India's women's sabre team saw their Asian Games campaign come to an end in the quarterfinals. The Indian team, featuring Bhavani Devi, Shreya Gupta, Jafarlin J.S. and Shruti Joshi, began the team event with a convincing 45-23 victory over Indonesia in the round of 16. They then put up a strong fight in the quarterfinals but went down 35-45 to Uzbekistan in the last eight. So, India's women's sabre team finishes its campaign at the quarterfinal stage, just missing out on a place in the semi-finals.
1: अन्य खेलों का लबोलुबाब लेकर आलोक,
2: व्यक्तिगत घुड़सवारी ड्रेसेज इवेंट में हृदय विपुल छेरा ने 72.680 और उनके साथी जयसूद ने 71.490 का स्कोर किया। वो क्रमशः 8वें और 9वें पायदान पर रहे। दोनों राइडर्स क्वालिफिकेशन राउंड तक से फाइनल तक पहुंचे थे, लेकिन कोई मेडल नहीं जीत पाए। गौरतलब है कि इससे पहले 2022 के एशियाई गेमों में भारत के लिए अनुषा अग्रवाल ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं बात करते हैं सर्फिंग की। पहली बार

0: एशियाई खेल में शामिल किए गए सर्फिंग से आज भारत के लिए मिक्स रिजल्ट रहा। मेंस शॉर्ट बोर्ड में भारत के किशोर कुमार अबारसू राउंड वन में 9.33 स्कोर के साथ पहले स्थान पर क्वालिफाई किया। राउंड टू में उन्हें बाय मिला। तीसरे राउंड में उनका मुकाबला चीन के वेंग सॉन्ग से होगा। शिवराज बाबू ने 7.03 का स्कोर किया और राउंड टू में उनका मुकाबला था आज ईरान के दाऊद खादिर के साथ। उन्होंने इस मुकाबले को जीत लिया है 8.96 के मुकाबले 3.60 के स्कोर के साथ। तीसरे राउंड में उनका अगला मुकाबला फिलीपींस से होगा। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं वुमेन्स शॉर्ट बोर्ड में कामली प्रकाश और शांति गोयन ने राउंड टू का मुकाबला जीता, लेकिन राउंड तीन में वो अपना मुकाबला हार गए। इस प्रकार एशियन गेम्स से उनका सफर खत्म हो गया है। दोनों भारतीय खिलाड़ी 90 पायदान पर रहे।
1: इसके बाद भारत 4 गोल्ड 16 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज के साथ कुल 37 मेडल लेकर 12वें स्थान पर है। चीन पहले, जापान दूसरे तो दक्षिण कोरिया तीसरे पर। अब बात करते हैं कल की। सोमवार 28 सितंबर को भारतीय प्रशंसकों की निगाहें होने वाली है क्रिकेट के मैदान पर, क्योंकि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम आगाज करने वाली है अपने कैंपेन का। क्वार्टर फाइनल में सामने होगी अफगानिस्तान की चुनौती और बारिश के चलते टीम को अभ्यास करने का ज्यादा मौका मिला नहीं है। उसके बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर कहते हैं कि हम पूरी तरह तैयार हैं।
2: इस बारिश है वो तो हम रीजन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि वी आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल्स एंड ऐसे सब हर्डल्स आते रहेंगे और हमें मेंटली वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन इज गोइंग टू बी। प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज टू कम एंड प्ले द मैच। यहां का विकेट एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में नहीं सेट हो सकता है, बट जैसे कि मैंने कहा पहले कि अडैप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चैलेंजिंग तो होगा ही, डिफिकल्ट होगा, हर एक टीम के लिए होगा।
1: हॉकी के मैदान पर भारतीय पुरुष टीम खेलने वाली है अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला बांग्लादेश के विरुद्ध। सेमीफाइनल से पहले मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ये मुकाबला है जरूरी। तो वहीं बॉक्सिंग रिंग में उतरने वाले हैं कपिल और प्रिया घंगस अपनी अपनी क्वार्टर फाइनल बाउट में। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन पर भी नजरें होंगी। देन इन द आर्चरी रेंज इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस विल स्टार्ट। वी विल हैव आवर आईज ऑन मेन एंड वुमेन फ्रॉम बोथ रिकर्व एंड कंपाउंड आर्चरी। इन एथलेटिक्स गुलवीर सिंह एंड यूनुस शाह विल बी फाइटिंग फॉर अ मेडल इन द 1500 मीटर मेंस रेस। मीनवाइल पारुल चौधरी हु वन अ गोल्ड मेडल इन द 5000 मीटर इन द प्रीवियस एशियन गेम्स विल बी कम्पीटिंग टुमारो। इन द मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल मुरली श्रीशंकर एंड डेविड पट्टूराज विल बी फीचरिंग। बाधा दौड़ में 400 मीटर में पुरुषों में तमिला सरन तो महिलाओं में विद्या रामराज फाइनल खेलेंगी। भारत की मिक्स्ड रिले टीम भी 4x100 मीटर की दौड़ में फाइनल खेलते हुए नजर आएंगी। सीमा विल ऑल्सो फीचर इन द विमेन्स डिस्कस थ्रो फाइनल। तो वहीं पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सूबेदार अविनाश साबले शिरकत करते हुए दिखेंगे। इन शूटिंग आईज विल बी ऑन द ट्रायो ऑफ ईशा सिंह, मनु भाकर एंड राही सरनोबत, एज वेल एज द मेन्स एंड द विमेन्स टीम इन द ट्रैप कॉम्पिटिशन। इसके अलावा सर्फिंग में किशोर कुमार और शिवराज बाबू पर होगी नजर। वॉलीबॉल में पुरुषों के सामने होगी हांगकांग, तो सेपक तक्रो डबल्स में महिलाओं के सामने जापान। और कल एक बार फिर इसी समय आकाशवाणी की टीम हाजिर होगी भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का लबोलुबाब लेकर। फिलहाल मुझे दर्पण टिकिया को एडिटर विशाल कुमार और प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे हैं एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोरसिंह पर लिखित केएम। अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हुए एस सुप्रदीप अब प्रस्तुत कर रहे हैं रा रा राजीव लोचना। यह मैसूर वासुदेवाचार्य की मधुर रचना है जो राग मोहनम और आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही इज अकंपनीड ऑन वायलिन बाय

जी वेंकटेश जोशियर ऑन मृदंगम, केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोसिंग लिखित केएम. कंटिन्यूइंग हिज परफॉर्मेंस यश सुप्रदीप नाउ प्रेजेंट्स रा रा राजीव लोचना, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मैसूरु वासुदेवाचार्य, सेट इन राग मोहना एंड आदिताला.

0: अभी आपने तनी आवर्तनम सुना, जिसे मृदंगम पर केवी रविशंकर शर्मा और मोर सिंह पर लिखित केएम ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तनी आवर्तनम प्रेजेंटेड ऑन मृदंगम बाय केवी रविशंकर शर्मा एंड ऑन मोर सिंह बाय लिखित केएम।
0: एस सुप्रदीप अपने बांसुरी वादन का समापन कन्नड़ भक्ति रचना तंबूरी मीठी दवा से कर रहे हैं। यह महान संत कवि पुरंदर दास की रचना है और राग सिंधु भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: यस सुप्रदीप कंक्लूड्स हिज फ्लूट रिसाइटल विद अ टाइमलेस कन्नड़ा डिवोशनल कॉम्पोजिशन तंबूरी मीठी दवा कंपोज्ड बाय द ग्रेट सेंट पोएट पुरंदर दासा सेट इन राग सिंधु भैरवी एंड आदि ताला।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सुन रहे थे एस सुप्रदीप का बांसुरी वादन। आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर जी वेंकटेश जोशेर, मृदंगम पर के वी रविशंकर शर्मा और मोरसिंग पर लिखित के एम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था, जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदिर रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा, यू आर लिसनिंग टू फ्लूट रिसाइटल बाय यस सुप्रदीप। ही वाज एकॉम्पनीड ऑन वायलिन बाय जी वेंकटेश जोशियर, मृदंगम बाय के।
2: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है पहले हिंदी में समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली के केंद्रों से रिले किए जाएंगे।
3: आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवादी विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया है। सेना की यह कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाती है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया यह देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
4: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है। श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने यह बात कही।
1: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृहमंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2026 एशियाई खेलों में पुरुष सिंगल्स और स्क्वैश और महिला सिंगल्स स्क्वैश में रजत पदक जीतने पर अभय सिंह और अनाहत सिंह को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अभय सिंह की यह उपलब्धि उनके वर्षों के कठिन परिश्रम, कौशल और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। उन्होंने अनाहत सिंह के शानदार प्रदर्शन की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने महिला लंबी कूद में रजत पदक जीतने पर NC सोजन को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दमदार और उत्साहपूर्ण प्रदर्शन से देश को खुशी मिली है। श्री मोदी ने महिला 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने पर हरिता भद्रा को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह हरिता भद्रा का पहला एशियाई खेल है और उन्होंने आत्मविश्वास तथा दृढ़ संकल्प के साथ दौड़ लगाकर पदक अपने नाम किया। भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नोना गैपरिंडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर देश को कांस्य पदक दिलाया। तिरुवनंतपुरम में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 3 मैच की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। 296 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने 41 ओवर और 4 गेंद में 2 विकेट खोकर 300 रन बनाकर जीत हासिल की। विराट कोहली 88 गेंद में 139 रन बनाकर नाबाद रहे। यह उनके एक दिवसीय क्रिकेट का 55वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का 86वां शतक है। शुभमन गिल ने भी 110 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।